सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।

आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं अश्विथा शेट्टी जी से। कौन कहता है कि विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं की जा सकती? अगर देखिए मन में पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो गरीबी हो या कोई दूसरी बाधा, जब कोई व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है तो वो एक दिन कामयाब होकर ही रहता है। आप कहेंगे, कहना बड़ा आसान है लेकिन बरतना बड़ा मुश्किल। जी दोस्तों, बरतना मुश्किल तो होता ही है। इस दुनिया में जो कुछ आसान है वो कामयाब तो है ही नहीं। एक छोटे से दक्षिण भारतीय गांव मुकुद्दल में जन्मी अश्विथा शेट्टी ने इस बात को सिद्ध कर दिया। ये एक ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां पर लड़कियों को बोझ समझा जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना तो दूर की बात है। इसके बावजूद अश्विथा ने सभी बाधाओं को पार किया। शिक्षा के जरिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि आज वो कई ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है द बोधि ट्री। अश्विथा बचपन में अपने परिवार के साथ बीड़ी बनाने का काम किया करती थी। सोचिए दोस्तों, जिस गांव में अश्विथा रहती थी वहां की महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। एक तो अशिक्षा और ऊपर से वो पुरुषों द्वारा भी सताई जाती थी। कहीं ना कहीं इससे उन्हें कुछ करने की प्रेरणा मिल गई और बस पढ़ने का जुनून सवार हो गया। दरअसल 13 साल की उम्र में अमेरिकी लेखिका हेलेन केलर की आत्मकथा उन्होंने पढ़ी। बस उसे पढ़कर तो उन्हें एहसास हुआ कि उनमें खुद के जीवन को बदल देने की ताकत तो है। उन्होंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। वो बताती हैं कि उस समय उनके पास

अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान।

आइए दोस्तों, आपको बताता हूं कि परंपरा कैसे जन्म लेती है। परंपरा, जी हां। तो हुआ यूं कि एक आर्मी कैंप में नए नए कमांडर साहब की पोस्टिंग हुई। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने देखा कि कैंप एरिया के मैदान में दो सिपाही एक बेंच की पहरेदारी कर रहे थे। कमांडर ने सिपाहियों से पूछा कि इस बेंच की भला पहरेदारी क्यों कर रहे हो। सिपाही बोले, हमें पता नहीं सर, लेकिन आपसे पहले वाले कमांडर साहब ने इस बेंच की पहरेदारी के लिए कहा था। शायद ये इस कैंप की परंपरा है, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे इस बेंच की पहरेदारी की जाती है। वर्तमान कमांडर ने पिछले कमांडर को फोन किया और उस विशेष बेंच की पहरेदारी के लिए पूछा कि ये होता क्यों है साहब। तो पिछले कमांडर ने बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे पिछले कमांडर उस बेंच की पहरेदारी करवाते थे, इसलिए मैंने भी परंपरा को आगे बढ़ाया। अब ये नए कमांडर बड़े हैरान हुए और उन्होंने पिछले के और पिछले, पिछले के और पिछले तीन कमांडरों से बात की। सबने वही जवाब दिया कि पीछे से ये परंपरा आ रही थी, तो हमने भी इसको आगे बढ़ाया। पता करते करते फाइनली एक रिटायर्ड जनरल से जाकर बात हुई, जिनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। अब ये जो नए कमांडर थे, उन्होंने फोन पर बोले, सर मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूं, मैं उस कैंप का नया कमांडर हूं जिसके आप 60 साल पहले कमांडर हुआ करते थे। मैंने यहां दो सिपाहियों को एक बेंच की पहरेदारी करते देखा है, क्या आप मुझे इस बेंच के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि इसकी पहरेदारी आफ्टर ऑल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सामने वाला फोन पर ही बहुत ही आश्चर्यजनक स्वर में बोला, क्या उस बेंच का ऑयल पेंट अभी तक नहीं सूखा क्या? आप समझे दोस्तों, समाज में कई रीति रिवाज अभी ऐसे ही बने हुए हैं। कभी अतीत में जाकर कारण पूछिएगा तो आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

अहंकार और संस्कार में देखिए फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश हो जाता है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: राजा बालिक ने किसी बात पर नाराज होकर अपने प्रधानमंत्री भद्रजित को पद से हटा दिया। उन्होंने क्रोध में कहा, अब तुम्हें अपनी औकात का पता चल जाएगा। भद्रजित शांति और शालीनता के साथ राजा का अभिवादन करके राज दरबार से चले गए। वो ईश्वर भक्त और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपने नगर लौटकर वो अपना समय भगवान की आराधना, शास्त्राध्ययन और जनसेवा में लगाने लगे। कुछ ही समय में वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। एक दिन राजा बालिक की इच्छा हुई कि प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भद्रजीत की कैसी दयनीय हालत है, इसे चलकर देख ले। वो वेश बदलकर नगर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि भद्रजीत अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कुछ ही समय में राजा को भद्रजीत की लोकप्रियता का पता चल गया। तभी अचानक भद्रजीत ने राजा को पहचान लिया और खड़े होकर उनसे कहा, राजन, यदि आप मुझे पद से नहीं हटाते तो मुझे लोगों की सेवा का और भगवान की भक्ति का मौका ही नहीं मिलता। ये सब तो आपकी ही कृपा का प्रताप है। मैं आजन्म आपका आभारी रहूंगा। भद्रजीत की विनम्रता और धैर्य देखकर राजा हतप्रभ रह गए।
1: दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

जब ध्यानचंद ने ठुकराया हिटलर का प्रस्ताव। ये बात 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेलों की है, जिसमें भारत की हॉकी टीम भी शामिल हो रही थी। इस प्रतियोगिता के लिए ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। हालांकि उन्हें इसकी कतई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत होती है और इसी क्रम में 17 जुलाई 1936 को भारत की बर्लिन में ही मेजबान जर्मनी के साथ एक प्रदर्शनी मैच खेला जाता है, क्योंकि इसके पूर्व भारत 1928 एम्स्टर्डम और 1932 लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक विजेता था और यह मैच मेजबान टीम के साथ बस यूं ही खेलना था। उस वक्त जर्मनी बहुत अच्छा खेल रहा था। मैच शुरू होता है और प्रदर्शनी मैच में जर्मनी 4-1 से भारत को हरा देता है। इससे पूरी टीम बहुत दुखी हो जाती है और कई खिलाड़ियों ने खाना भी नहीं खाया और कुछ तो रात को ठीक से सो भी नहीं पाए। बहरहाल प्रतियोगिता के लीग मैचों में भारतीय टीम ने हंगरी को 4-0 से, अमेरिका को 7-0 से, जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब 14 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ ही फाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन उस दिन अत्यधिक बारिश के कारण मैदान में बहुत पानी भर गया और मैच को 15 अगस्त के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्योंकि अभ्यास मैच में भारत की टीम जर्मनी से हार गई थी और यह बात भारतीय टीम के खिलाड़ियों के मन से निकल नहीं पा रही थी। गीले मैदान और प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से हमारे खिलाड़ी बहुत निराश थे। तभी उसी वक्त भारतीय टीम के मैनेजर सभी खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ले गए, क्योंकि उस वक्त भारत ब्रिटेन का गुलाम था और भारत का अपना कोई झंडा नहीं था। इसलिए भारतीय टीम के मैनेजर ने तिरंगा झंडा खिलाड़ियों के सामने रख दिया और कहा कि आज आपको इसके सम्मान के लिए खेलना है। सभी खिलाड़ियों में जैसे नई ऊर्जा का संचार हो गया और वो श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम कर बहादुर सैनिकों की तरह मैदान में उतर पड़े। मैच शुरू हुआ तो शुरुआत में ही जर्मनी की टीम बहुत आक्रामक खेल रही थी। भारत की टीम हाफ टाइम तक सिर्फ एक गोल से आगे थी। इसके बाद ध्यानचंद जी ने अपने जूते और मोजे उतार दिए और नंगे पैर ही हाथ में स्टिक लेकर खेलने लगे। इसके बाद तो मानो खेल का रूप ही बदल गया और बेहद उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने इस फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 8-1 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक तो जीता ही, अपितु वहां पर सभी का मन भी जीत लिया। 21 वर्षीय ध्यानचंद जी ने इस मुकाबले में 3 गोल किए। चूंकि जर्मनी के शासक हिटलर भी इस मैच को देख रहे थे और वह ध्यानचंद के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ध्यानचंद जी को अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की ओर से खेलने की पेशकश कर डाली। लेकिन उस वक्त तक लांस नायक रहे ध्यानचंद जी ने विनम्रतापूर्वक यह पेशकश ठुकरा दी और कहा, मैंने भारत का नमक खाया है और मैं भारत के लिए ही खेलना पसंद करूंगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

विश्वास बिलीव और विश्वास ट्रस्ट में क्या अंतर होता है? एक बार दो बहुमंजिला इमारतों के बीच बंधी हुई एक तार पर लंबा सा बांस लेकर एक कलाकार चल रहा था। उसने अपने कंधे पर अपने बेटे को बैठा रखा था। सैकड़ों लोग दम साध कर देख रहे थे। सधे हुए कदमों से तेज हवा से जूझते हुए अपनी और अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगाकर उस कलाकार ने दूरी पूरी कर ली। भीड़ खुशी से उछल पड़ी, तालियां सीटियां बजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींच रहे थे, उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। वो कलाकार माइक पर आया और भीड़ से बोला, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाई, हां हां तुम कर सकते हो, कर सकते हो। उसने पूछा, क्या आपको विश्वास है? भीड़ फिर चिल्लाई, हां पूरा विश्वास है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम सफलतापूर्वक इसे दोहरा भी सकते हो। कलाकार बोला, पूरा विश्वास है ना? भीड़ बोली, हां हां बिल्कुल। कलाकार बोला, ठीक है, कोई मुझे अपना बेटा दे दे, मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर रस्सी पर चलूंगा। फिर एकदम खामोशी, शांति चुप्पी सी फैल गई। कलाकार बोला, डर गए? अभी तो आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। दरअसल आपको ये विश्वास यानी कि बिलीव है, लेकिन मुझ में कतई विश्वास यानी कि ट्रस्ट नहीं है। दोनों विश्वासों में फर्क होता है साहेब। दोस्तों, यही कहना है, ईश्वर है ये तो विश्वास है, परंतु ईश्वर में पूरा विश्वास नहीं है। यू बिलीव इन गॉड बट यू डोंट ट्रस्ट हिम। अगर ईश्वर में पूर्ण विश्वास है तो चिंता क्रोध और तनाव क्यों? दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है एक और मजेदार चटकारेदार किस्सा। देखिए, उपवास करने से तन हल्का हो जाता है ना, और बकवास करने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। इन सब से होगा क्या, डिप्रेशन से बचेंगे आप। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि 6 घंटों के मेहमान हो। अब तो मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया है, सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है।

वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे थे मुक्ति धाम पहुंचाने का। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाइए, एक दूसरों का मनोबल बढ़ाइए, टीवी की खामखा की खबरों को छोड़कर कोई संगीत सुन लीजिए, रेडियो सुन लीजिए और कुछ अच्छे कामों में खुद को लगा दीजिए। परिवार में भी खूब इंजॉय कीजिए। लीजिए सुनिए वो किस्सा। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मर जाने की इच्छा हो गई तो उसने एक सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, अब किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, महाराज महाराज मैं हूं, दोस्तों के अभाव में बहुत उदास हूं, मर जाना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, अबे सुन, मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? बंदर बोला, हैं? नहीं महाराज। शेर बोला, ठीक है ठीक है, अबे सुन एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आया। हा, तो इस कहानी का सार क्या है दोस्तों? अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते रहिए और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त मत रहिए, मस्ती करते रहिए, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखिए। क्यों, उठाइए फोन, लगाइए उन्हें, बात कीजिए, विश्वास कीजिए आपका मन सदा ही खुश रहेगा और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो, बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

गुलजार गुलजार गुलजार, कितनी बार लूँ मैं ये नाम और कैसे बताऊँ कि कितना प्यार है मुझे इस नाम से और इस नाम के पीछे के इंसान से। ये एक ऐसी जबान है जो उन्होंने खुद ने बनाई है, हमारे गुलजार साहब। कभी आपने सोचा है कि कुछ अल्फाज हम सुनते हैं और बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज दिल में उतर जाते हैं। क्यों? उन अल्फाजों में सिर्फ मतलब नहीं होता, एक एहसास

साहब ने तो शब्दों को महसूस करना सिखा दिया। सोचिए, चांद एक बहुत आम सा लफ्ज है, लेकिन लेकिन गुलजार के यहाँ चांद सिर्फ आसमान में नहीं होता। कभी वो किसी की आंखों में होता है, कभी किसी की याद में होता है, कभी किसी के इंतजार में होता है, और इसीलिए उनके लिखे हुए गीत सुनते वक्त हम सिर्फ गाना नहीं सुनते, हम अपनी कोई पुरानी सी याद सुन रहे होते हैं। आपके साथ भी हुआ है ना, कोई पुराना गाना अचानक रेडियो पर बजता है और बिना किसी वार्निंग के आपका दिमाग सीधा किसी पुराने वक्त में पहुंच जाता है। एक चेहरा, एक शाम, एक बारिश, एक आधी अधूरी सी बात, और हम सोचते हैं, अरे ये गाना तो मेरे बारे में ही लिखा गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। गुलजार साहब की खासियत शायद यही है, वो बड़े बड़े शब्दों से जज्बात नहीं बनाते, वो रोजमर्रा के छोटे छोटे लफ्ज उठाते हैं और उनमें पूरी दुनिया बसा देते हैं। जैसे मेहंदी, खुशबू, रात, हवा, बारिश, चांद, ख्वाब, हम इन शब्दों को रोज बोलते हैं, लेकिन गुलजार के हाथ में आकर

बार रुक कर सोची, इस गाने में मेरा कौन सा एहसास छुपा है। हो सकता है कोई पुरानी याद मिल जाए, हो सकता है कोई भूली हुई बात वापस आ जाए, या फिर हो सकता है आपको अपने ही दिल की कोई बात आज समझ आ जाए, जिसे आप कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाए। आप कह दीजिए गुलजार साहब के किसी गीत के साथ। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की ये प्यारी सी बहुत ही दिल से निकली हुई बातें, इधर की उधर की, जहां बातें चाहे इधर की हैं या उधर की, लेकिन कुछ अल्फाज हमेशा हमारे दिल के पास ही रहते हैं, आस पास, यहीं, ना इधर ना उधर, बिल्कुल यहीं। और गुलजार साहब के अल्फाज वो तो कभी कभी दिल में ही घर बना लेते हैं, है ना। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? स्टूडेंट ने कहा, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर ने पूछा, अच्छा तो दूसरा कदम किसने रखा था? स्टूडेंट बोला, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ा तो था नहीं वो।

0: तेरा। और अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: ये कहानी है दो दोस्तों की। बड़ी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में, एक दूसरे से अलग थलग। उनमें कोई भी there was nothing common in them. If anything was common, then it was the friendship they shared between themselves. They were devote friends. And then once they thought of, उन्होंने सोचा कि चलो ऐसे चलते फॉर काम के लिए, काम की खोज में निकलते हैं अपने अपने घर छोड़कर। एक छोटे गांव से निकले थे दोनों। एक था, पहला वाला जो था वो था बहुत ऑर्गेनाइज्ड, हमेशा वो ख्याल रखता था कि जो भी काम करे वो ठीक से करे, अच्छे से हो, सोच समझ कर करे, अपनी चीजें संभाल के रखे और कल की सोचे, और ऐसा कोई काम करे ही नहीं जिससे खुद को कोई दिक्कत हो या किसी और को। दिल का बड़ा साफ और वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यू नो, मेटिकुलस ऑर्गेनाइज्ड। दिस वाज द फ्रेंड नंबर वन। और दूसरा जो था हैप्पी गो लकी, जिसे कोई चिंता नहीं, अरे देखा जाएगा, कल की बात कल, अब आज क्यों उसके बारे में सोचकर परेशान होना, ये दूसरे का स्वभाव। और वो हर चीज में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देगा, कोई चीज कहीं रख दी, कुछ भूल गया, कुछ ले आया, कुछ रह गया, एंड देन अरे अरे यार मैं तो भूल ही गया। बट अगेन दिल का बड़ा साफ, दोस्ती उसके लिए बहुत मायने रखती थी। सो दोनों में दो चीजें कॉमन, एक तो दिल के साफ और दोस्ती, द रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एंड देन ऐसे निकले दोनों और बहुत दिनों तक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, बड़ी देर तक। एंड देन सीजन अच्छा था, गर्मियों का मौसम था, तो उन्हें कोई किसी बात की दिक्कत नहीं हुई। जब जहाँ जो मिला खा लिया और नदी किनारे रह लिए, किसी के घर गए वहाँ पे खा लिया, और जो बिंदास जो था दोस्त उसके साथ थोड़ा अपना ऑर्गेनाइज्ड बंदा था ही, सब कुछ देखने वाला, सो सब ठीक ठाक चल रहा था। तो ऐसे सीजन्स निकलते गए, वो ऐसे कहीं दूसरे गांव चले गए, वहाँ पे काम ढूंढ लिया, वहाँ पे थोड़ा कर लिया, थोड़ी कमाई कर ली, थोड़े ऐसी मज़े कर लिए। सो दे वर हैविंग अ गुड टाइम। एंड देन सीजन चेंज होता गया, तो एक रात को दोनों सोए रहे ऐसे आसमान के नीचे, तो ठंड लगने लगी बहुत ज़्यादा। तो दोनों ने अपने अपने भगवान से, इष्ट देवत जिनको बोलते हैं हम, आराध्य देवत, उनसे प्रार्थना की। तो अपना जो पहला वाला था उसने ऐसे पूछा भगवान से, भगवान जी इतनी ठंड पड़ी है, हम तो घर से निकल पड़े ऐसे, ना तो कुछ है हमारे पास, कुछ नहीं, आप ही को अभी ख्याल रखना पड़ेगा हमारा, क्या करें। क्योंकि दोनों गरीब जो थे ठहरे, ऐसे कोई अच्छे घर से थे नहीं, हाँ संस्कारी थे बट अच्छे घर से, खत पैसे वाले नहीं थे। तो भगवान से मांग लिया, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो ये ले लो, कंबल दे दी भगवान ने। दूसरे दोस्त ने भी मांग लिया तो मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो सह नहीं सकता ठंड, तो मेरी मदद कर दो। तो वो उसने बोला कि वो मुझे ना कंबल बहुत चुभती है, मैं नहीं ले ओढ़ सकता कंबल। तो भगवान जी ने उन्हें दे दिया एक शॉल मुलायम सी, एंड देन चलता रहा। सो जो अपना पहला वाला बंदा है तो उसने सोचा कि भगवान का प्रसाद है तो उसको बहुत संभाल कर रखने लगा। वो तो ओढ़ने से रहा क्योंकि भगवान का प्रसाद है, उसे सिरहाने लेकर ही मेड अ पिलो ऑफ इट एंड ही वुड कैरी इट वेयर एवर ही वेंट। एंड देन ऐसे होते होते वो बहुत दिनों बाद फट गया, लेकिन फटने लगा लेकिन वो रहा उसी के पास वैसे। अब दूसरा जो बंदा है अपना बिंदास हैप्पी गो लकी, कितनी अच्छी यू नो भगवान ने मदद की है मेरी, तो शॉल ओढ़ता गया और यूज करते करते करते फटने लगा। तो उसने फिर से भगवान से मांग लिया एक दिन, तो भगवान ने फिर से शॉल दे दी। तो दूसरे ने पहले वाले ने पूछा मुझे भी दे दो, उसे दिया है तो मुझे भी दे दो, भगवान से पूछा। तो भगवान ने बोला तुम्हारे पास तो है। तो बोला है लेकिन तुमने उसको दे दिया है ना, तो मुझे भी दे दो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास है, यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, मैंने जिस काम के लिए दिया है वो तो तुम कर नहीं रहे हो, उसे कैसे यूज करना ये तुम पर है, लेकिन उसने यूज कर लिया है, फट गया है, तो उसकी देखभाल करना मेरा काम है और तुम दोनों मुझ पर डिपेंडेंट हो इस मामले में क्योंकि तुम बाहर हो, मेरी छत्र छाया में हो। तो अजीब लगा, अरे मैं तो इतने अच्छे से देखभाल करता हूं और भगवान मुझे मना कर रहे, और वो तो उसे तो कदर भी नहीं है भगवान का दिया हुआ, इस बात की कदर ही नहीं है, फिर भी भगवान बोलते हैं कि उसी को मैं दूंगा। एकदम अटपटा सा लगा दोस्त को। जी हाँ, तो द स्टोरी गोज लाइक दिस, डू व्हाट इज गिवन टू यू, मेक द बेस्ट ऑफ इट, डोंट कीप इट इनसाइड। कोई हुनर है, कोई स्किल है या कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, उसको लॉकर में बंद करके रखेंगे तो कैसे चलेगा, भगवान का दिया हुआ है तो उसको यूज करना चाहिए, यूज करे, उसका सही इस्तेमाल करे, सही सा प्रयोग करे, एंड मेक श्योर दैट इट रियली यू नो फ्लरिशस योर कैरेक्टर, योर इंडिविजुअल, योर पर्सनैलिटी, और ना कि उसको लॉकर में बंद करके भूल जाए।

नहीं आती। कभी आपने किसी को देखा है बहुत सिंपल से कपड़ों में, बहुत ऑर्डिनरी सी गाड़ी में, बिल्कुल सादगी से रहते हुए, लेकिन जैसे ही वो बात करते हैं आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है, क्या बात है, कितने क्लासी इंसान है। और कभी कभी इसका बिल्कुल उल्टा होता है, महंगी से महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, बड़ा सा घर, महंगा महंगा रेस्टोरेंट, सब कुछ बहुत महंगा, लेकिन इंसान की बातचीत और बर्ताव देखकर मन कहता है, भाई पैसा तो बहुत है पर तहजीब कहाँ है। तो आज की बातें इधर की उधर की में बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका कोई शोरूम नहीं, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई प्राइस टैग भी नहीं, और फिर भी ये इंसान को सच में बड़ा बना देता है, और वो है क्लास। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके लिए क्लासी इंसान का मतलब क्या है? अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छी इंग्लिश, बड़ा घर, या फिर अच्छा बर्ताव? सोचिए, क्योंकि हम अक्सर एक्सपेंसिव को क्लासी समझने की गलती करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। एक्सपेंसिव बताता है कि चीज कितनी महंगी है, और क्लासी बताता है कि इंसान कैसा है, उसका सब्सटेंस कैसा है, उसकी ग्रेविटी कैसी है। क्लास कपड़ों से नहीं दिखती, क्लास आपके बर्ताव से दिखती है। आप किसी से कैसे बात करते हैं, किसी वेटर से कैसे पेश आते हैं, घर में अपनों से कैसे बात करते हैं, ऑफिस में जूनियर्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप गुस्से में होते हैं तब आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि अच्छे मूड में तो सब लोग अच्छे होते हैं। असली क्लास तो तब दिखती है जब बात आपके मन के मुताबिक ना हो। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपको बहुत बुरा लगा, अब दो रास्ते हैं, या तो आप कहेंगे ठीक है हम डिसएग्री करते हैं ग्रेसफुली, या फिर आप उतर आएंगे ऐसी बातों पे जहां पे आप औकात की बात करें, तुम्हारी औकात क्या है, और बस यही पता चल जाता है कि कपड़े कितने भी एक्सपेंसिव हो, अंदर की तहजीब कितनी है। एक क्लासी इंसान किसी से डिसएग्री कर सकता है, लेकिन बेइज्जत नहीं करता, आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, लेकिन सामने वाले को छोटा करके खुद को बड़ा नहीं बताता। और ये बात कितनी सिंपल है ना, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप होना भी जीत होती है। हर बार किसी को अंडर द बेल्ट हिट करके अपना पॉइंट साबित करना भी जरूरी नहीं, उससे आप बात पे नहीं टिक रहे, बात की गहराई पे भी नहीं टिक रहे, बल्कि आप इधर उधर जा रहे हैं ताकि आप सामने वाले को वहां हिट कर सके जो आपको पता है कि उसकी कमजोरी है। और इसमें कोई क्लास नहीं है दोस्तों, ये बहुत बहुत बुरी आदत है। एक और चीज, माफी मांगना। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सॉरी बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। नहीं, गलती के बाद सॉरी कह पाना इंसान को छोटा नहीं बड़ा बनाता है। क्लास ये भी है कि आपको पता हो कब बोलना है, कितना बोलना है, और कब और कहां चुप रहना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मैसेज का रिप्लाई भी जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट का लास्ट वर्ड आपका हो ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं दोस्तों। और शायद क्लास की सबसे खूबसूरत पहचान भी यही है, आप दूसरों को उनकी इज्जत देते हैं चाहे आपको उनसे कुछ लेना देना भी नहीं हो। आप ये देख के इज्जत नहीं देते कि इससे मुझे क्या मिलेगा या क्या मिल सकता है या इससे मुझे क्या देना पड़ेगा। किसी ने आप पर भरोसा करके अपनी पर्सनल बात कही तो
तो वो बात आपकी गॉसिप मटेरियल नहीं बन गई। चाहे कल आपकी उस इंसान से दोस्ती रहे या नहीं रहे, उसकी प्राइवेट बात प्राइवेट ही रहनी चाहिए। ये होती है असली क्लास, क्योंकि रिश्ता खत्म हो जाता है लेकिन तहजीब खत्म नहीं होनी चाहिए। रिश्ते की शर्म, रिश्ते की लाज, वो बची रहे तो अच्छा है। चलिए एक आज का सवाल, आपके हिसाब से किसी इंसान की असली परख कब होती है? जब उसके पास सब कुछ हो, या जब उसके पास कुछ भी ना हो, या फिर जब उसके पास पावर हो और सामने वाला उससे कमजोर हो? मुझे लगता है वही पल बहुत कुछ बता देता है। आपके पास किसी को नीचा दिखाने की पूरी ताकत है, पूरी अपॉर्चुनिटी है, और फिर भी आप उसे इज्जत देते हैं और मन से इज्जत देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। That for me is class. पैसे से आप महंगी शर्ट खरीद सकते हैं, महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, महंगी घड़ी खरीद सकते हैं, महंगा सोफा खरीद सकते हैं, महंगी टेबल पर डिनर कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक चीज, कैरेक्टर, उसकी कोई दुकान नहीं है, उसका कोई डिस्काउंट नहीं है और उसका कोई शोरूम भी नहीं है। कैरेक्टर कमाना पड़ता है। और कितनी अजीब बात है, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कितना कमाते हो, कौन सी कार है, घर कहाँ है, कौन सी ब्रांड पहनते हो, लेकिन शायद सवाल कुछ और ही होने चाहिए। आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, आप गुस्से में क्या करते हैं, आप किसी की गलती को माफ कर पाते हैं या नहीं, आप किसी की पर्सनल बात को संभाल कर रख पाते हैं या उसे गॉसिप बना देते हैं, और क्या आप बिना किसी को छोटा किए हुए खुद को बड़ा महसूस कर सकते हैं? क्लास की असली डिक्शनरी इन्हीं सब क्वेश्चंस में है। तो अगली बार जब आपके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी में आए, उसकी गाड़ी देखकर इम्प्रेस होने से पहले उसका बर्ताव देखिएगा, और अगली बार जब कोई बहुत सिंपल कपड़ों में मिले, उसे कम मत समझिएगा। हो सकता है उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कम हो, लेकिन दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ हो, क्योंकि पैसा बताता है कि इंसान क्या अफोर्ड कर सकता है, लेकिन क्लास बताती है कि वो असल में कौन है, कैरेक्टर क्या है। तो आज की बात बस इतनी सी है, महंगा होना आसान हो सकता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना, एक कैरेक्टर होना, वो आपकी असली कमाई है। याद रखिए, क्लास कपड़ों पर नहीं होती, क्लास बर्ताव में होती है। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां बातों के बीच कभी कभी जिंदगी की एक छोटी सी बात मिल ही जाती है ना। मिलते हैं अगली कहानी में।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार गप्पू का सर फट गया, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, ये सर कैसे फट गया? गप्पू ने कहा, मैं ईंट से पत्थर तोड़ रहा था। तो डॉक्टर ने कहा, तो ईंट से पत्थर तोड़ रहे थे तो तुम्हारा सर कैसे फट गया? मेरे पापा जी ने कहा, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं राकेश पंचाल जी के बारे में, जो एक उद्यमी हैं और समाज सेवी भी। इन कपकपाती सर्द रातों में गर्मा गर्म भोजन के बाद जब हम अपने लिहाफ में घुसते हैं, तब कितनी बार हमें ख्याल आता है कि न जाने कितने देशवासी भूखे पेट फटे अधूरे कपड़ों में अपने जान की पनाह मांगते हुए बाहर भटक रहे होंगे। अगर ख्याल आया तो समर्थ होते हुए भी हमने इंसानियत की क्या खिदमत कर दी है। राकेश पंचाल जैसे लोग इन सवालों के जवाब हैं, मगर अफसोस ऐसे जवाब बहुत कम हैं। आज से करीब 44 साल पहले गुजरात के वसो गांव में पैदा हुए राकेश के पिता मनुभाई पंचाल का निर्माण सामग्रियों का एक छोटा सा कारोबार था। पिता और काका के संयुक्त परिवारों की सारी जरूरतें इसी एक बिजनेस से पूरी होती थी, लिहाजा कारोबार का तनाव अक्सर घर तक चला आता। राकेश और उनसे 2 साल बड़े भाई का बचपन इसी तनावपूर्ण माहौल में तमाम तरह की समझौतों के बीच गुजरा। गांव के सरकारी स्कूल में ही राकेश की पढ़ाई हुई। ये गुजराती माध्यम का स्कूल था। राकेश पढ़ने में काफी अच्छे थे और सेवा भावी पिता और उनके बड़े भाई ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। किशोरावस्था में राकेश को जो जो पेशा आकर्षित करता वो उसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लेते। वैज्ञानिक से अदाकार और इंजीनियर से पत्रकार बनने तक की उनके सपनों ने कई उड़ानें भरी, मगर आसपास कोई ऐसा न था जो उनमें से किसी एक की गहराई से उनको वाकिफ करा पाता। 12वीं में गांव के 4 बच्चे ही पास हो सके थे, उनमें से एक राकेश भी थे। पड़ोस के साइंस कॉलेज में उन्हें आसानी से दाखिला मिल गया, मगर गुजराती माध्यम से इंग्लिश मीडियम का सफर आसान नहीं था। परेशानी वाली बात यह थी कि उन्हीं दिनों दादाजी के देहांत के बाद संयुक्त परिवार की चूलें हिल गई थी और उनका तनाव पहले बड़े भाई की पढ़ाई निकल गया और फिर राकेश भी इससे प्रभावित होने लगे। नतीजा यह हुआ कि फर्स्ट ईयर का इम्तहान वो पास नहीं कर सके, मगर वो लगातार कॉलेज जाते रहे। राकेश को लगता था कि दूसरे साल में वो पिछले पेपर भी क्लियर कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और वो अनुत्तीर्ण करार दे दिए गए। सिर्फ माता पिता अपनी संतान को कभी फेल नहीं मानते। परिवार का कारोबार बट चुका था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर मनु भाई ने बेटे से पूछा, आगे बढ़ना चाहते हो? राकेश ने इंग्लिश मीडियम से ही कोई कोर्स करने की ख्वाहिश बताई। उन दिनों बैंगलोर के कई संस्थान 12वीं के अंक पर आधारित विभिन्न तरीके के डिप्लोमा कोर्स कराते थे। राकेश का अगला पड़ाव बैंगलोर बना। पिता ने ब्याज पर कर्ज लेकर फीस के पैसे दिए, ये बात राकेश कभी नहीं भूले। काफी अच्छे ग्रेड के साथ उन्होंने वो पाठ्यक्रम पूरा किया। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हाथ में था, मगर उसके आधार पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए जोशी कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी ले ली, तो चंद महीनों में वो भी हाथ से निकल गई। अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह संवाद न कर पाने की वजह से विषय की महारत पर भारी प्रभाव पड़ रहा था। राकेश बेहद आहत थे। पिता से पैसे नहीं मांग सकते थे और बैंगलोर जैसे महंगे शहर में जीने की बड़ी परेशानियां थीं। आखिरकार वो वसो लौट आए। संजोग से उन्हीं दिनों मशहूर निर्माता निर्देशक देवांग पटेल एक गुजराती धारावाहिक के सिलसिले में वसो शूटिंग के लिए आए। राकेश को उसमें काम करने का मौका मिल गया। एक्टिंग के क्षेत्र में दिलचस्पी उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री के लिए बड़ौदा ले गई, मगर इस दौरान गुजराती धारावाहिकों में इतने काम मिल गए कि उसकी व्यस्तता में वो डिग्री भी अधूरी रह गई। राकेश को काम तो मिल रहे थे, मगर मनपसंद भूमिकाएं न मिलने से वो निराश थे। उन्हीं दिनों ईटीवी गुजराती चैनल में एंकर्स और पत्रकारों के लिए लिखित परीक्षाएं हो रही थीं। पिता ने ही राकेश को ये बताया और उन्होंने फौरन आवेदन कर दिया। साल 2007 की बात है। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए राकेश चुन लिए गए। बतौर एंकर हैदराबाद में उनके इस नए सफर का आगाज हुआ। अगले 7 सालों के पत्रकारीय करियर में
राकेश दिल्ली और मुंबई में वॉइस ऑफ इंडिया और मिडडे गुजराती वेब पोर्टल से भी जुड़े, मगर इस बार पिता की खराब सेहत उन्हें फिर वसो ले आई। पिता स्वस्थ हुए तो उन्होंने राकेश से अपने कारोबार के विकल्प पर गौर करने के लिए कहा। राकेश भी इस बार राजी हो गए। उन्होंने पिता के साथ 2 सालों तक कारोबार और जिंदगी की बारीकियां समझी। नोटबंदी के दौरान पिता ने उनके लिए एक अलग दुकान की व्यवस्था की और इसके साथ ही तरह तरह के सपनों का ये मुसाफिर स्थायी रूप से कारोबारी बन गया। सेवाभावी पिता ने एक दिन राकेश से अपनी दिली इच्छा जताई कि वो गरीब लोगों के लिए राम रोटी सेवा यानी कि मुफ्त भोजन शुरू करना चाहते हैं। तब राकेश ने कुछ बेदिली से कहा कि इसमें तो काफी पैसे लगेंगे, हम ये काम कुछ दिनों के बाद ही कर सकेंगे। इस गुफ्तगु के तीसरे दिन पिता अचानक दुनिया से चल बसे। बेटे के दिल में एक कसक रह गई कि पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो लानत है इस जिंदगी पर। पिता की मौत के तीसरे दिन ही गरीबों को मुफ्त भोजन कराने की राम रोटी सेवा अब विसामो टिफिन सेवा के नाम से वसो तालुका के गांव गांव में मशहूर है। इस क्षेत्र के करीब 500 बेघर अशक्त और गरीब बुजुर्गों को राकेश की संस्था रोजाना मुफ्त भोजन मुहैया कराती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट बोला, किसी को बचने की कोई प्रार्थना करनी आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, हाँ बेटा मुझे आती है। पायलट ने बोला, ठीक है बाबा आप प्रार्थना करो, एक पैराशूट कम है।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है।

माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जला लेती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर लेता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, हमारे देश में लोग गिफ्ट मिलने पर थैंक्स नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

होती आरती, बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर देखो तो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको दे देना, प्रसाद मुझको चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले तुझको बिना मांगे सब मिल जाएगा।

किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

0: तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम, जाबुआ की आवाज।
2: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन कीर्तन कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यही वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

अकेला चलो रे। सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: इंसुलिन की कहानी भाग एक।
2: सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था।
3: थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ, थोड़ा और, बस। मुझे खेद है कैप्टन, लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा।
4: नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं
3: कैप्टन,
4: बिल्कुल नहीं।
3: मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है,
4: लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर।
3: ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं।
4: शुक्रिया।
3: मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे।
4: शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया।

0: मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बांह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। एक साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था, द रिलेशन ऑफ द आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस टू डायबिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटिक लिथियासिस। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोजेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की तीन मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। लिगेट द पैनक्रियाटिक डक्ट्स ऑफ डॉग्स, कीप डॉग्स अलाइव टिल एसिडी डिजनेट, रिमूव द रेसिड्यू एंड देन आइसोलेट इंटरनल सिक्रेशन। ये साधारण सी पंक्तियां थी पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीच थे।
1: डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर एफ आर मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया,
2: प्रोफेसर मिलर, ये देखिए, इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैनक्रियाटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहांस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं।
3: वाकई ये एक बहुत सरल विचार है।
2: हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है।
3: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
3: मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी।
2: तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: डॉक्टर बेंटिंग
2: जी,
3: आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए।
2: टोरंटो?
3: वहाँ शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैकलियोट
2: जी,
3: जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी।
2: ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: वेलकम।
0: अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैकलियोट से उनके दफ्तर में मिले।
2: प्रोफेसर?
4: हाँ,
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: आइए, कृपया यहाँ बैठिए।
2: जी धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है।
4: किस लिए?
2: जी

0: ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे?
0: सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है इसका पता लगाकर।
1: हाँ जी हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है।
0: अच्छा सर, मैं सोचता हूँ कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
1: पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है?
0: ये बिल्कुल स्पष्ट है और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
1: क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है?
0: जी जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ।
1: डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूंगा।
0: जी,
1: आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर बेंटिंग।
0: जी,
1: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ।
0: जी सर।
1: उनके अलावा आप क्या अलग करना चाहते हैं?
0: मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर।
1: डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्कसंगत तो बनना ही पड़ेगा।
0: जी जी सर।
1: विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूँ? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं।
0: जी।
1: आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है।
0: सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है।
1: ओके।
0: कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूँ और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूँ और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की अनुमति मांग रहा हूँ।
1: डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें और उसके बाद एक या दो महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं।
0: शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रोफेसर मैकलियोट, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा।
1: अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं। अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं।
0: जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
1: बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बहुबी प्रयोग कर सकते हैं।
0: और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं?
1: अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
2: ये साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए, ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो। इन सब उपचारों से मरीज कुछ ही बरस तक जी तो जरूर लेते थे पर वो बचते नहीं थे। कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूख से ही मर जाता था।
3: लंदन को अलविदा कहकर डॉक्टर बेंटिंग अपनी कार में दो सूटकेस डालकर टोरंटो के लिए रवाना हो गए। उनके मित्र फ्रेडरिक हिपवेल और उनकी पत्नी ने अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह दे दी। प्रोफेसर मैकलियोड ने अपना वादा निभाया। मेडिकल स्कूल की इमारत की दूसरी मंजिल पर 10 कुत्ते और एक टेबल पर बनी एक छोटी रसायन प्रयोगशाला उनके आगमन पर तैयार थी। सन 1921 को 17 मई के दिन मैकलियोड ने सर्जरी का पहला प्रयोग बेंटिंग और बेस्ट के जिज्ञासु दल को खुद करके दिखाया। प्रोफेसर मैकलियोड ने पहले कुत्ते की सर्जरी के बाद किसी दूसरी सर्जरी में हिस्सा नहीं लिया। जून 14 सन 1921 को वो 3 महीने के लिए लंबी छुट्टी पर स्कॉटलैंड चले गए और तब बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोगशाला की छोटी सी कोठरी में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गई।
0: चार्ल्स, हमारे पास 10 कुत्ते हैं और हमें इनमें से 5 को डायबिटीज से ग्रसित रोगी बनाना है।
1: क्या?
0: हाँ, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी।
1: अब डॉक्टर बेंटिंग, तुम्हारा मतलब है कि इन 5 कुत्तों में एंटी डायबिटिक गुण उत्पन्न होंगे?
0: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है?
1: ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह?
1: डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी, डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा?
1: हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैकलियोड ने मुझे पहले ही बता दिया था।
0: अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है।
1: अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम?
0: बस अभी।
3: मैकलियोड ने पहले अपनी प्रयोगशाला के लिए 8 सप्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्त हो चुका था। 10 में से 7 कुत्ते वो पहले ही खो चुके थे, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। इसलिए बेंटिंग ने और कुत्ते खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी। अब बेस्ट शहर की गलियों में क्या दिन क्या रात कुत्तों की तलाश में निकल जाते थे। उनके मालिकों से मोलभाव करते उन्हें खरीदकर प्रयोगशाला में ले आते थे। लेबोरेटरी में सैकड़ों कुत्तों पर उन्होंने प्रयोग किए। हर कुत्ते को एक नंबर दिया जाता था। कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था तो कभी ऑपरेशन की तारीख के मुताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था। ज्यादातर ऑपरेशन के बाद कुत्ते अपनी सामान्य स्वास्थ्य की हालत में वापस आ जाते थे, पर उनके अग्नाशय से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अग्नाशय अवयव की बाहरी कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाती थीं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थीं। एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैकलियॉड प्रयोगशाला में थे।
4: ये तो मैंने कर दिया।
0: चार्ल्स, इस सिकुड़े हुए अग्नाशय को काटकर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो।
5: जी डॉक्टर।
0: और हाँ, परख नली के चारों तरफ बर्फ के टुकड़े रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग।
0: और हाँ, जब अग्नाशय तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो छान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो। समझ गए?
5: जी। ये मैंने छान लिया और इसको अलग कर लिया। वाह, ये रहस्यमयी तरल कई बार निथारने के बाद बना है।
0: अरे वाह चार्ल्स, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक काम करते हैं चार्ल्स, क्यों ना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
1: अच्छा, तो काम आप लोगों का यहाँ पर।
0: मैकलियॉड सर आइए ना।
5: आइए सर।
0: इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
5: क्योंकि ये लैंगरहैंस के आइलेट से आया है।
1: हाँ, वैसे सोचना आपका अच्छा है, पर आइलेटिन को मेरा ख्याल है कि इंसुलिन कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में आइलैंड को कहते हैं इंसुला। इंसुला, इंसुलिन, राइट?
0: हाँ सर,
5: राइट सर,
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैकलियॉड सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
5: जी मैं भी।
0: हाँ, सही फरमा रहे हैं।
1: थैंक यू।
3: प्रयोग के दूसरे कुत्तों के समूह का सारा ही अग्नाशय बाहर निकाल दिया गया। बिना अग्नाशय के ये कुत्ते डायबिटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग एक सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अग्नाशय की नली को बांध दिया गया था दोबारा ऑपरेशन किया जाता था। डायबिटीज रोग से ग्रस्त दो कुत्तों में से एक का इलाज अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया।
5: डॉक्टर बेंटिंग,
0: हाँ,
5: वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया।
0: हाँ, लेकिन चार्ल्स फिर भी वो चार दिन तक जिंदा रहा।
5: हाँ।
0: अच्छा, उस पीले रंग के कोली कुत्ते का क्या हुआ?
5: तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92?
0: हाँ हाँ, वही नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 cc एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है।
5: मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूँ।
0: चार्ल्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी?
5: 12 बजे के करीब ये 43 थी।
0: 43? चार्ल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। डॉक्टर बेंटिंग, इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है।
0: ये देखिए,
5: रात के 2 बजे अब ये 33 अंक पर है।
0: हाँ।
5: 3 बजे 29 अंक पर।
0: अच्छा।
5: और 4 बजे 21 अंक पर।
0: अरे वाह।
5: और 5 बजे ये 15 अंक पर है।
0: बहुत खूब।
5: यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया।
0: अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है।
5: हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया।
0: अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया सच में। अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
5: लेकिन डॉक्टर बेंटिंग,
0: हाँ,
5: हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे।
0: हाँ, हाँ चार्ल्स, देखो देखो, ये कुत्ता भी कितना खुश है ना। हाँ। और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। सचमुच चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
5: हाँ डॉक्टर,
0: सच में। हाँ। आखिरकार हमने कर लिया,
5: कर दिखाया,
0: अपने मकसद में कामयाब हुए।
5: हाँ डॉक्टर। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ।
3: शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया। उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई।
6: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी भाग 2। हमारा आज का समय यहीं समाप्त होता है, तो अब मुझे यानी अजीत को और
7: विमलेश को
6: आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल बुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ
1: ખેતીવાડી,
0: આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વશમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વશમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના જ સમય પર હાજર થતો રહેશે. કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે બોકડા પાળવાની વાતો. કિસાન ભાઈઓ, બોકડીને ગરીબોની ગાય કહેશે અને પશુપાલનમાં બોકડી એક એવો પશુ છે તેઓ કમથી કમ સમયમાં અધિક મુનાફો આપણા કિસાન ભાઈઓને આલે છે. કિસાન ભાઈઓ, આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં વિસ્તૃત રૂપ દેખી બોકડા પાળવાની વાતો વતાડવા હારું આપણી હાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ થયા છે પશુ વિશેષજ્ઞ શ્રી ડોક્ટર KL ડામોર, અતિરિક્ત ઉપસંચાલક પશુપાલન અને ડેરી વિભાગ ઝાબવા મધ્યપ્રદેશ દેખી. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર ની કરીએ, શરૂઆત કરીએ આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં બોકડા પાળવાની વાતોની.
2: પશુ વિશેષજ્ઞ જો કે ડોક્ટર સાહેબ KL ડામોર સાહેબ, જો કે અતિરિક્ત ઉપ સંચાલક પશુપાલન એવં ડેરી વિભાગ જિલ્લા ઝાબવા છે. તો સરજી નમસ્કાર.
3: નમસ્કાર
2: સરજી, યે બતાઈએ કે બકરી પાલન કે લિયે કિસાન ભાઈઓ કો આવાસ કેસા રખના ચાહિયે?
3: અચ્છી બાત હૈ યે, જૈસે હમારા પશુપાલન વિભાગ શાસન કી વિભિન્ન યોજનાઓ કે માધ્યમ સે પશુપાલકો તક સુવિધાએ અધિક સે અધિક લાભ દેને કે લિયે તત્પર હૈ. બકરી હમારે યહાં કિસાન કો ગરીબ કી ગાય કહી ગઈ હૈ. બકરી
2: જી જી,
3: કિસાનો કે લિયે
2: જી
3: બકરી કો ગરીબ કી ગાય કહા ગયા હૈ. અબ સ્વાભાવિક હૈ કી કેવલ હમ ગાય પાલન યા ભેંસ પાલન કરે, उसके साथ साथ में हम बकरी पालन भी करें
2: जी,
3: क्योंकि हमारे यहाँ झाबवा जिले में एक तो खूब बड़े बड़े किसान नहीं है, रकबा जमीन का छोटा है
2: जी,
3: तो कम संसाधन में अधिक से अधिक हम उसकी आय को बढ़ा सकें, ऐसा कोई प्रयोजन हो तो उसके लिए लाभदायक
2: जी जी.
3: तो बकरी के लिए कोई चारा पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है
2: जी जी,
3: है ना
2: जी सर,
3: घर में ही अपन रख सकते हैं
2: जी सर.
3: और बकरी के लिए खासकर हम लोग पालन करते हैं, बकरी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे झाबुआ जिले के हर किसान के घर में बकरियां पाई जाती हैं
2: जी जी,
3: हर किसान हमारा बकरी पालता है, क्योंकि वो उसकी एक प्रकार से छोटी सी बैंक है, उसको जब आर्थिक कोई परेशानी होती है तो तुरंत बकरी पकड़ के ले जाता है और बेच के
2: हाट में बेच के अपना रोजगार, अपना पैसा,
3: तात्कालिक व्यवस्था उसकी उसी से होती है
2: जी जी.
3: पर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें जो हमारा पशुपालक बकरी पाल रहा है उसमें और बेहतर हो सकता है, उसको अधिक आमदनी हो सकती है उसी में, कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत
2: जी जी.
3: उसके लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो मैंने देखा है जो बकरियों का रख रखाव है वो तो काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह तो लोग बाहर बाड़ों में बांध देते हैं, एक तरफ रखते हैं, हमारे यहाँ तो किसान भले बाहर सोएगा पर उसको घर के अंदर रखे,
2: बकरी को घर में रखे.
3: कुछ तो परिवेश या हमारे यहाँ की स्थितियां भी ऐसी है कि रात में कोई चोरी चमारी भी हो जाती, इससे सेफ्टी के उद्देश्य भी, सुरक्षा के उद्देश्य भी रखता है
2: जी जी,
3: इसलिए वो बढ़िया सूखी जगह में रखता है, मैंने देखा कच्ची जगह में भी रखता है. और दूसरा हमें ये पहलू एक दूसरा देखें तो वर्तमान में हमारे पास चरणों की भूमि का रकबा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, अतिक्रमण हो गया है सभी जमीनों पे
2: जी जी.
3: तो बड़े पशु चराने की जगह नहीं है, तो ये छोटे पशु क्या है, छोटे मोटे पेड़ पौधे के खा के पत्तियां खा के ये बकरियों का हम पालन कर सकते हैं
2: जी जी.
3: ये तो इसलिए ये हमारे लिए काफी उपयोगी
2: जी जी.
3: अब हमें किसान को एक चीज बताने की आवश्यकता है
2: जी,
3: कि जो पशुपालन में जो हम साथ साथ में जो बकरी पालन कर रहे हैं तो हम जो देशी नस्ल की पशु कर रहे हैं, या जो हमारी बकरी की नस्ल है वो कोई विशेष अच्छी नस्ल नहीं है.
2: हाँ, जो उत्पादन
3: स्थानीय है. तो अभी अब जो है फील्ड में भी हम देखते हैं कि कुछ क्रॉस बकरियां हुई है
2: जी जी.
3: जैसे आपको बताऊं मैं कि हमारी योजनाओं में हम सिरोही बकरे जमुनापारी बकरे देते हैं।
2: जी जी
3: सर। कुछ योजनाओं में सिरोही बकरियां भी दिए।
2: जी जी।
3: अब धीरे धीरे इन नस्लों का क्रॉस हुआ है।
2: जी सर।
3: तो जमुनापारी और सिरोही जो नस्लें हैं वो काफी बड़ी बड़ी बकरियां होती है।
2: जी जी।
3: और एक बार में दो दो तीन तीन बच्चे देती है।
2: जी।
3: दो तो देती ही।
2: जी।
3: और दूध भी इतना अच्छा देती है कि वो उनके बच्चों का भी लालन पालन हो जाता है।
2: जी।
3: और हमारे छोटे परिवार में उसके बच्चों के लिए या चाय के लिए दूध की व्यवस्था
2: भी हो जाती है।
3: और बकरी हमारी ऐसी है कि जब जैसे पकड़ो उसको पैर पकड़ के दूध निकाल।
2: जी सर।
3: गाय भेल भेल तो एक समय पे दूध देते हैं सुबह शाम।
2: जी।
3: बकरियां ऐसी है हमारी की वो कभी भी दूध पकड़ा और दूध निकाल लिया। तो अब क्या होता है कि जैसे हम इससे अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं।
2: जी सर।
3: तो एक तो इसमें कोई बड़ा ही लागत चारे पानी घुसे की नहीं
2: है। हाँ, ज्यादा काटी नहीं है,
3: है ना। दूसरा एक ये है कि हम जो हमारे घर में जो बकरियां हैं उसको अच्छी नस्ल की पाले, जमुनापारी सिरोही आदि नस्लें जो अच्छी है, उससे क्या होगा

0: हमारा ये संदेश हम चाहते हैं हर बकरी पालक तक जाए
1: जी सर,
0: क्योंकि अगर वो उसको चिमटा लगवा लेगा, वाजिया करवा देगा
1: जी,
0: तो वो कम समय में अधिक से अधिक वजन कर लेगा,
1: कवर कर लेगा और उसका मूल्य
0: अगर हाँ अगर ज्यादा वजन अच्छा फेटी बकरा बना वजनदार तो उसको कीमत उसकी अच्छी मिलेगी,
1: अच्छी मिलेगी
0: तो उसको अधिक से अधिक लाभ होगा
1: जी।
0: दूसरा एक ये है कि जो बकरियों का रखरखाव के साथ साथ
1: जी जी
0: कुछ इनकी बीमारियां जो है
1: हाँ,
0: इससे भी हमने देखा कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है
1: जी।
0: कई कई कई बार क्या होता है कि पूरे घर में बकरियां पूरे पूरा
1: एक साथ
0: हाँ, खत्म हो जाती
1: है जी जी।
0: तो उसमें मेन जो इनकी संक्रामक बीमारी है वो है हमारी पीपीआर नामक बीमारी है, जिसमें दस्त भी लग जाते हैं, निमोनिया भी हो जाता है, आवाजें भी बैठ जाती है, आंखों में सूजन आ जाता है, ऐसे
1: लक्षण
0: दिखते हैं और खत्म हो जाते हैं
1: जी जी।
0: तो ये पीपीआर नाम की जो बीमारी है
1: जी जी,
0: इसका टीका हमारे यहाँ पशुपालन विभाग की ओर से निःशुल्क रूप से किया जाता है
1: जी जी।
0: और इसका टीका एक बार जीवन में लगा लिया दूसरी बार जरूरत ही नहीं पड़ती
1: जी जी।
0: तो
1: सर, ये टीका जो लगता है जो बकरियों में कौन सी आयु में लगता है सर?
0: ये तो हम 4-5 महीने के बाद सब में लगा सकते हैं। बाकी जीवन में एक ही बार लगवा लोगे
1: जी जी
0: तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
1: खतरनाक बीमारियों से एक साथ मरने वाली
0: ये पीपीआर
1: जी जी।
0: और दूसरी हमारी चलती है वो अपना इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसको आंत्र विषाक्त कहते हैं
1: जी जी,
0: आंत्र शोर
1: जी, पेट में कृमि पाए जाते हैं
0: हाँ, फेफड़ आंतों में सूजन आ जाती है तो दस्त लग जाते हैं
1: जी जी।
0: हमारे यहाँ कहते ना कि दस्त लग लग के
1: मर, हाँ हाँ,
0: रात में शाम को दस्त लगे, शाम सुबह
1: सुबह में खत्म हो जाए
0: जी जी। तो वो इंट्रोटॉक्सिमिया
1: जी,
0: आंतों की विषाक्तता है
1: जी जी,
0: उसमें दस्त लगते हैं तो उसमें एकदम मृत्यु दर होती है
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन आ गया है
1: जी जी।
0: तो वो भी हर 6 महीने में लगता है,
1: 6 महीने में एक बार
0: हाँ। तो वो भी हमारे जो बकरियां हैं उनको हम बिल्कुल अपने पास जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां जाके संपर्क करके इस वैक्सीन को लगवा लें
1: जी सर।
0: वैक्सीन बहुत बड़ी सुरक्षा है
1: जी,
0: ये हमें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम समझते हैं नहीं, और कभी जब ऐसी बीमारियां चलती है तो फिर हमारा बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो
1: जी,
0: एक साथ मर जाते हैं जी। तो वैक्सीनेशन हमें बहुत जरूरी करवाना है। बाकी दूसरा जो सीजनली कुछ चीजें हैं, जैसे अभी बारिश में जैसे ये मुंह में होठों पे
1: हाँ,
0: घाव हो जाते हैं
1: पांव में भी हो जाते हैं
0: हाँ, वो जिसको कंटीजियस एक्थाइमा कहते हैं
1: जी जी।
0: तो इसमें क्या है, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह से मुंह धो, एंटीसेप्टिक मलम आते हैं उनसे अपन लगाव करो, तो वो
1: हाँ, पका मुंह पका
0: हो तो उसमें अपन जाके अस्पताल के पास जो भी नजदीक है वहां जाएंगे तो अपना इलाज बराबर हो जाएगा
1: जी।
0: अभी जैसे बरसात के समय में इसके साथ साथ में पैरों की सड़न हो जाती है
1: जी जी,
0: गीले में चलती है कीचड़ में
1: बकरी
0: तो उसमें भी घाव वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वो जंतु वंतु रख जाते हैं, वो दिक्कत आ जाती है
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी हम पोटेशियम परमैंगनेट से उसको पेट को धोके सूखी जगह में
1: लाल दवाई दी
0: जी जी। और जो भी अस्पताल में जाके एंटीसेप्टिक मलम वगैरह लेके उसका इलाज करवा लेंगे तो वो भी कवर हो जाए, वो संक्रामक नहीं
1: मतलब फैलने वाला नहीं।
0: जो कार्टेरिया संक्रामक बीमारियां ऐसी रहती है जो एक के दूसरे से संपर्क से फैलती
1: हाँ, उनके टीके लगते हैं
0: जो पीपीआर और इंट्रोटॉक्सिमिया, ये अपने जीवन काल में पशुओं को बहुत जरूरी है
1: जी जी।
0: अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा।
1: सर, बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
0: आहार के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का
1: होता है,
0: 5 महीने 150 दिन का
1: जी जी,
0: 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन
1: जी।
0: तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले
1: हाँ चरने जाने से रोक लेना चाहिए
0: हाँ, उसको अलग रख ले
1: जी,
0: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे
1: जी,
0: 200-250 ग्राम
1: प्रतिदिन
0: के हिसाब
1: जी।
0: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए
1: हाँ,
0: वो जो उसके उसका अडर बनेगा
1: उसका
0: दूध की वो जो तैयारी है
1: हाँ,
0: उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी
1: जी जी,
0: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके।

0: तो वो जरूरी है अपने, उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा
1: जी सर।
0: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे वो वजन भी अधिक समय में, कम समय अधिक ग्रहण करेंगे
1: जी जी,
0: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
1: तो सर जी ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से, अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे किसानों को, ऐसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका
1: जी।
0: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
1: जी
0: और एक बकरा उन्नत नस्ल का,
1: उन्नत नस्ल,
0: तो 10 बकरी और एक बकरे की एक इकाई कही गई
1: जी जी।
0: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,000 रुपए के लगभग
1: लगभग है।
0: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है
1: जी,
0: उनके लिए 60% की सब्सिडी
1: अनुदान है,
0: अनुदान
1: जी जी,
0: करीब 45,000 के आसपास है
1: जी,
0: 77,000 के ऊपर ऊपर जो भी बने उसका 60%।
1: हाँ।
0: और सामान्य वर्ग के लिए
1: 50%। तो सर जी ये बताइए कि उसमें हमारे किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
0: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन अमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है
1: जी,
0: वो बैंक से संबंधित है
1: जी जी,
0: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
1: बैंक का,
0: बैंक का लोन
1: लोन लोन देगी।
0: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो,
1: हाँ,
0: कोई कर्ज बाकी हो,
1: हाँ,
0: तो ये हमें इसका लाभ लेने में दिक्कत
1: आएगी।
0: हाँ। इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
1: ऐसा किसान उसका लाभ ले,
0: ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है। बिना बैंक के सेंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते
1: जी। सर बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
0: हाँ, उसमें दी जाती है ना, 4 पशु, 5 पशु या 10 पशु, 2 इकाई है आचार विद्या सागर योजना
1: जी जी,
0: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है
1: जी जी।
0: गाय में अपन जर्सी HF भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते
1: जी
0: हैं जी। तो भैंसों में, भैंसों का ही वो भी 5 और 10 की इकाई
1: जी जी,
0: तो अपन जो चाहे 5 पशु की इकाई के लिए उसमें 1 एकड़ जमीन की जरूरत है।
1: हाँ।
0: और 10 पशु के लिए 2 एकड़ जमीन,
1: 2 एकड़।
0: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे,
1: हाँ,
0: जमीन उसी के नाम की
1: होना चाहिए
0: और वही है वो बैंक से संबंधित है।
1: हाँ।
0: जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा,
1: हाँ,
0: तो बैंक उसको लोन कर देगी
1: जी जी।
0: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम
1: जी, जी जी,
0: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख
1: जी,
0: ये हमारी लिमिट है
1: जी।
0: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
1: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
0: हाँ, शासन के पास बीमा की भी योजना है
1: जी,
0: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया
1: जी,
0: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है
1: जी जी,
0: जिसमें सब्सिडी 70% तक
1: 70% तक
0: 1 साल का बीमा होता है
1: जी,
0: और 3 साल का बीमा होता
1: जी जी,
0: ये उसका प्रावधान है
1: जी।
0: और इसकी जो वो लगती है अपनी प्रीमियम
1: जो राशि
0: राशि लगेगी, हाँ, बीमा राशि लगेगी
1: जी जी,
0: उसका
1: किसान भाई को देना,
0: किसान भाई को उसकी कीमत के अनुसार
1: जी जी
0: जो राशि बनेगी उसके केवल 70% उसकी राशि उसको देना है, बाकी 30% उसको खुद को देना। मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की मान लो बीमा की किस्त बन रही
1: है, हाँ,
0: उसका प्रीमियम बन रहा है
1: जी जी,
0: तो 30 रुपए उसको देना है, 70 रुपए गवर्नमेंट मिले,
1: 70 रुपए गवर्नमेंट देगी,
0: तो उसमें अपनी रिस्क कवर हो जाती
1: जी जी।
0: तो उसमें हम हमारे पशु को बीमित रखें,
1: हाँ,
0: उसमें 10 बकरियों की एक इकाई गिनी गई
1: जी जी,
0: तो हम 50 बकरी तक का बीमा कर सकते हैं
1: जी जी,
0: और पशु बढ़ा लेंगे तो केवल 5 लाख
1: जी जी।
0: तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये भी सभी को पता होना चाहिए
1: जी जी,
0: क्योंकि समय निकल जाता है और मान लो जैसे हमारे पास 10 पशु है, 10 बकरियां हैं
1: जी जी,
0: अब मान लो कोई 2 बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, तो हमारी लागत भी वसूल हो जाती
1: जी जी,
0: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ
1: नहीं ले पाते हैं। तो सर जी हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि उनके पास 2 बैल तो होते ही हैं, लेकिन उन 2 बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं, तो सर जी बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
0: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है
1: जी जी,
0: आजकल सब क्या है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है
1: जी।
0: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं
1: हाँ।
0: उनके द्वारा नियुक्त होते हैं जो प्राइवेट कंपनियां करती है
1: जी जी।
0: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते
1: अनुबंध करते हैं
0: साल के लिए दो साल के लिए जो भी हो जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए
1: जी जी।
0: वो उनके एजेंट रखती है और जो हमारे विकास खंड स्तर पर जो पशु चिकित्सक है
1: जी जी
0: पशु चिकित्सा अधिकारी है
1: जी जी जी।
0: वो इनका बीमा करते हैं
1: जी सर।
0: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है
1: हाँ।
0: वो बीमा करते
1: बीमा करते हैं
0: और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे
1: जी।
0: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें
1: हाँ।
0: तो अपना आधार कार्ड नहीं है आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और अपने बैंक की पासबुक
1: जी
0: ये चीजें लगती है और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए एक वो प्रमाण पत्र मिल जाए
1: हाँ,
0: उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता है
1: स्थायी जाति प्रमाण पत्र से
0: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते हैं
1: जी जी।
0: तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं
1: जी।
0: और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें
1: जी जी। तो किसान भाइयों अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर के एल डामोर साहब और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है जरूर आप उनका जरूर फायदा उठाएंगे और सर जी हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: हूँ से आरजे राकेश
3: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। तो चलो किसान भाइयों हाव लई एक नानो ब्रेक अने ब्रेक मां आपू हामलवाना से आपड़ा आदिवासी भील समुदाय मां जब लाड लाडियां पैणे अने तीन मां जो गावे त्यू घणो मजानु अने असल गीत हामली ने पासा भेळा था हूं कार्यक्रम खेतीवाड़ी मां जाजो मधी कई था हामल तारे जो झाववानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। तो समीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और जिंदगी अनप्लग्ड के बुक पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे अमृतकंठ राहु की आवाज के बारे में। आई थिंक हर बुक जब हमने डिस्कस करी है, आपकी पहली बुक से लेकर आज हम फिफ्थ बुक डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे हर बार यही लगता है कि इस बुक के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बट आई कैन गारंटी कि आपकी सारी बुक्स में से दिस वन हैज स्टूड आउट फॉर मी, एंड दिस ट्रूली इज माई फेवरेट, बिकॉज इसका जो ब्लेंड है हर चीज के साथ, माइथोलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, लाइफ के साथ, फिलोसफी के साथ, इट इज इम्पेकेबल एंड अनबिलीवेबल सर। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, ऑफकोर्स आपको कैसा लग रहा है जिंदगी अनप्लग्ड की बुक पॉडकास्ट में आके, और सबसे पहले आपने ये बुक कंसीव कैसे की, किस तरह से ये थॉट आपको आया कि राहु को इस तरह से भी हम पोर्ट्रे कर सकते हैं?
2: आपसे बातचीत करके हमेशा ही अच्छा लगता है यार, और ऑफ कोर्स अपने प्लेटफॉर्म पर आकर तो वैसे भी बहुत बहुत बहुत गर्व सा महसूस होता है कि ऊपर वाले ने एक मौका दिया और एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो पाया जहां पर इतने लोगों को आवाज़ मिलती है। तो ठीक है, उन्हीं के बीच में मेरी आवाज़ भी है। नंबर टू, ये बुक मेरे दिमाग में कैसे आई? कुछ साल पहले मैं उदयपुर गया हुआ था, वहाँ पर मेरे एक दोस्त हैं जिनको मैंने ये बुक डेडिकेट की है, कैलाश वैरागी नाम है उनका, वो ज्योतिषाचार्य हैं और उदयपुर में है। वैसे वो प्रोफेशन में वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी पीएचडी ज्योतिष में अभी अभी कंप्लीट हुई है। तो बैठे हुए थे, उन्होंने अचानक एक जिक्र किया, मैं उनको सुना ही करता था, जाहिर सी बात है लालच में उनसे मैं पूछा करता था, मेरी कुंडली देख लो, मुझे बता दो वगैरह वगैरह, जैसा किसी भी ज्योतिषाचार्य के साथ होता है। मैंने उनसे कहा कि, तो वो खैर कुछ बता रहे थे, तो वो मालूम नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात निकली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि समीर भाई, जिन लोगों की आवाज बहुत प्यारी होती है कि उस आवाज को सुनकर लोग सम्मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, बस सुनते ही रहते हैं, उन लोगों के गले में अमृत होता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अमेजिंग सी बात बता रहे हो कैलाश जी, थोड़ा एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि समुद्र मंथन में अमृत निकला था और वो राक्षस वहां पर जाके बैठ गया अमृत पीने के लालच में, और विष्णु जी ने उसका गला काट दिया सुदर्शन चक्र से, और लेकिन तब तक उसके गले में अमृत आ चुका था, लेकिन वो मर गया। तो उसके गले में अमृत ठहर गया। अब अमृत तो अमृत है, वो तो मतलब इमोर्टैलिटी दे देता है, तो वो कुछ और भी कर सकता है। तो तब से ये एनालॉजी उनके कहीं, जब उन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ी होगी, उन्होंने ये बताया कि जो आप समझ लीजिए इस दुनिया में जितने भी लोगों की आवाज अच्छी होती है। तो मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, मैंने उस पूछा उनसे, मैंने कहा कैलाश जी इसका मतलब किशोर कुमार के गले में भी अमृत था क्या, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, या जितने भी सिंगर्स हमारे चारों तरफ हैं, सब लोगों के गले में अमृत है क्योंकि उनकी आवाज इतनी प्यारी होती है कि हम सम्मोहित होकर सुनते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही समझा आपने, इन सब के गले में अमृत है। तब मुझे ये आइडिया बहुत ज्यादा क्लिक किया कि गले में अमृत होने से कैसे व्यक्ति की आवाज अच्छी हो जाती है, और उसके साथ साथ सिर्फ आवाज अच्छा होना जरूरी नहीं है, उस आवाज का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हाउ ऑटोमेटिकली अ पर्सन बिकम सो मैग्नेटिक, उसकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक होती है कि हम खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ. तो यहां से देन आई केप्ट ऑन थिंकिंग ऑन दिस, ये बार बार आइडिया टकराता रहा. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट ऑन गूगल. फिर कुछ जो पुराण मेरे पास है उनको पढ़ने की कोशिश की कि इसमें इस चीज का जिक्र कहाँ है, कितना है. कैलाश जी ने ऐसे अनगढ़ कोई अपने मन से बात बता दी या कुछ इसमें वो है,
1: तथ्य है.
2: तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिली, बहुत कम. लेकिन ये जरूर पता चला एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के कहान इंफॉर्मेशन में कि राहु और केतु कैसे हुए. तो राहु तो वो हो गया गला, यानी कि सर जो कट के गिरा, और केतु हो गया वो धड़ विदाउट सर, जो एक रेस्ट ऑफ द बॉडी वो हो गया केतु.
1: बिल्कुल.
2: तो ये दो पार्ट हुए. अब क्योंकि वो राक्षस था, राहु का गला कटा हुआ था और वो बोल रहा था, तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी में उसको जो भी है एक शक्ल दी गई. तो इस तरीके से, तो फिर मुझे लगा कि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. अगर सांप का जो जहर होता है वो किसी को मार सकता है, तो उसी जहर से एंटी स्नेक विनम भी बनता है. वही एंटी स्नेक विनम किसी को उस जहर से बचाता भी है, है ना. जिसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी वर्ड में थोड़ा भूल रहा हूं अभी, एंटीडोट.
1: यस.
2: सो राहु को अगर एस्ट्रोलॉजी में गलत माना जाता है कि राहु की निगाह वगैरह वगैरह ये वो, तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव पहलू भी होगा. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गलत ही गलत है. तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चला, तो मैंने कहा ठीक है, आई क्रिएट, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन मैं इस तरीके से क्रिएट करना चाहता था कि लोगों की भावनाएं हर्ट भी ना हो, एस्ट्रोलॉजी गलत भी साबित ना हो. मैं वैसे साबित करने वाला कौन हूं, आई एम नॉट एन अथॉरिटी, बट आई जस्ट क्रिएटेड दिस फिक्शन.
1: नो, बट यू क्रिएटेड इट ब्यूटिफुली सर, क्योंकि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से आपने बुक लिखी है, इस पर्सपेक्टिव से राहु को कभी देखा ही नहीं था. बट एक्चुअली जो आपने लिखा है वही उसका सच है, कि अगर आप राहु को डिसिप्लिन में रखते हैं, उसे कंट्रोल में रखते हैं, तो राहु आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है. उसमें वो पावर है, सच में उसमें वो अमृत है. और आपने कटा केतु की भी बात की है, वो हम आगे करेंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है मेरे लिए. तो मतलब इट वॉज अ डिलाइट टू रीड दिस बुक, बिकॉज मेरे को एस्ट्रोलॉजी इतनी पसंद है. मेरी खुद की राहु की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, वो 2040 तक है. तो आई जस्ट एट दिस बुक अप. तो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एंड शेयरिंग दिस बुक विथ मी फॉर दिस पॉडकास्ट. आगे चलते हैं सर. अभी जो बुक शुरू होती है वो शुरू ही ऐसे होती है कि राही पैदा होता है

0: बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए दो चीजें बताना चाहता हूं यहां पर। जिस वक्त मैं किताब के प्लॉट के बारे में सोच रहा था, तो जैसे मैं लिखता हूं वो तरीका बता रहा हूं आपको कि एक रफ कॉपी होती है, उसमें मैं जो भी मेरे दिमाग में थॉट आता है अंड बंड वो मैं पॉइंट वाइज लिखता जाता हूं। तो आई मेक अ माइंड मैप, पूरे पन्ने पर ऊपर नीचे पॉइंट लिखता जाता हूं, गोले बनाता जाता हूं। तो जब ये प्लॉट हो रहा था तो मुझे लगा कि टू मेक दिस बुक इंटरेस्टिंग, नंबर वन आई नीड टू मेक दिस एज फिक्शन, क्योंकि लोग कहानी सुनना बहुत पसंद करते हैं। नंबर टू, मुझे कहानी में ना ड्रामा डालना होगा, सस्पेंस, कुछ ऐसी चीज जो अनयूजुअल हो। लोग अनयूजुअल को बड़ा पसंद करते हैं।
1: Yes.
0: तो जाहिर सी बात है, कोई बच्चा पैदा होता है और वो रोए तो ये तो यूजुअल हुआ, अगर वो ना रोए तो अनयूजुअल हुआ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने इस एलिमेंट को जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करने के लिए डाला कि राही पैदा हुआ तो वो रोया नहीं। सब लोग परेशान हो गए कि बच्चा रोया नहीं, ये तो गलत बात है, दिस इज नॉट नेचुरल। लेकिन बच्चा बिल्कुल जिंदा था, मुस्कुरा रहा था, चारों तरफ देख रहा था। फिर उसके बाद जो तुमने दूसरी बात कही ना कि इतना शोर है चारों तरफ कि किसी भी बात की गहराई को समझने के लिए किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरी किताब के प्लॉट को बनाने के लिए सबसे टॉप पे मेरे दिमाग में था रेडियो। अब चक्कर यह है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ ना आज की जिंदगी में, वो मैं रेडियो के इर्द गिर्द करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। तो रेडियो इज अबाउट लिसनिंग। तो जब लोग सुन ही नहीं रहे हैं तो उसमें बच्चा रोकर करेगा क्या?
1: क्या बात है सर।
0: तो बेहतर है वो चुप ही रहे। तो होता क्या है, आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। सोशल एक्सपेरिमेंट्स का मैं वैसे भी बहुत बड़ा फैन हूं, और फिर शायद आरती जी के साथ बातचीत में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में भी मैंने बात की थी।
1: यस।
0: कोई अगर बात कर रहा हो ना और आपसे आपकी बात सुनने को तैयार ना हो तो चुप हो जाइए, सन्नाटा खींच दीजिए। बंदा बोलते बोलते बोलते बोलते थक जाएगा और उसे अचानक से ये रियलाइज होगा कि मैं तो बक बक बक बक किए जा रहा हूं, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और तब अगर आपने एक सेंटेंस भी कहा ना तो वो सेंटेंस टनों भारी पड़ेगा उसके सर पे। तो इसलिए साइलेंस इज इम्पॉर्टेंट, मुझे ये लगा तो मैंने उस माइंड मैप में लिखा साइलेंस और उसके चारों तरफ स्टार बनाए। सो कीप साइलेंस, कि लोग घबरा जाएं आपकी शांति से, आपकी खामोशी से कि साला ये चुप क्यों है, वरना तो बकबक करते रहिए। सो ये इस बात को इस तरीके से मैं आपको कह सकता हूं। राही ओके, राही मैंने नाम क्यों रखा ये भी बता देता हूं, क्योंकि देखिए राहु था लेकिन मैं राहु का राहु यूज नहीं कर सकता था, मतलब बड़ा अटपटा लगता, तो मैंने एक छोटे बच्चे का नाम राही रखा तो जो कि क्यूट भी है, और राही का मतलब होता है जो यात्रा कर रहा हो, जो चल रहा हो।
1: बिल्कुल।
0: और बड़ा अनयूजुअल सा नाम है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे राही
1: कनेक्ट कर रहा है।
0: राही नाम आपको मिलेगा नहीं कहीं नॉर्मल रूटीन में। और फिर राही से राहु कनेक्ट भी होता है।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
0: या प्लीज गो अहेड।
1: हर तरह से बहुत सूटेबल नाम है राही, जो यात्रा कर रहा है, जो जर्नी में है और अपनी जर्नी में इतना कुछ डिस्कवर करता है। उफ, क्या बुक है ये। एवरी लाइन ऑफ इट, एवरी थॉट ऑफ इट इज इंट्रीगिंग। इसी से अगला सवाल भी है मेरा। अब जो अमृतकंठ संघ के बारे में आपने बात की, एक संघ है जहाँ के कुछ चार नियम हैं, चार या पांच नियम मैंने पढ़े, तो पहले तो आप हमारे श्रोताओं के लिए अगर बता दें कि क्या वो नियम थे उसके, और उसमें हम बात करते हैं गले की जलन के बारे में, तो वो क्या सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है या वो बहुत डीपली कनेक्टेड है हमारे कॉन्शियस से, कि जब हम कुछ गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, तो जो हमारी अंदर की जलन होती है उसी को हम यहाँ पे गले की जलन मान रहे हैं, अमृतकंठ संघ के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अमृतकंठ संघ का, गले की जलन का और कॉन्शियस से

0: कनेक्शन वो क्या है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करें और उन रूल्स को भी थोड़ा रेटरेट करें प्लीज
1: ये बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि रूल्स अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस किताब को लिखते समय दिमाग में हमेशा रेडियो बना हुआ था ओके ना। अमृत सबसे पहले अमृत कंठ के बारे में अगर बात करें संघ की, देखिए अमृत कंठ तो ये हो गया गले में हमारे अमृत है, दूसरा ये हुआ गया ये संघ। तो मैंने इमेजिन किया कि जितने भी गायक हैं, जितने भी सिंगर्स हैं, ओरेटर्स हैं, पोइट्स हैं, नेता हैं, जो लोग भी अपने गले को यूज करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, देखा जाए तो एक एक समाज है, अनकहा हुआ समाज है, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जिसको मैंने नाम देने की कोशिश की अमृत कंठ संघ। यानी कि ये वो लोगों का ग्रुप जिनके गले में अमृत है। यू आर ऑल्सो अ वन पार्ट ऑफ इट, तुम भी उसी संघ की एक पार्ट हो, है ना।
0: जी,
1: हमारे
0: जी,
1: आज के कलाकार में जितने सिंगर्स हैं वो सब इस संघ के मेंबर हैं। वेल दे डोंट नो अबाउट इट, आई एम ट्राइंग टू टेल देम। ओके, सो एक मैंने इस तरीके के संघ की रचना की। फिर आगे बढ़ते हुए जो मुझे पसंद है उसके हिसाब से मैंने कुछ नियम बनाने की कोशिश की। इन नियमों को यू नो गढ़ा मैंने, खुद सोचा और कि ऐसे होना चाहिए तो बना दो, आफ्टर ऑल इट इज अ फिक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो चीज मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करेगा।
0: बिल्कुल,
1: मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि मैं मैंने ये किताब लिख दी, मैंने ये रेडियो स्टेशन बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नो, जैसे ही ये कोई व्यक्ति करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हमारा सिंगर हो, उसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो वही मैंने नियम उसमें लिखा है कि ये नियम था जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। हम लोग आगे आएंगे तो बात करेंगे, जब आप काता की बात करेंगे तो बताऊंगा। जो दूसरा नियम था वो ये था कि किसी भी फेमस व्यक्ति की झूठी तारीफ हम नहीं करेंगे कि जी कोई नेता था, कोई सिंगर था, कोई राइटर था, कोई बहुत फेमस था और हम उसे अननेसेसरली ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो हम नहीं करेंगे। जैसे ही हम करेंगे अगेन हमें सजा मिलेगी,
0: गले की जलन होगी,
1: गले की जलन होगी, परेशानी होगी, सब तमाम चीजें होंगी। तीसरा नियम था कि हम किसी भी तरह के भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अननेसेसरली लोगों को एजिटेट करने वाले वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। मतलब हम क्रांति लाने की कोशिश करते हुए भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। ये अमृत कंठ संघ का नियम है। चौथा था कि कोई भी पावर पाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए या भीड़ को अपना गुलाम बनाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन चारों नियमों में से कोई भी नियम आपने तोड़ा तो आपको सजा मिलेगी, वो ऑटोमेटिक होगी। ये राहु का श्राप कह लीजिए या उसका बून कह लीजिए, व्हाटएवर,
0: बिल्कुल,
1: कि आपने इन चारों नियमों में से कोई भी तोड़ा तो आपके गले में जलन शुरू होगी, आपका गला बैठना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी आवाज चली जाएगी, अमृत खत्म।
0: बताइए,
1: तो मेरा मैसेज इस किताब से सब लोगों को यही है जिनको लगता है कि उनके गले में अमृत है, तो बॉस प्लीज ये चार नियमों का ख्याल रखना, नहीं रखा तो आपका गला बंद हो जाएगा, आपकी आवाज ही जाती रहेगी, अमृत तो छोड़िए।
0: बिल्कुल, और राहु का मतलब कोइंसिडेंटली और नॉट कोइंसिडेंटली, आई डोंट नो, अगर आपने ये राहु के पर्सपेक्टिव से लिखा है या आपके फिक्शन थॉट से लिखा है, बट अल्टीमेटली ये बिल्कुल सच है कि राहु को अगर आप इस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि वो आपसे ये सब करवाता है, जब राहु आता है उसका इन्फ्लुएंस आता है तो वो ये सब चीजें जो आपने कही वो करवाता है, बट हैविंग सेड दैट अगर आप उसको डिसिप्लिन करते हैं तो वो आपको बिल्कुल उलट आप रिजल्ट्स देता है, और उसका पर्पस ही है आपकी लाइफ में आने का कि वो इन सब चीजों से आपको दूर लेके जाए जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो वर्ल्डली चीजें, अपनी तारीफ करना, यू नो झूठ बोल के ग्लोरीफाई करना, जो सब जो चारों पॉइंट्स थे उसी को राहु करवाता है, और अगर आप उसको शांत करना चाहते हैं तो उसी से आपको दूर जाना है। तो इट इज जस्ट, मैं कह रही हूँ ना, इट्स अमेजिंग कि ये किस तरह से कंसीव होके लिखी गई है ये बुक। इट्स जस्ट ब्यूटिफुल सर। तो है ये अंतरात्मा से कनेक्शन है, गले की जलन का, और बहुत खूबसूरती से आपने इसको एनालॉजी में ड्रॉ किया है। आगे चलते हैं, जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, फिलोसफी ऑफ काता, जिसको हम म्यूट प्रोटेक्टर कहते हैं। और बुक में वो जो सेवर्ड बॉडी का पार्ट है, काता जो है वो हर समय राही का प्रोटेक्टर है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है और एक वार्निंग साइन है। तो ऑफ कोर्स इसका एक बहुत डीप एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी है, वो हम नहीं उसमें जाएंगे राहु केतु के एक्सिस के बारे में। बट एक राइटर के तौर पे आपने क्या इस अधूरे इंसान को एक परफेक्ट वॉइस का पहरेदार बनाया है, क्या ये आपका पर्सपेक्टिव रहा है? और क्या इसके पीछे ये मैसेज है कि जो आपके फेलियर्स हैं, जो आपकी शॉर्टकमिंग्स है, आपका जो कटा हुआ पार्ट है, आपका जो सेवर्ड पार्ट है, वही आपका सबसे बड़ा एक पुश पॉइंट है, एक सक्सेस का पॉइंट है? इज दैट द स्टोरी दैट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ हियर? काता का क्या सिग्निफिकेंस है?
1: यू आर तनुषा 90% राइट, ठीक है। आपने पकड़ लिए बात को, बिल्कुल सही है। देखिए, जिस वक्त मैं माइंड मैप बना रहा था, इस बुक की रूपरेखा तैयार करना कर रहा था, तो ये बात तो समझ में आ गई कि राहु केतु, सर कटा गिर गया और धड़ कटा, और ये भी पता चल गया कि दोनों जिंदा हैं, क्योंकि तभी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु क्या एग्जिस्टेंस है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो एस्ट्रोलॉजी में देखा, छोटा मोटा जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी थी, जो मुझे समझ में आ पाई, वैसे तो बहुत कुछ होगी, बट मेरी बुद्धि जितने समझ पाई उसके हिसाब से यही था कि राहु और केतु का मतलब हमेशा कॉम्बिनेशन चलता है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। राहु केतु के प्रभावों को स्टडी करते हैं आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स, तो अपनी छोटी बुद्धि से मैंने ये सोचने की कोशिश की कि केतु, सॉरी राहु केतु, यस, तो केतु बोल तो सकता नहीं क्योंकि उसका तो गला कटा हुआ है। तो मैंने उसको फिक्शनाइज किया कि केतु ने, जिसका नाम मैंने काता रख दिया, केतु ना रख के काता कर दिया उसका नाम, केतु ने वही चार नियम तोड़े। उसने अपनी तारीफें शुरू की, उसने लोगों को भड़काने की कोशिश की, और धीरे धीरे अमृत उसके गले से उतरता चला गया और उसकी आवाज जाती रही। जब उसको ये महसूस हुआ कि मैंने कितनी भारी गलती की, तो उसने ये तय मान लिया कि अब मैं किसी और को ये गलती करने से बचाऊंगा। तो जब राही उसको दिखलाई दिया, तो अघोरी ने काता को उसका साइलेंट प्रोटेक्टर बना दिया। नाउ राही को बता भी दिया कि काता की क्या कहानी थी, जैसे राही को यह पता चल जाए कि जब भी मैं थोड़ी सी गलती करूंगा या कभी भी एक्सपोज्ड हो जाऊंगा इस तरीके के माहौल में, जहां पर मुझे बोलने का मौका मिले, मेरे अमृत को इस्तेमाल करने का मौका मिले, तो वो काता मेरे चारों तरफ कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता रहेगा, वार्न करते हुए कि ये चार नियम तोड़ मत देना, अपनी झूठी तारीफ मत कर बैठना, किसी का भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल मत करना, किसी की झूठी तारीफ मत कर देना। तो राही उसको देखता था और उसको याद आता था कि देखो, इसने यही सब किया था, इसके लिए इसकी आवाज चली गई, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। सो इस पूरी चीज को मेरे माइंड में अपने में बना के, जब मुझे आराम से, मैं उसको देखता रहा, दो तीन दिन सोचता रहा, तो ये कहानी बनी, स्ट्रक्चर्ड हुई कि ठीक है, काता को इस तरीके से बनाया जाए, ड्रामेटाइज किया जाए। तो अगर हम अपनी जिंदगी में, आप पूछ रहे हो कि जिंदगी में कैसे समझें या एस्ट्रोलॉजी में कैसे इसको सिंबलाइज करें, तो एस्ट्रोलॉजी का तो देखो तनुषा, मुझे ज्यादा पता नहीं है, वो तो यू नो बेटर, बट मुझे ये लगा कि जाहिर से बात है, हमको आगाह करने वाले, हमको वार्न करने वाले सिग्नल्स ये नेचर हमें भेजती है, हर समय भेजती है। ऐसा कभी नहीं होता कि विदाउट सिग्नल कोई इस तरीके की चीज हमारे पास आ जाए। देखिए, हमें बुखार आना होता है ना, तो हमें पहले ही थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगता है, सर में दर्द हो रहा है या ढीलापन आ रहा है, हमें पता चल जाता है कि बुखार आ रहा है। अगर इन्फेक्शन होने वाला है तो गले में खराश शुरू हो जाती है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। किसी को हार्ट अटैक भी होता है ना, तो उसको पहले से साइंस आ जाते हैं।
0: करेक्ट।
1: तो वो काता की तरह राही को बताता है कि देखो ये रास्ता गलत है, मत जाओ। तो उस चीज को सिंबलाइज करके एनालॉजी लेके मैंने वहां पर इस चीज को लिखा।
0: बेहतरीन सर, क्या लिखा और क्या ही लिखा सर, मतलब मैं अमेज्ड, मैं कह रही हूँ ना, आई एम अमेज्ड बाय दिस बुक एंड द थॉट बिहाइंड दिस बुक, बिकॉज ऑल्सो बिकॉज सी एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स राहु केतु, हु अंडरस्टैंड्स एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए तो ये बुक, आई एम श्योर जिसको भी थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी आती है उसके लिए ये बुक इज लाइक, मतलब इट्स अ मास्टरपीस इन सो टू से। तो बहुत खूब लिखा सर आपने, और बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों राहु केतु के जो जेन्युइन पर्पसेस हैं इस लाइफ में, जो एक्चुअल पर्पस है उस एक्सिस का, उसको यूज करने का, उसको आपने इस बुक में उतार के रख दिया फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू। तो कमाल का काम है ये सर। और इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे एक हमारा आज का पहला गीत, हालांकि आज मैं गीत सुनना नहीं चाहती, बट चलिए हमारा फॉर्मेट है तो हम सुनते हैं आज का पहला गीत और फिर कंटिन्यू करेंगे इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को।

0: वेलकम बैक सर। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने ये कैसे कंसीव किया कि जो राहु है हमारी कुंडली में, जनरली हम बहुत डराते हैं लोगों को, उसको बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है, अमूमन नेगेटिव ही दिखाया जाता है, बट हमने इस बुक में राहु को जो कंसीव किया है वो एक लिबरेटर, एक मुक्तिदाता के रूप में कंसीव किया, एक मेंटर के रूप में कंसीव किया है, कि वो हमें ये सिखाने आया है कि कम बैक टू द अर्थ एंड लिव लाइफ इन अ सर्टेन वे। तो ये आपने कैसे किया, कैसे आपके दिमाग में ये थॉट्स आए, और क्या आप हमारे ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके अंदर का राहु जो एम्बिशन और डिजायर से भरा हुआ है उसको पॉइजन ना बनाने की बजाय आप अमृत कैसे बना सकते हैं?
1: Now I'm really confused because सच कहूँ तो ऐसा जो सवाल आपने जिस स्ट्रक्चर्ड वे में सवाल पूछा है उस स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने सोचा नहीं था कि ये प्लॉट इस तरीके से चलेगा, लेकिन आपके सवाल के बाद मुझे मजबूर हो रहा हूँ मैं सोचने के लिए। तो अभी जो मैंने पहले कहा उसको इस तरह से ही कह सकता हूँ मैं राइट नाउ, जब भी मैंने पहले कहा कि स्नेक वीनम से ही एंटी स्नेक वीनम बनता है। तो अगर राहु अशुभ माना जाता है तो कहते हैं ना एक रुकी हुई घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है,
0: क्या बात
1: तो वो अशुभ भी कभी ना कभी तो शुभ था या कभी ना कभी शुभ होगा। तो उस बात को मैं यहां पर इस तरह से कनेक्ट कर पा रहा हूं कि अगर जिनके गले में राहु है यानी कि अमृत है उन्हें एक भी पैसे का गलत इस्तेमाल अलाउड नहीं है। अगर आप इस बात से सावधान रह के और अपने आवाज का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी प्रशंसा ना करें, अपने सेल्फ इनेमर्ड सेल्फ को किनारे रखें कि जी मैं हूं, मेरा मेरी आवाज, मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा गीत और मैं तो बहुत बड़ा हो गया, इस चीज को अगर आपने बिल्कुल बहुत ही हम्बली किनारे रखा तो यू विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। और उसी जब इतना लंबा रास्ता आप तय कर जाओगे तो लोग फिर मजबूरन आपके रास्ते को देखेंगे। यार अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं तो भगवानों की देख लो ना, एक भगवान बताओ जिसने बहुत मजे मजे में जिंदगी गुजारी हो।
0: बिल्कुल,
1: राम जी को 14 साल का वनवास दे दिया गया, सड़ते रहे वो जंगलों में।
0: बिल्कुल,
1: अगर मैं मानूं कि कृष्ण जो है वो बड़े मतलब इतनी रानियां लेके घूमते थे और ये एनबोन है ना, उन्होंने तो हमेशा मजे किए, क्या मजे किए, बचपन में ही उनका उसका मामा उनको मारने के लिए आ गया जब वो बेचारा आवाज नहीं निकलती थी उनकी।
0: Yes,
1: फिर उसके बाद वो ब्रज में जो है गांव गायों के गोबर उठाते फिरते रहे। फिर उसके बाद जब वो घुटनों के बल चल रहे थे तो राक्षस राक्षसियां उनको मारने पहुंच गए। माँ बाप से कभी वो मिले नहीं, मतलब क्या मुसीबतें नहीं झेली उन्होंने। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय टेलिंग राम कृष्ण और ये इनवोन, इनके बारे में बात करके मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके गले में भी अमृत है या जिनके गले में भी राहु है या जितने लोग भी राही हैं, उनकी जिम्मेदारी किसी भी एक साधारण इंसान से बहुत ज्यादा बड़ी है।
0: बिल्कुल।
1: तो प्लीज आप लोग जितने भी लोग राही हैं जिनके भी गले में अमृत है अपने आप को साधारण इंसान समझने की भूल ना करें, क्योंकि अगर आप भूले तो आपका हश्र काता जैसा होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपको लोगों को रास्ता दिखाना है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी ने कहा है, ऐसा ईश्वर ने कहा है, ऐसा आपकी डेस्टिनी है। तो आप अपनी डेस्टिनी को भूल मत जाइएगा, आपकी जिम्मेदारी इस दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था इस किताब में जब मैंने राही को रेडियो स्टेशन से जोड़ा।
0: क्या बात है सर, ये ऐसा लग रहा है आप डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इस समय कि आपके पेन में भी उस समय डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और अभी जो हमारी बात हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है द द डिवाइन इज स्पीकिंग थ्रू यू
1: आई डोंट नो मे बी देखो मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस बारे में अगर आपको ऐसा लगता है तो कि उन्होंने कुछ बोला अगेन मैंने सिर्फ लोगों तक पहुंचाया आई एम जस्ट अ मीडियम
0: सरियल सर दिस मोमेंट इज सरियल फॉर मी बहुत ही अमेज्ड हूँ मैं आई हैव नो वर्ड्स आई एम जैप्ड राइट नाउ ब्यूटिफुली पुट एंड बिल्कुल सही कहा आपने कि राहु का जो एक्चुअल पर्पस है वो वही है जो आपने बताया और जितने भी लोग राही हैं जिनके गले में वो अमृत भगवान ने ब्लेस किया है आपको तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों से बहुत ज्यादा है क्योंकि आपके पास पावर ऑफ वॉइस है
1: Correct.
0: तो अगर जिस मोमेंट आपने उसको गलत इस्तेमाल किया उस मोमेंट जैसे कहा सर ने काता बहुत दूर नहीं है राही से अगेन रेडियो से आपने जिस तरह से इसको जोड़ा वो कमाल है और राही जो है वो रेडियो में काम करता है स्टोरी में जब आगे चलते हैं बड़े होके वो रेडियो में काम करता है और बहुत बड़े सेलेब्स की बजाय वो ऑटो वालों की नर्सेस की मजदूरों की इन सब की इंटरव्यूज लेता है जो मतलब मैं जानती हूँ कि कहाँ से वो सीड हो रहा है वो थॉट भी क्योंकि मैं आपको जानती हूँ बट जो आज का इन्फ्लुएंसर कल्चर है जहाँ पे फेमस होना तारीफ करना फेमस लोगों के पीछे पीछे भागना वहां एक इनविजिबल मैन की आवाज किस तरह से उस अमृत को चर्न कर सकती है और कैसे वो बड़े नेताओं की स्पीचेस से बहुत बड़ी है और बहुत इन्फ्लुएंसिंग है मतलब बियॉन्ड द एक्चुअल जिनको हम एक्चुअल इन्फ्लुएंसर मानते हैं उनकी आवाज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है इन इनविजिबल लोगों की आवाज और इनकी सोच जिनको राही इंटरव्यू करता है तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है
1: दरुषा आपने हिंट दे ही दिया हमारे सुनने वालों को भी समझ में आ ही गया होगा कि ये जो चीज है ये कहां से सीड हुई है पहले दिन से जब से मैंने रेडियो स्टेशन लॉन्च किया मैंने और नितिन दोनों लोगों ने मिलकर सोचा इस बारे में इसका आइडिया आया एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट बोथ ऑफ अस तो हम दोनों लोगों का बिल्कुल ना एक ही विचार था 100% मैच करता हुआ बिल्कुल अलग नहीं था कि रेडियो शुड बी अबाउट पीपल उसी वजह से हम लोग ने अपना लोगो भी रखा मेकिंग पीपल हैप्पी वेल वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट लेकिन फिर भी अगर इस प्रोसेस में कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो हम करबद्ध माफी चाहते हैं उनसे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है कहीं ना कहीं वेल कुछ स्लिप हो सकता है एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट हम दोनों लोगों का ही बहुत स्ट्रांगली विचार रहा कि हम कॉमन पर्सन से बात करेंगे तो उसमें कॉमन पर्सन कौन आता है कॉमन पर्सन तो यही है ना ऑटो वाले रिक्शा वाले प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस घर में काम करने वाली बाई मजदूर हम दोनों लोगों का मानना यह था कि इन लोगों के पास भी कहानियां हैं रादर शायद इंटरेस्टिंग कहानियां हों
0: राइट
1: मैं मानता हूं इनमें से बहुत सारे लोगों तक आज भी हम पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि ये लोग थोड़े से बात करने में डरते हैं शाई हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और जिन्होंने जिंदगी में कुछ पा लिया मतलब उम्र हो गई उनकी तो उनमें हिम्मत आ गई है तो वो बोल लेते हैं तो हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं अच्छी बात है दे आर ऑल्सो रेस्पेक्टेड बट अब आपने जो सवाल पूछा ना उसको अगर मैं कहूं कि इन्फ्लुएंसर की बात जो आपने की कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो किसी ब्रांड को प्रमोट कर देता है और लोग बाग खरीदने चल देते हैं या कोई इन्फ्लुएंसर कोई बात कह देता है और पब्लिक मान बैठती है और उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाती है ये तो शुरू से होता आया है मानव जब समाज बना था तब से होता आया है कि कुछ लोग लीडर्स होते हैं और बाकी फॉलोअर्स होते हैं इट ऑलवेज हैपेंड ये तो नेचर है ये तो प्रकृति है तभी भी
0: पावर स्ट्रक्चर है
1: तभी तो शेरों के झुंड उनके जो प्राइड होता है उसमें एक ही शेर होता है बब्बर शेर और बाकी पूरा फैमिली होती है सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ओके फाइन आई गेट इट बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी देखा होगा आपने इतिहास में कि क्रांतियां जो हुई हैं वो ये इन्फ्लुएंसर्स लेकर नहीं आए कहीं से भी कोई भी क्रांति हुई कौन इन्फ्लुएंसर था जिसने उस क्रांति को जन्म दिया हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम किसने जन्म दिया डू यू हैव एनी आइडिया डू यू रिमेम्बर
0: फर्स्ट जो स्पार्क थी वो तो मंगल पांडे आई थिंक
1: करेक्ट प्रिसाइसली. सो मंगल पांडे वॉज नॉट एन इन्फ्लुएंसर.
0: जी, नो इन्फ्लुएंसर. यस, जस्ट इन्फ्लुएंसर.
1: एक कॉमन आर्मी पर्सनल था जिसने विरोध किया कि मैं ये नहीं करूंगा और बस वहां से शुरू हो गया मामला.
0: Yes.
1: तो यहां पर भी मैं उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए यहां तक लेकर आया हूं कि आज भी इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ में कोई कॉमन आदमी अगर ताल ठोक के खड़ा हो गया ना तो संभालना भारी हो जाएगा. तो राही वही काम कर रहा है. मेरी भी आज भी इच्छा है, मेरा एक विजन है, मालूम नहीं कब पूरा होगा. बड़ा ही छोटा सा है, बड़ा ही मतलब आई कंसिडर इट क्यूट कि बॉम्बे के किसी रिक्शे वाले का मैं इंटरव्यू करूं और रात को 8 बजे जिस वक्त मैं उस इंटरव्यू को रिले करूंगा, एयर करूंगा, ब्रॉडकास्ट करूंगा, पूरा मुंबई के ऑटो रिक्शे वाले थम जाएंगे.
0: बिल्कुल.
1: कोई आके कहे ना चल भाई उधर जाना है, दादर जाना है, भांडूप जाना है और अंधेरी जाना है, तो वो कह देगा अभी टाइम नहीं है, अपने भाई का भी प्रोग्राम चल रहा है.
0: वाओ, गॉड अ विजन.
1: मेरे को ये सीन मैं चाहता हूँ ये क्रिएट हो जाए, दुनिया रुक जाए कि साला ऐसा क्या हो गया यार, एक ऑटो वाले का इंटरव्यू आ रहा है, साला पूरा ऑटो वाले रुके पड़े हैं. मैं वो चीज चाहता हूँ. वो चीज राही कर सकता है. वो चीज कोई इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता. देखो बहुत क्लियर है, इन्फ्लुएंसर के शब्द में ही उसका मीनिंग छिपा है. इन्फ्लुएंसर का मतलब है किसी को प्रभावित करना. और अमृत कंठ संघ के 4 नियमों में से ये एक नियम है.
0: बिल्कुल, उसका तोड़ना है ये.
1: आपने ये किया और आपने आप मतलब आउटकास्ट हो गए.
0: यस,
1: यू डोंट हैव टू इन्फ्लुएंस एनीबॉडी. नो, तो ये इन्फ्लुएंसर शब्द में ही गलत है. इसी वजह से राही कॉमन आदमी से बात करना चाहता था.
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर शब्द में ही उसका एक्चुअल क्रक्स छुपा है कि आप किसी को झूठ बोल के भी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ा चढ़ा के भी उसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका अल्टीमेट पर्पस ही है कि आपको इन्फ्लुएंस करना है.
1: करेक्ट.
0: आप उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे और वो हो जाएगा आपके 4 नियमों का तोड़ना और हेंस द कॉन्सिक्वेंस. तो जैसे वो नहीं है, मुझे विक्रम वेताल याद आ गया एकदम से जब आपने बोला ना, तू बोला विक्रम, तू बोला मैं चला. तो खूबसूरत सर, बहुत ही सुंदर. आगे चलते हैं और इसी से मेरा अगला सवाल है, ये मेरा फेवरेट सवाल है और बहुत ही मुझे लगता है नुएंस्ड तरीके से आपने इसको बुक में भी डील किया है कि रेडियो जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को बहुत किल करता जा रहा है, क्योंकि हम स्क्रीन्स में चले गए हैं, पूरी तरह से हमारी स्क्रीन ने ओवरटेक कर लिया है हमारी इमेजिनेशन को, और हेंस हमारी जो एक्चुअल इमेजिनेशन की शक्ति है वो स्क्रीन्स इतना स्क्रीन टाइम बढ़ जाने से खत्म हो गई है, जबकि रेडियो जो है वो आपको सोचना सिखाता है, बिना सिर्फ सुन के देखना सिखाता है, जो आप हर बार बोलते हैं कि रेडियो से आप देख सकते हैं दुनिया. क्या आपको लगता है कि ये जो देखना है, ये बार बार स्क्रीन देखना और सिर्फ देखते ही रहना और सुनना इतना कम हो जाना, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी को पूरी तरह से किल कर रहा है? और क्या रेडियो ही एक्चुअल राहु का इमॉर्टल वॉइस है? क्या ये सही मीडियम है रेडियो, राहु के रियल यू नो जर्नी का?
1: धनुषा, अभी तो यही दिखाई देता है कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसे हमें चीजें सुनाई दे रही हैं. ठीक है, रेडियो के दूसरे रूप अब अवेलेबल हो गए हैं, विच आर कॉल्ड स्पॉटिफाई या फिर ऑडियो बुक्स, है ना, डाउनलोड करके सुन लें, या कुछ और प्लेटफॉर्म भी होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानता. लेकिन सुनना, सो बात बार बार आ रही है और ऑलमोस्ट हर बुक में मैं सुनने के ऊपर जोर डाल रहा हूं कि सुनने से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हमारे मसल्स जो हैं ब्रेन की उनकी एक्सरसाइज होती है, वो डेड नहीं होंगी, वो फ्लेक्स होती रहेंगी, तो हमारा ब्रेन बेहतर चलेगा, बेहतर सोच पाएगा. नाउ इसको बिल्कुल प्रैक्ट, और मैं अपनी हर बुक में इसको लिख रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स यही मेरा एजेंडा है. एज समीर गोयल, मेरा एजेंडा ही यही है कि मुझे रेडियो को वापस से जिंदा करना है. किसी और का हो या ना हो मुझे उससे कोई इशू नहीं है. नाउ आई गिव यू वन प्रैक्टिकल एडवाइस, एक एग्जाम्पल, एक एडवाइस, एक चैलेंज देता हूँ आपको. आप भी सोशल मीडिया देखते हो, आप भी, मतलब मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है. एक काम करते हैं, कोई भी एक मूवी उठाओ जो हमने पहले देखी हुई ना हो. कोई भी मूवी यूट्यूब पर ले लो, घनघोर कोई पुरानी मूवी या कोई भी ऐसी मूवी, नई वाली भी हमने जो देखी ना हो, है ना,
0: राइट.
1: उसको चालू करो और उसको म्यूट कर दो. ठीक है, तो आपकी जो सिक्स सेंसेस हैं, उसमें से सिर्फ आंखें, आपकी जो आईज, चक्षु, वही काम कर रही होंगी, है ना.
0: करेक्ट,
1: आप स्क्रीन देख रहे होंगे, है ना.
0: करेक्ट,
1: बट आपके कान काम नहीं कर रहे होंगे, है ना. देखिए देखिए मूवी, समझ में आती है क्या आपको. पुराने जमाने में साइलेंट मूवीज बनती थी ना,
0: किसी जमाने में,
1: है ना. चलो चलिए एक बार जरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने कानों को बंद कर देते हैं और आंखों से देखते हैं और जरा देखते हैं दुनिया कैसी दिखती है.
0: यस,
1: करके देखिए. सिंपल है, आप ऐसे कानों में उंगली डाल के तो आप कान बंद कर नहीं सकते, मतलब आई मीन पूरा साइलेंस होता नहीं है.
0: करेक्ट,
1: तो आप YouTube को म्यूट कर दीजिए, है ना, म्यूट कर दीजिए और उसके बाद देखिए जरा मूवी, आधा आधा घंटा देख के देखिए क्या समझ में आता है आपके. आपको ना सर पीट लोगे अपना, ट्रस्ट मी. तो ये इस एग्जाम्पल, इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने कर लिया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सुनने की ताकत क्या होती है. आपको महसूस हो जाएगा कि सुनने की ताकत देखने की ताकत से ज्यादा होती है.
0: राइट,
1: ठीक है ना. और बताओ सुनने की ताकत के बारे में. अभी मैं सोच रहा हूं, आई एम ट्राइंग, एंड मैं सब लोगों की इसमें मदद की गुहार करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरी मदद कीजिए. मैं कुछ ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड बच्चों के स्कूल्स में जाकर प्रोग्राम बनाना चाहता हूं, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे सिर्फ सुनते हैं एंड दे आर फार मोर इंटेलिजेंट देन अस.
0: एब्सोल्युटली.
1: व्हाई, क्या कारण है इसका कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि उनकी एक इंद्री काम नहीं कर रही है, उनकी दूसरी इंद्री ने दोनों काम करने शुरू कर दिए हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो क्या हम जानबूझकर अपनी सुनने की इंद्री को बढ़ा नहीं सकते? तो इस बात को इम्फसाइज करने के लिए मैं अलग अलग तरीके से अपनी किताबों में कह रहा हूं कि भाइयों सुन लो सुन लो सुन लो.
0: राइट राइट, सुन लो प्लीज. जी जी जी, बहुत ही सुंदर सर, बहुत सही आपने मतलब पॉइंट आउट किया है कि सच में जो देखना है वो हमें, हमारी इमेजिनेशन को पूरी तरह किल कर रहा है सारा टाइम स्क्रीन देखना. हम कुछ उसको गुन ही नहीं पाते जो हम देखते हैं, वो बस हम देख रहे हैं. मतलब जैसे वो नहीं होता कई बार, जैसे बच्चे जब टीवी देखते हैं तो गलती से भी आप उनके सामने बीच में आ जाओ तो वो फिर भी वहीं देखते रहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से मतलब वो इतने ग्लूड और एंगेज्ड हैं कि दे फॉरगेट कि सामने विजुअल क्या है. तो अब जो जिस लेवल की हम स्क्रोलिंग में हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें ये, हम भूल गए हैं कि हम देख क्या रहे हैं. हम बस देख रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे, इट्स जस्ट श्योर लेजी वॉचिंग विदाउट एनी प्रोसेसिंग. बट वहीं अगर हम सुनते हैं, जैसे हम रेडियो को सुनते हैं, तो हमारी एक्चुअली जो लिसनिंग है वो इतनी पीक हो जाती है, इतनी अलर्ट हो जाती है कि हम उससे विजुअल्स बनाने की कोशिश करते हैं, उससे देखने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली पुट इन द बुक ऑल्सो, एंड आई रियली थिंक दैट एक्चुअली रेडियो इज द ट्रू मीडियम इस इमॉर्टल वॉइस को पहुंचाने के लिए, इस इमॉर्टल वॉइस को कैरी करने के लिए थ्रू एजेस. तो इसी से अगर हम अब, ऑफकोर्स बिकॉज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाली थी, बट हम एक गाने का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और फिर आके मेरे नेक्स्ट जो आज के दो सवाल हैं, जो आखिरी सवाल हैं, उनको लेंगे सब.

0: वेलकम बैक सर। बुक के मुताबिक जब आवाज इस्तेमाल होती है किसी भी फॉल्स प्रेज के लिए, जब आप झूठ बोलते हैं, उन चार नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, तो जो अमृत है वो जहर बन जाता है। बट जो आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, सोशल मीडिया वर्ल्ड है, जहां पे हमने पहले भी बात की कि बात ही फ्लैटरी की है, बात ही उन लोगों के पीछे भागने की है जो शायद वो डिजर्व नहीं करते, बट करना पड़ता है। परहैप्स आपका बॉस गलत है, बट आपको फ्लैटरी करनी पड़ेगी। तो उस फॉल्स प्रेज को हम आज के जीवन में किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और सर्वाइवल का मंत्रा क्या है कि क्या सिर्फ एक इंसान अमृत कंठ, अपने अमृत कंठ को करप्ट होने से कैसे बचा सकता है आज की इस दुनिया में?
1: देखो ऐसा ना, मैं कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं हूं, मैंने सिर्फ एक्सपीरियंसेस लिए हैं। लेकिन अभी हम लोगों की इस प्रोग्राम से जस्ट पहले बात हो रही थी ना उस वेब सीरीज की, द मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी।
0: बिल्कुल।
1: अगर मैं उसी का एग्जांपल लूं, और आपने पूछा कि भाई आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइवल का मंत्रा क्या हो सकता है, तो वो जो स्टोरी है बहुत बहुत सारे लोगों ने वो देखी ही होगी कि वो भी तो कॉर्पोरेट ही है ना, टाटा इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ना, ये कोई चैरिटी हाउस तो है नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लाला कंपनी नहीं है,
1: लाला कंपनी ने कॉर्पोरेट, प्रॉपर कॉर्पोरेट, बिग जायंट है ना,
0: वन ऑफ द बेस्ट वी हैव।
1: तो देखो आप अगर उस पूरे के पूरे वेब सीरीज से लेसन्स निकालने की कोशिश करो, मैं तो उससे लेसन ही निकालने की कोशिश करता हूँ कि वहां पर सच बोलने वाले भी थे, अपने लीडर्स को गाली देने वाले लोग भी थे, और मतलब रेजिलिएंट भी थे, मिस्टेक्स करने वाले भी थे, और बॉस जो था वो भी अच्छा था कि वो ये कहता था चलो ठीक है, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। तो जब उस कहानी में भी जीत दिखाई गई कि टाइटन इवेंचुअली दुनिया की बेस्ट वॉचर्स में से निकल के आया, तो ये बात तो किसी भी कॉर्पोरेट में अलाउड है, फिर चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के गंदे संदे कॉर्पोरेट भी क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, ये तो टाइटन वाली बात हो गई, वेब वाली बात हो गई, मैं अपनी बात कर लूं यार बिल्कुल प्रैक्टिकल, एंड इफ एट ऑल आई कैन इनवाइट माय एक्स बॉस टू लिसन टू दिस प्रोग्राम और टॉक टू मी और टेल यू गाइज, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूं कि मेरे और मेरे बॉस के बीच में डिफरेंसेस थे जो मैंने मेरी माई डियर एमआर में लिखे हैं। हमारी ऊंची ऊंची आवाज में झगड़े हुए हैं, तो वो भी तो कॉर्पोरेट ही था, 5,000 करोड़ का कॉर्पोरेट जहां पर सर्वाइवल, सीक ऑफेंसी और ये सब था, नेपोटिज्म ये सब था, होता ही है, होना ही पड़ता है। लेकिन मैं जहां काम कर रहा था, मेरा जो डिवीजन था, जो मेरा बॉस था, हमारे जबरदस्त डिफरेंसेस थे, हम लड़ाई झगड़ा करते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, बट इवेंचुअली हम बात सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव की कर रहे थे। और जब मैंने छोड़ दिया, उस वक्त छोड़ते हुए भी मेरे बॉस ने कहा कि वी हैड अवर डिफरेंसेस बट वी रेस्पेक्टेड ईच अदर, बिकॉज हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे, देयर वॉज नो पर्सनल एजेंडा। तो अगर आप मंत्रा की बात करते हैं आज की डेट में कॉर्पोरेट में सर्वाइव करने के लिए, तो मैं मानता हूं हर जगह पॉलिटिक्स है, हर जगह खेमेबाजी है कि आपको एक ना एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, कर लीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि गलत है तो चुप रहिए। इस बुक में लिखा है राही जब पैदा हुआ था ना तो रोया नहीं था। तो अगर कॉर्पोरेट में आपको सर्वाइव करना है, जितने भी हमारे कॉर्पोरेट दोस्त सुन रहे होंगे, बेटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कीपिंग मम, चुप रहिए। जबरदस्ती अपने बॉस की सीकोफेंसी करके बब्बा बब्बा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बब्बा करी और अगर आप अमृत कंठी हैं तो गए आप।
0: बिल्कुल।
1: बाकी क्यूमुलेटिवली 15-20 साल 25 साल 5-6 महीने जितना भी वक्त कह लीजिए, अगर आपने ये सब नियम तोड़े तो इवेंचुअल नुकसान तो आपको होगा, चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, कुछ भी हो। अगर आप सच्चे हैं ना तो कॉर्पोरेट में भी आप सरवाइव करेंगे। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। मंत्रा पूछ रहे हो तो मंत्रा बता दिया मैंने तुम्हें। आपको मानने का मन नहीं करेगा, आपको मानने का मन नहीं करेगा, अरे नहीं यार मेरा बॉस मुझे खा जाएगा, मेरे कलीग मुझे खा जाएंगे। भैया ये सब हो सकता है, लेकिन आप अड़े रहना, क्योंकि गुलाब के फूल के नीचे कांटे ही कांटे होते हैं।
0: मैं तो होता वो गुलाब का है।
1: यस
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और इसी से मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगी जो कॉर्पोरेट में हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हैं, कि अगर आप अमृतकंठ ही हैं तो अपने उस अमृतकंठ को सबसे पहले तो पहचाने कि आप वो हैं, और दूसरा उसे करप्ट होने से बचाएं। और जैसे कि सर ने बहुत खूबसूरती से पॉइंट आउट किया कि जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है हर सिचुएशन में, कई बार चुप रहना इज गोल्डन, और उससे अच्छा कुछ नहीं होता लाइफ में जहां पे आप सिर्फ चुप हो जाएं। आप नहीं कर सकते कोई काम, आप नहीं फ्लैटरी कर सकते, आपको झूठी तारीफ नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन में आप चुप रहना प्रेफर करें बजाय ये सब करने के। उससे कम से कम आपका अमृतकंठ करप्ट नहीं होगा, और आई थिंक चुप रहने से बहुत सारे लोगों को आप गलत वे में रब ऑफ भी नहीं करेंगे। हाँ, लोग ये जरूर सोचेंगे कि ये तो कोई साइड पिक नहीं करता, ये शायद डिप्लोमेटिक है, तो ठीक है उस डिप्लोमेसी में रह लीजिए, बट झूठी फ्लैटरी और सिकोफेंसी से अपने आप को बचाइए और अपने अमृतकंठ को बचाइए, क्योंकि अगर आप हैं तो You will fall in that corrupt category and आपको फिर consequences face करने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रही, ये सर नहीं कह रहे, ये बुक नहीं कह रही, ये actual astrological truth है, ये actual life truth है जो मैंने बहुत closely observe किया है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो I'm sure कभी ना कभी आप करेंगे, तो इसे जरूर अपने जीवन में उतारें। आगे चलते हैं और आज का आखिरी सवाल लेते हैं सर। पावर वर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जहां पे राही को लगता है अपनी आवाज से डर लगता है, उसे लगता है कहीं उसकी ही आवाज उसे नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं वो ही वो चार रूल्स को ब्रेक ना कर दे, तो इस सिचुएशन में राही बहुत डिसिप्लिन रहता है, अपनी आवाज को कंट्रोल से यूज करता है, डिसिप्लिन में यूज करता है, तो इस डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा बताएं, और इसको थोड़ा सा राहु और राही दोनों की लाइफ से कनेक्ट करें कि कैसे तो राहु को आप डिसिप्लिन से कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे राही ने इस पावर को यूज किया डिसिप्लिन अपने जीवन में लाके, कि पावर के साथ डिसिप्लिन रखा और तभी वो अमृतकंठ अमृतकंठ ही रहा।
1: वाओ, ओह माय गॉड, पूरे दिमाग की दही कर दिया आपने। क्या होता है कि पावर अपने आप में इतनी ज्यादा नशीली चीज है, धतूरे की तरह, कि उसका नशा किसी को एक बार चढ़ जाए ना तो वो उतरता नहीं है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। तो किताब में मैंने इस चीज को लिख जरूर दिया, लेकिन अब मैं सोचता हूं, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, तो मुझे बड़े बड़े मेडिटेटर्स जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपने आप को बड़ा भारी भरकम मेडिटेटर्स बताते हैं, मॉन्क्स बताते हैं, उन सबको ना इतना बुरी तरीके से भर भरा कर गिरते हुए देखा है मैंने मेरी आंखों के सामने प्रैक्टिकल लाइफ में, कि मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर जो अपने आप को मेडिटेटर्स कहते हैं, दया आती है उनके ऊपर जो इतना बड़ा झूठ अपने सर पे ताज की तरह पहन के चलते हैं कि हम मेडिटेटर हैं, हम पावर को कंट्रोल कर लिया, हम मॉन्क बन गए, हम साधु हैं, हमें कोई घमंड छू के नहीं गया। अरे भाई, मैंने महसूस जो किया है प्रैक्टिकल में, वो उनसे बड़ा घमंडी इस दुनिया में कोई नहीं है। ना हो, ये बड़ी गलत बात है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत मृदुल और बहुत ही सरल हो जाना चाहिए।
0: यस, ऑन द कॉन्ट्ररी,
1: है ना, ऑन द बुद्ध थे तो बुद्ध का यही था, वहीं से मेडिटेशन में बुद्ध को सबसे ऊपर मान लिया जाता है।
0: यस,
1: लेकिन पता नहीं आज, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द बुद्धिस्ट हियर, मुझे आज तक कोई ऐसा बुद्धिस्ट मिला नहीं है जो मेडिटेशन की उस लेवल को टच कर पाया हो। कहने को तो सब बड़े मॉन्क हो जाते हैं, लेकिन नो, दे आर नोवेयर। ओके, नाउ वेयर इज द क्वेश्चन लाइज ऑफ पावर। तो पावर का नशा ऐसा होता है, उस नशे से मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा मेडिटेटिव होने की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये बात कह के ये बात हरगिज नहीं कहना चाह रहा कि मैं इस रास्ते पर हूं या मैं वहां पहुंच चुका हूं। नो, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान आत्मा हूं, बहुत तड़पती हुई आत्मा हूं मैं और पागल हूं मैं, तो मैं तो उस स्टेज पे कभी पहुंच ही नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट मुझे पावर का नशा नहीं है, मुझे नहीं है, सच बता रहा हूं, बाबा भोलेनाथ को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं, मुझे पावर का नशा नहीं है
0: जी।
1: अब जी। इस बुक में जो चीज मैंने लिखने की कोशिश की कि राही ने, राही डरता था क्योंकि आवाज में उसके अमृत है, उसके गले में अमृत है, इस चीज को मैं सभी राहियों को कहना चाह रहा हूं कि आप मतलब वॉन्ड रहना, आप लोग चेतावनी है आप लोगों को कि आप लोगों को अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना है, ये दुधारी तलवार है, अगर गलत चली तो आपको भी काट देगी। तो राही बहुत संभल के चलता था, वो डरता था कि मेरी आवाज गलत इस्तेमाल ना हो जाए, ये दुधारी तलवार गलत ना चल जाए, इसीलिए काटता उसके अगल बगल घूमता था, इसीलिए अमृत कंठी जितने भी थे वो शांत चुप रहते थे कि भैया हमारे मुंह से कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत ना निकल जाए। और बात सही है, आप जितना शांत रहोगे, जितना चुप रहोगे, आपके मुंह से उतना ही अच्छा निकलेगा, ये बिल्कुल सच बात है। स्टॉप रिएक्टिंग, वही चीज राही के साथ हुई। राही ने जब देखा कि रेडियो स्टेशन पे नेतागिरी शुरू हो चुकी है और सीको फैंसी और गलत यू नो झूठे प्रचार शुरू हो चुके हैं, तो ही लेफ्ट। उसको लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, छोड़ दीजिए, हट जाइए वहां से।
0: बिल्कुल,
1: जिसको करना है करने दीजिए, और फिर इवेंचुअली आपने फिर इवेंचुअली मैंने किताब में लिखा है उस रेडियो स्टेशन का क्या हुआ, खत्म हो गया। और मैं आपको सच बताऊं, ये सच हुआ है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में ही, आज से बस 5 साल पहले मैंने जिस रेडियो स्टेशन पर काम करना सीखा वहां पर प्रिसाइसली यही हुआ, और मैंने वो रेडियो स्टेशन 2 महीने में छोड़ दिया। तो यूं कह लीजिए तो वो मेरी कहानी ही हो गई। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं टच में रहता था कि भाई पता चले कि हम आ, तो पता चला साहब 6 महीने हो गए वो रेडियो स्टेशन बंद हो गया। आई वॉज वेरी वेरी सैड, वेरी सैड, क्योंकि उस रेडियो स्टेशन को शुरू करने में मेरा हाथ था और वो इतनी प्यारी जगह पर था जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई विल नॉट टेल यू, इतनी प्यारी जगह वो स्टेशन था कि अगर वो चलता तो बहुत बहुत कमाल करता, लेकिन यही सीको फैंसी नेतागिरी और इन सब चीजों में वो खत्म हो गया। तो यही हश्र सबका होता है जो भी घमंडी हो जाते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरती से इसको हमने एंड किया, और ये बिल्कुल सही है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बहुत महीन लाइन होती है जिसको आपको समझना जरूरी है। और राही के अंदर एक पॉजिटिव फियर था, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो किसी भी तरह का फियर इन्फोर्स्ड ऐसा था कि जो गलत था, वो एक पॉजिटिव फियर है जो हम सब में होना चाहिए, और ताकि हम अपनी पावर को जो भगवान ने हमें नेमत दी है आवाज की, अमृत कंठ की, उसको बचा के यूज करें, समझ से यूज करें, क्योंकि विद एवरी पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो आपको करप्ट कर देगी, एब्सोल्यूटली करप्ट कर देगी। जैसे कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली,
1: करेक्ट।
0: तो बहुत बहुत सुंदर रहा ये एपिसोड, और मैं गुजारिश करूंगी हाथ जोड़कर सभी से जो हमें सुन रहे हैं कि अपनी लाइफ में एक बार ये बुक जरूर पढ़ें, अमृत कंठ राहु की आवाज। आई थिंक दिस इज अ लाइफ चेंजिंग बुक। और हम जिस कम्युनिटी में डील कर रहे हैं, हम सब सिंगर्स, स्पीकर्स, एंकर्स, रेडियो जॉकीज, हमारी तो कम्युनिटी ही ये है, राहियों की कम्युनिटी है जैसे सर ने शुरुआत में कहा था। तो आई थिंक इस ग्रुप के लिए तो ये बुक पढ़ना बहुत इंपेरेटिव है। इट इज आई थिंक रूल बुक टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप अपने अमृतकंड को यूज कर सकते हैं और उसे निखार सकते हैं और उसे करप्ट होने से, काटा की तरफ जाने से बचा सकते हैं। तो प्लीज वो करिए और इस खूबसूरत बुक को पढ़िए। समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अमृतकंठ राहु की आवाज। इट इज अ माइलस्टोन ऑफ अ बुक फॉर मी एंड इट रियली चेंज्ड अ लॉट इन मी। और मैंने बहुत सीखा इस बुक से और बहुत कुछ इम्बाइब करने की कोशिश करूंगी मैं अपने जीवन में इस बुक से। थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ, और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं राकेश पंचाल जी के बारे में, जो एक उद्यमी हैं और समाज सेवी भी। इन कपकपाती सर्द रातों में गर्मा गर्म भोजन के बाद जब हम अपने लिहाफ में घुसते हैं, तब कितनी बार हमें ख्याल आता है कि न जाने कितने देशवासी भूखे पेट फटे अधूरे कपड़ों में अपनी जान की पनाह मांगते हुए बाहर भटक रहे होंगे। अगर ख्याल आया तो समर्थ होते हुए भी हमने इंसानियत की क्या खिदमत कर दी है। राकेश पंचाल जैसे लोग इन सवालों के जवाब हैं, मगर अफसोस ऐसे जवाब बहुत कम हैं। आज से करीब 44 साल पहले गुजरात के वसो गांव में पैदा हुए राकेश के पिता मनुभाई पंचाल का निर्माण सामग्रियों का एक छोटा सा कारोबार था। पिता और काका के संयुक्त परिवारों की सारी जरूरतें इसी एक बिजनेस से पूरी होती थीं, लिहाजा कारोबार का तनाव अक्सर घर तक चला आता। राकेश और उनसे 2 साल बड़े भाई का बचपन इसी तनावपूर्ण माहौल में तमाम तरह की समझौतों के बीच गुजरा। गांव के सरकारी स्कूल में ही राकेश की पढ़ाई हुई। यह गुजराती माध्यम का स्कूल था। राकेश पढ़ने में काफी अच्छे थे और सेवा भावी पिता और उनके बड़े भाई ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। किशोरावस्था में राकेश को जो जो पेशा आकर्षित करता वो उसे अपनी कॉपी में दर्ज कर लेते। वैज्ञानिक से अदाकार और इंजीनियर से पत्रकार बनने तक की उनके सपनों ने कई उड़ाने भरी, मगर आसपास कोई ऐसा ना था जो उनमें से किसी एक की गहराई से उनको वाकिफ करा पाता। 12वीं में

पर ऐसा नहीं हुआ और वो अनुत्तीर्ण करार दे दिए गए। सिर्फ माता पिता अपनी संतान को कभी फेल नहीं मानते। परिवार का कारोबार बट चुका था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मगर मनु भाई ने बेटे से पूछा, आगे पढ़ना चाहते हो? राकेश ने इंग्लिश मीडियम से ही कोई कोर्स करने की ख्वाहिश बताई। उन दिनों बैंगलोर के कई संस्थान 12वीं के अंक पर आधारित विभिन्न तरीके के डिप्लोमा कोर्स कराते थे। राकेश का अगला पड़ाव बैंगलोर बना। पिता ने ब्याज पर कर्ज लेकर फीस के पैसे दिए, ये बात राकेश कभी नहीं भूले। काफी अच्छे ग्रेड के साथ उन्होंने वो पाठ्यक्रम पूरा किया। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हाथ में था, मगर उसके आधार पर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए जोशी कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी ले ली, तो चंद महीनों में वो भी हाथ से निकल गई। अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह संवाद न कर पाने की वजह से विषय की महारत पर भारी प्रभाव पड़ रहा था। राकेश बेहद आहत थे, पिता से पैसे नहीं मांग सकते थे और बैंगलोर जैसे महंगे शहर में जीने की बड़ी परेशानियां थी। आखिरकार वो वसो लौट आए। संजोग से उन्हीं दिनों मशहूर निर्माता निर्देशक देवांग पटेल एक गुजराती धारावाहिक के सिलसिले में वसो शूटिंग के लिए आए। राकेश को उसमें काम करने का मौका मिल गया। एक्टिंग के क्षेत्र में दिलचस्पी उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री के लिए बड़ौदा ले गई, मगर इस दौरान गुजराती धारावाहिकों में इतने काम मिल गए कि उसकी व्यस्तता में वो डिग्री भी अधूरी रह गई। राकेश को काम तो मिल रहे थे, मगर मनपसंद भूमिकाएं न मिलने से वो निराश थे। उन्हीं दिनों ईटीवी गुजराती चैनल में एंकर्स और पत्रकारों के लिए लिखित परीक्षाएं हो रही थीं। पिता ने ही राकेश को यह बताया और उन्होंने फौरन आवेदन कर दिया। साल 2007 की बात है। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए राकेश चुन लिए गए। बतौर एंकर हैदराबाद में उनके इस नए सफर का आगाज हुआ। अगले 7 सालों के पत्रकारीय करियर में राकेश दिल्ली और मुंबई में वॉइस ऑफ इंडिया और मिडडे गुजराती वेब पोर्टल से भी जुड़े, मगर इस बार पिता की खराब सेहत उन्हें फिर वसो ले आई। पिता स्वस्थ हुए तो उन्होंने राकेश से अपने कारोबार के विकल्प पर गौर करने के लिए कहा। राकेश भी इस बार राजी हो गए। उन्होंने पिता के साथ 2 सालों तक कारोबार और जिंदगी की बारीकियां समझी। नोटबंदी के दौरान पिता ने उनके लिए एक अलग दुकान की व्यवस्था की और इसके साथ ही तरह तरह के सपनों का ये मुसाफिर स्थायी रूप से कारोबारी बन गया। सेवाभावी पिता ने एक दिन राकेश से अपनी दिली इच्छा जताई कि वो गरीब लोगों के लिए राम रोटी सेवा यानी कि मुफ्त भोजन शुरू करना चाहते हैं। तब राकेश ने कुछ बेदिली से कहा कि इसमें तो काफी पैसे लगेंगे, हम ये काम कुछ दिनों के बाद ही कर सकेंगे। इस गुफ्तगू के तीसरे दिन पिता अचानक दुनिया से चल बसे। बेटे के दिल में एक कसक रह गई कि पापा की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, तो लानत है इस जिंदगी पर। पिता की मौत के तीसरे दिन ही गरीबों को मुफ्त भोजन कराने की राम रोटी सेवा अब विसामो टिफिन सेवा के नाम से वसो तालुका के गांव गांव में मशहूर है। इस क्षेत्र के करीब 500 बेघर अशक्त और गरीब बुजुर्गों को राकेश की संस्था रोजाना मुफ्त भोजन मुहैया कराती है। उनके ट्रस्ट में 18 लोग काम करते हैं। ये अब तक 2.5 लाख टिफिन भोजन वितरित कर चुके हैं। काश देश के हर तालुके को एक राकेश मिल जाए तो कोई बुजुर्ग कभी भूखे पेट नहीं सोएगा, उन्हें कंबल भी नसीब होगा और बिस्तर भी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक हवाई जहाज तूफान में फंस गया। पायलट बोला, किसी को बचने की कोई प्रार्थना करनी आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, हाँ बेटा मुझे आती है। पायलट ने बोला, ठीक है बाबा आप प्रार्थना करो, एक पैराशूट कम है।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

किया। देश की जनता को क्या पड़ी थी कि सात समंदर पार से वकालत पढ़ के लौटे गांधी जी को महात्मा बना दें? वकील तो और भी थे, बाकियों के पीछे आवाम क्यों नहीं जुटी? नेहरू और गांधी दोनों को जन समर्थन था, लेकिन फर्क ये था कि नेहरू को देखने सुनने के लिए भीड़ जुटती थी और गांधी जी के साथ चलने के लिए भीड़ आती थी। और ये फर्क सिर्फ साध्य की व्यापकता की वजह से था। आधुनिक युग में भी जब कोई अन्ना या कोई आमिर अलख जगाते हैं तो हजारों लोग उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही जब इस अलख के पीछे की राजनीति या व्यावसायिक लक्ष्य सामने आने लगता है तो लोग ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और जनमानस पर ऐसी या इन जैसी तमाम अलखों का प्रभाव सिर्फ ठहरे हुए पानी में एक पत्थर फेंकने सी मची हुई कुछ पल की हलचल से ज्यादा कुछ नहीं होता। और हर लहर सैलाब बनने से पहले ही सिर्फ आंखों में तैर जाने वाली वक्ती भावुकता में सिमट कर रह जाती है। हर चना अकेला है और भाड़ को फोड़ देना चाहता है, मगर ये सोचकर शांत पड़ जाता है कि अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता। अगर मकसद साझा हो और ऐसे सारे चने एकजुट हो जाएं, तो भाड़ को फूटना ही पड़ेगा। इस स्थिति को बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता।

माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जला लेती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर लेता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: भैया, हमारे देश में लोग गिफ्ट मिलने पर थैंक्स नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

होती आरती, बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर देखो तो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इनको दे देना, प्रसाद मुझको चढ़ जाएगा। मेरे दर पर मांगने वाले तुझको बिना मांगे सब मिल जाएगा।

किसी को अपना बनाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, जबकि किसी को खोने के लिए एक कमी ही काफी है।

आकाश के पार, आकाश के आर पार घूम रहे हैं बादल, घूम रहे हैं बादल। खेतों के आर पार हवा है, खेतों में भटक रहा मैं, अपनी मां की खोई हुई संतान। गली के आर पार झूम रही पत्तियां, पेड़ों के पार पक्षियों की चीख पुकार, पहाड़ों के पार दूर बहुत दूर कहीं मेरा भी घर है।

तो दोस्तों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे। बने रहिए रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: एक्टेड फिगर्स हैं, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार. बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग. मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी.
1: बेहतरीन बेहतरीन. गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
0: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

देखा नहीं देखा है, तू जाना नहीं जाना है, तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं जो इतने देर तक तेरे लिए बसता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का यह गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। दोस्तों आपको पता होगा, फिर भी बताते चलते हैं कि धर्मेंद्र को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, जो कि सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत में। तो लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओ।

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

अल्फाज की दुनिया में एक नया रंग घोलते हैं। अल्फाज की दुनिया में एक नया रंग घोलते हैं, दिल के सन्नाटों में छिपी धड़कन को बोलते हैं। पुराने नगमों की रूह में नई सांस भरकर, पुराने नगमों की रूह में नई सांस भरकर, आज हम चाहत के अनकहे अफसाने खोलते हैं। नमस्कार, आदाब, और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील से के साथ। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस खास प्रोग्राम में आज हम जो महफिल सजाने जा रहे हैं वो आम महफिलों से बिल्कुल अलग और बेहद नायाब है। अक्सर हम किसी गज़ल या नगमे को सालों साल सुनते आ रहे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब उसी अजीम रचना में कोई नया अंतरा जुड़ता है या किसी पुरानी बयाज से उसके कटे हुए अनमोल मिसरे सामने आते हैं तो वो नगमा कितना नया और रूहानी हो जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन रचनाओं को शामिल कर रहे हैं उनके पीछे एक खास तारीख और कहानी है। अजय साहब जैसे अजीम शायर ने जहाँ कुछ नगमों में नए अंतरों की नई रूह फूकी है, वहीं कुछ ऐसी गज़लें भी हैं जिनमें फिल्मों से हटाए गए डायलॉग्स और अलग शेर व शायरी, यू नो, एक्स्ट्रा वर्सेस को शामिल किया गया है। साथ ही हिंदुस्तानी संगीत के महानायक पंकज मलिक साहब की वो अकीदत भी है जिसको लता जी ने पेश किया है और जिसकी गूंज आज भी फजाओं में महकती है। तो आइए, देर किस बात की, सुरों, नफासत और एहसासों के इस अनोखे सफर का आगाज करते हैं हमारे खास नगमे के साथ। दोस्तों, हमारी आज की महफिल का पहला नगमा है, मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम। इस खास कलाम को उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब और काव्या लिम्या जी ने अपनी आवाज दी है। पारसनाथ साहब की बांसुरी की धुन है और अजय साहब ने इसके अल्फाज को पिरोया है। इस गाने के डिस्क्रिप्शन में मोहब्बत की उस गहराई को बयां किया गया है जहां इंसान अपनों की याद को अपनी सांसों की हमसफर बना लेता है। इस कलाम का ये खूबसूरत अंतरा सुनिए जो अपने आप में एक पूरा शेर है। चुप चुप हैं ये चांद सितारे, रात मेरी खामोश खड़ी है, तुझको भी मुझको भी पता है ये तेरी जाने की घड़ी है। सपनों सी जिंदगी धुंध में जाकर खो गई, किसको पता था होगा अपना ऐसा भी अंजाम। तेरी याद।

जो सुना आपने दोस्तों, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और काव्या लिम्या ने इस कलाम में अपनी जैसे रूह फूंक दी हो, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी दूसरी बादान पर क्या है। दोस्तों, 1980 की मशहूर फिल्म थोड़ी सी बेवफाई की का एक बहुत खूबसूरत नगमा हजारों राहें मुड़ के देखी से तो हम सब वाकिफ ही हैं, लेकिन आज का ये वर्जन बेहद खास है। इसकी डिस्क्रिप्शन में जिक्र मिलता है कि कैसे अजय साहब ने इस शाहकार रचना में नए अंतरे जोड़कर इसे एक नया रूप दे दिया। और जिसे मोहम्मद अली और काव्या लिम्या जी ने नए अंदाज से गाया है कि छोटी सी बदगुमानी कैसे बने बनाए आशियाने को बिखेर देती है, उसका दर्द अजय साहब के इन नए अंतरों में साफ झलकता है। वो अंतरा कुछ इस तरीके से है दोस्तों।

बस एक जरा सी हो।

तो कैसा लगा दोस्तों? मैं ना कहती थी कि आप इस वर्जन को सुनेंगे तो बेहद पसंद करेंगे, तो मैं अपने ख्याल में ठीक थी ना। आइए प्रोग्राम की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ये सुरों का कारवां हमें कहाँ लेकर चलता है। ये कहाँ आया? ये आया 1981 की शाहकार फिल्म उमराव जान की उस सदाबहार गजल की ओर। कौन सी? जस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने। खयाम साहब का संगीत, शहरयार साहब का कलाम और आशा ताई जी की वो रूहानी आवाज़। लेकिन आज जो ऑडियो वर्जन हम आपके लिए लाए हैं वो आम रिकॉर्डिंग से बिल्कुल अलग है। इसके डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि इस ऑडियो में उमराव जान के उन तारीखी डायलॉग्स और एक्स्ट्रा वर्जिस को भी शामिल किया गया है जो फिल्मी वर्जन में नहीं थे। जब महफिल का वो माहौल बनता है और संजीदा शेर आते हैं तो रूह तरन्नुम में डूब जाती है। तो शेर क्या है इस गजल के?

0: मैं तो भूल ही गई, नवाब साहब ये उमराव जान हैं।
1: अदब।
2: उमराव जान साहिबा की सवारी लग गई है।
1: क्या आप जा रही हैं?
0: जी हाँ, इजाजत चाहते हो?
1: अगर हम इजाजत न दें तो?
0: लौंडी हुक्म की बांधी है।

तो दोस्तों, सुना आपने लता दी की आवाज़ में खराज अकीदत पंकज मलिक जी को, और क्या ही समा था और क्या ही रूहानियत थी, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए प्रोग्राम की के आखिरी पड़ाव पर, पेश है शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब की मखमली आवाज़ में, कतील शफाई साहब का लिखा हुआ वो कलाम जो गज़ल गायकी का मापदंड माना जाता है। यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, इस गज़ल की बयाज की वो नफासत दर्ज है जहाँ शिकवा भी है, सादगी भी है, और चाहत का वो उरूज भी है जहाँ मौत भी एहसान लगने लगती है। इस गज़ल का ये अंतरा कुछ इस तरीके से है, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे, उड़ रहा है वो गुलाबी आंचल, फूल से रंग जुदा हो जैसे, मौत भी

आई तो इस नाज के साथ, हम पे एहसान किया हो जैसे, यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे। आइए दोस्तों, मेहदी हसन साहब की रूहानी आवाज़।

0: तो सुना आपने दोस्तों, मेहदी हसन साहब की का क्या मुकाबला है। जब वो आते हैं, जब वो गाते हैं, तो बस फिर वही वही होते हैं, और कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता। तो खोए हुए हम इस आवाज की रुमानियत में, रूहानियत में, और देखते ही देखते अल्फाज से एहसास तक का आज का ये खास प्रोग्राम सुरों, यादों और नगमों के पीछे छिपी कहानियों के साथ सचमुच एक यादगार अनुभव जैसा रहा। राहत फतेह अली खान साहब की सूफियाना तासीर, अजय साहब के लिखे नए अंतरे, उमराव जान के अनसुने डायलॉग्स और वर्सेस, पंकज मलिक साहब की अमर अकीदत, लता दी की आवाज में और मेहदी हसन साहब की मखमली तान, इन सब ने मिलकर आज की शाम को यादगार बना दिया। उम्मीद है कि नगमों के ये नए पहलू और इनकी कहानियां आपके दिलों को छू गई होंगी। चलते चलते बस यूं ही कहूं, यही कहूंगी, अल्फाज खत्म हो तो भी एहसास रह जाता है, सुरों का ये मीठा सा लिबास रह जाता है। बिछड़ते हैं रास्ते इस मोड़ पर, लेकिन दोबारा मिलने का एक आस रह ही जाती है। अपनी दोस्त आरती रॉय को अब दीजिए इजाजत, इजाजत। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए, गुनगुनाते भी रहिएगा कभी कभी और सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो ऐसे। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ।

0: वस्तुओं को बहुत जरूरी है लगभग, अगर इससे हम बचा लेंगे तो हमारा कोई नुकसान आर्थिक नहीं होगा।
1: सर, बकरियों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए और उनको आहार कैसा देना चाहिए प्रतिदिन? जैसे
0: आहार के लिए ऐसा है, हमारे यहाँ क्या है, वैसे तो बकरियों को खूब बड़ा दाना पानी लगता नहीं है, पर जैसे हमारा कोई बकरी गाभिन है तो कम से कम हमारे यहाँ बकरियों का जो गर्भकाल होता है वो 5 महीने का,
1: 5 महीने का होता है,
0: 5 महीने 150 दिन का लगभग, 150 से 160 दिन ज्यादा 55 दिन। तो हाँ, कम से कम जो हमारा गाभिन पशु है उसको हम कम से कम 2 महीने पहले,
1: हाँ, चरने जाने से रोक लेना चाहिए,
0: हाँ, उसको अलग रख ले
1: जी,
0: उसका बांधना बैठना उठना अलग करें और उसको दाना चालू कर दे 200-250 ग्राम
1: प्रतिदिन,
0: प्रतिदिन के हिसाब
1: जी।
0: तो वो जो हमारा उसका जो आने वाले बच्चों के लिए,
1: हाँ,
0: वो जो उसके उसका अडर अडर बनेगा उसका, दूध दूध की वो जो तैयारी है,
1: हाँ,
0: उस हिसाब से उसका दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उसके शरीर की आवश्यकता पूरी होगी
1: जी जी,
0: तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे उसके,
1: हाँ,
0: तो वो जरूरी है अपने, उससे अपने को उत्पादन अच्छा मिलेगा
1: जी सर।
0: और प्रोजनी जो आएगी बच्चे,
1: हाँ,
0: वो वजन भी अधिक समय में कम समय अधिक ग्रहण करें
1: जी जी,
0: तो आर्थिक लाभ भी हमको अच्छा होगा उससे।
1: तो सर जी ये बताइए कि अगर हमारे किसान भाई पशुपालन विभाग से, अगर जिनके पास आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो ऐसे किसानों को, ऐसे हितग्राही को पशुपालन विभाग या सरकार से क्या क्या दिया जाता है सर ऐसा?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका
1: जी।
0: पशुपालन विभाग से हमारी बकरी की योजना लागू है जिसमें 10 बकरी देसी
1: जी
0: और 1 बकरा उन्नत नस्ल का,
1: उन्नत नस्ल,
0: तो 10 बकरी और 1 बकरे की 1 इकाई कही गई
1: जी जी,
0: और इसकी कीमत कम से कम पूरी इकाई लागत जो है वो 77,000-75,000 रुपए के लगभग
1: लगभग है।
0: तो इसमें हमारे आदिवासी और हरिजन जो किसान है
1: जी,
0: उनके लिए 60% की सब्सिडी
1: अनुदान है,
0: अनुदान
1: जी जी,
0: करीब 45,000 के आसपास है
1: जी,
0: 77,000 के ऊपर ऊपर जो भी बने उसका 60%,
1: हाँ,
0: और सामान्य वर्ग के लिए
1: 50%। तो सर जी ये बताइए कि उसमें हमारे किसान भाई के पास क्या क्या होना चाहिए या जमीन होना चाहिए क्या?
0: नहीं, इसके लिए कोई ज्यादा जमीन अमीन की जरूरत नहीं है, पर ये जो योजना है
1: जी,
0: वो बैंक से संबंधित है
1: जी जी,
0: हमारी सब्सिडी के साथ साथ
1: बैंक अनुदान,
0: बैंक का लोन
1: लोन लोन देगी।
0: अब अगर हमारे हितग्राही का कोई कहीं से खाता वाता डिफॉल्टर हो,
1: हाँ,
0: कोई कर्ज बाकी हो,
1: हाँ,
0: तो ये हमें इसका लाभ लेने में दिक्कत
1: आएगी,
0: हाँ, इसीलिए हमारे बैंक का कोई लोन ना हो, हमारा बैंक का क्रेडिट अच्छा हो,
1: हाँ, ऐसे किसान उसका लाभ ले,
0: ऐसा किसान इसका बराबर लाभ ले सकता है, बिना बैंक के सैंक्शन किए इस योजना का लाभ उसको हम नहीं दे सकते
1: जी। सर, बकरी पालन के अलावा भी हमारे यहाँ पे पशुओं पे जो दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए जैसे डेयरी पालन है या अन्य छोटे जो इकाई है ऐसी कोई दी जाती है?
0: हाँ, उसमें दी जाती है ना, 4 पशु 5 पशु या 10 पशु, 2 इकाई है आचार विद्या सागर योजना
1: जी जी,
0: उसमें गाय पालन और भैंस पालन दोनों का है
1: जी जी।
0: गाय में अपन जर्सी HF भी पाल सकते हैं, गीर साहिवाल वगैरह देसी नस्ल की भी पाल सकते
1: जी
0: हैं
1: जी।
0: तो भैंसों में भैंसों का है वो भी 5 और 10 की इकाई
1: जी जी,
0: तो अपन जो चाहे 5 पशु की इकाई के लिए उसमें 1 एकड़ जमीन की जरूरत है,
1: हाँ,
0: और 10 पशु के लिए 2 एकड़ जमीन,
1: 2 एकड़
0: और जो हितग्राही जिसके नाम से अपन योजना का लाभ लेना चाहे,
1: हाँ,
0: जमीन उसी के नाम की
1: होना चाहिए
0: और वही है वो बैंक से संबंधित है,
1: हाँ,
0: जब तक फिर उसका बैंक का व्यवहार अच्छा होगा,
1: हाँ,
0: तो बैंक उसको लोन कर देगी
1: जी जी।
0: इसमें आदिवासी हरिजन लोगों के लिए 2 लाख के लगभग है अधिकतम
1: जी जी,
0: और इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1.5 लाख
1: जी,
0: ये हमारी लिमिट है
1: जी।
0: और जब तक बैंक सेंक्शन नहीं देगी तब तक इसका लाभ किसी पशुपालक को नहीं मिल पाएगा।
1: सर जी बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई अधिकतर लोन लेकर करते हैं या फिर किसानों के पास में घर पे भी देसी गाय और बैल भैंस होते हैं और बकरियां भी होती है, तो क्या सर इनका बीमा करवाने के लिए शासन के पास कोई इसकी योजना है?
0: हाँ, शासन के पास बीमा की भी योजना है
1: जी जी।
0: क्योंकि आजकल हमारा पशु काफी महंगा हो गया
1: जी,
0: इसलिए शासन ने पशुधन बीमा योजना लागू करी है
1: जी जी,
0: जिसमें सब्सिडी 70% तक,
1: 70% तक
0: 1 साल का बीमा होता है
1: जी,
0: और 3 साल का बीमा होता
1: जी जी,
0: ये उसका प्रावधान है
1: जी।
0: और इसकी जो वो लगती है अपनी प्रीमियम
1: जो राशि
0: लगेगी, हाँ, बीमा राशि लगेगी
1: जी जी,
0: उसका
1: किसान भाई को
0: उसकी कीमत के अनुसार
1: जी जी
0: जो राशि बनेगी उसके केवल 70% उसकी

0: राशि उसको देना है, बाकी 30% उसको खुद को देना है। मतलब ये है कि जैसे 100 रुपए की मान लो बीमा की किस्त बन रही है,
1: हाँ,
0: उसका प्रीमियम बन रहा है, तो 30 रुपए उसको देना है, 70 रुपए गवर्नमेंट मिला,
1: 70 रुपए गवर्नमेंट देगी,
0: तो उसमें अपनी रिस्क कवर हो जाती
1: है। जी जी,
0: तो उसमें हम हमारे पशु को बीमित रखें,
1: हाँ,
0: उसमें 10 बकरियों की एक इकाई गिनी गई,
1: जी जी,
0: तो हम 50 बकरी तक का बीमा कर सकते हैं,
1: जी जी,
0: और पशु बढ़ा लेंगे तो केवल 5 लाख,
1: जी जी,
0: तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है और ये भी सभी को पता होना चाहिए,
1: जी जी,
0: क्योंकि समय निकल जाता है, और मान लो जैसे हमारे पास 10 पशु है, 10 बकरियां हैं,
1: जी जी,
0: अब मान लो कोई 2 बकरी भी मर गई तो हमारा बीमा उससे कवर हो जाता है, तो हमारी लागत यूं भी वसूल हो जाती,
1: जी जी,
0: तो जानकारी के अभाव में हम बीमे का भी लाभ नहीं ले पाते
1: हैं। तो सर जी, हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई है जो कि उनके पास 2 बैल तो होते ही हैं, लेकिन उन 2 बैलों का भी बीमा नहीं करवाते हैं। तो सर जी, बीमा करवाने की जो प्रक्रिया क्या है?
0: बीमा प्रक्रिया कोई ज्यादा जटिल नहीं है,
1: जी जी,
0: आजकल सब क्या है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होता है,
1: जी,
0: इनके बकरी वो बीमा के एजेंट रहते हैं,
1: हाँ,
0: उनके द्वारा नियुक्त होते हैं,
1: जी,
0: जो प्राइवेट कंपनियां करती है,
1: जी जी,
0: जो शासन से बीमे के लिए अनुबंध करते
1: हैं,
0: साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी हो, जैसा भी अनुबंध शासन से हो जाए,
1: जी जी,
0: वो उनके एजेंट रखती है, और जो हमारे विकास खंड स्तर पर,
1: हाँ,
0: जो पशु चिकित्सक है,
1: जी जी,
0: पशु चिकित्सा अधिकारी है,
1: जी जी जी,
0: वो इनका बीमा करते हैं,
1: जी सर,
0: या पशु चिकित्सालय जहाँ पर है वहाँ पे हमारे पशु चिकित्सक सर्जन की पोस्ट होती है,
1: हाँ,
0: वो बीमा करते हैं, और नहीं तो अपने विकास खंड में जाए सीधे,
1: जी,
0: और वहाँ जो अपने चिकित्सक है उनसे बात करें,
1: हाँ,
0: तो अपना आधार कार्ड, ये आजकल आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट, और अपने बैंक की पासबुक,
1: जी,
0: ये चीजें लगती है, और उसमें एक अपना जैसे आदिवासी या जो भी हो अपनी कैटेगरी के लिए एक वो प्रमाण पत्र मिल जाए,
1: हाँ,
0: उसमें क्या सब्सिडी कुछ अंतर रहता है,
1: स्थायी जाति प्रमाण पत्र से,
0: हाँ, तो वो मिल जाए तो वो उसका लाभ हम ले सकते हैं। तो ये मेरा सभी से अपील है कि अपन सभी अपने पशुओं का अधिक से अधिक बीमा करवाएं, और अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां जाके अपन संपर्क करें और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें।
1: जी जी, तो किसान भाइयों, अभी बकरी पालन एवं पशुपालन के संबंधित हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर KL डामोर साहब, और डामोर साहब ने बहुत अच्छी पशुपालकों को हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो किसान भाइयों, ऐसी जो जानकारी जो आपको दी है, ज़रूर आप उनका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और सर जी, हमारे स्टूडियो में आए श्री डामोर साहब को और रेडियो पर सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
0: નમસ્કાર,
2: હું છે આરજે રાકેશ
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
2: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। तो चलो किसान भाई, यू हाव लेंगे एक नानो ब्रेक, अने ब्रेक में आपू हामलवाना से आपड़ा आदिवासी भील समुदाय में जब लाड लाडिया पैणे आने तीन में जो गावे त्यू घणु मजानू अने असल गीत हामलीने पासा भेड़ा था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जाजू मधी कही था हामल तारे जो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।

0: इनो पालन करी सकी। तो किसान साथियों मुर्गी फार्म हारू स्थान नो चयन करवानो। तो किसान साथियों या अगली स्टेप से कि आपने कड़कनाथ मुर्गा फार्म करवो कहाँ से अने इना हारू केत्रो क्षेत्र नी जरूरत पड़े अने आपने केत्रा क्षेत्र नी जरूरत पड़े यू पतो सालवानी बाद मा आपने तिहनी अनुसार मार्केट ने देखते हुए तिनी स्थान नो चयन करवानो। अगर कम खर्चा नी हाथे जानवा साही कि आपड़ा घेर थी शुरुआत करी अने एक मुर्गी ने केत्रो जगह जोवे छूजा हारू केत्रो जगह जोवे तो इनो सब आकलन करी ने एक सुनाव करवानो। तो किसान साथियों चयनित स्थान शेड अने पोल्ट्री फार्म्स सेटअप तैयार करवानो। तो इना सुनेला स्थान पर आपड़ एक कड़कनाथ मुर्गी फार्म नो शेड बनावानो अने इनो आकार अने ज्ञान आपुन नजदीकी मुर्गी फार्म में जाइने ली सकी। तो किसान साथियों छूजा हारू असल कुकुट पालन केंद्र थी संपर्क करवानो। कड़कनाथ मुर्गीना छूजा कामल है अने आपुने शेड तैयार करवा हारू बाद में आपुन अपना नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र थी संपर्क करीने छूजा नी व्यवस्था करवी से अने कईना भी कड़कनाथ मुर्गी पालन केंद्र में जाइन आपू बात करी सकी। तो किसान साथियों मुर्गी दाणा या भोजन नी व्यवस्था की कम करवानी। तो हाव आपुन छूजा आवी गया है तो तीना ने खावा हारू दाणा पानी नी भी व्यवस्था करवी जोई। इना हारू आपुन छूजा आलवा नी जान लेवानु कि इना छूजा मा मुर्गी बनावा पर आपुन हों खावाड़वानु अने केवी व्यवस्था करवानी। पानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स खनिज सामग्री आदि आहार मा आलू जैसे मकई चावल चोकर अने छीनिया बादाम नी खड़ी मछली नो चूरो चूना ना पत्थर हड्डी नो चूर्ण नमक सरसों नी खड़ी। तो किसान साथियों ये बात थी खावानी अने मुर्गियों पालन मा आपुन राखी जावाली सावधानियों ने जानवानु। हाउ कड़कनाथ मुर्गी पालन शुरू थाइयो इनी बाद मा इना ने पालन थी लगाड़ी ने सीना संबंधी सावधानियों नी जानकारी जोई अने जीना ने कोई भी बीमारी नी आवे अने इना हारू असल संवर्धन रहो जोई। इना ने केरे टीको लागे से अने कईनो भी कईना समय पर इना कईना लक्षण देखाई दे आदि नी जानकारी जो मुर्गी पालवा वाला किसान ने पूरी जानकारी लेवी जोई। आवश्यकता थावा पर प्रशिक्षण भी लेवो पड़े। तो किसान साथियों ये स्टेप शुरू थी ही कर लेवी जोई। अगर आपने सामान्य जानकारी राखी तो कड़कनाथ मुर्गी नो पालन आसानी थी करी सकी। इना हारू आपू सरकार ने द्वारा सलाड़ी जाहरी योजनाओं थी आपने ट्रेनिंग लीने जिनमा आपू हिस्सा में भागीदारी थाई सकी। नजदीकी कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म में थोड़ा दन जाइने तिनामा ही की सकी। कड़कनाथ मुर्गियों ने वेचवा हारू बजार मा आपुन तय करी राखवानु की हिंतु पहलू संपर्क भी करवानु। हाउ सब काम थाई गयो अने इनी वात आपुन पूरी जानकारी राख्या बाद मा जब आपड़ा पोल्ट्री फार्म मा छूजा मोटा थाई गया तिनी बाद मा त्या इनान वेचवा हारू आपुन की कम मुनाफो मळे। इना हारू आपुने कईनी भी कंपनी थी वात करी सकी अने आपड़ा नजदीकी मार्केट मा जाइन भी आपुन इनान वेची सकी। आपुन सरकार भी मार्केट उपलब्ध करावे से अगर इना कन मुर्गी पालन करता आपुन करता है तो आपो कईने भी कंपनी थी कांटेक्ट करीने फार्मिंग करता है तो मार्केट नी आपुन कोई चिंता ही नहीं मळे। तो किसान साथियों कड़कनाथ मुर्गी पालन हारू कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो किसान साथियों मुर्गी पालन हारू पोल्ट्री फार्म गांव या शहर थी थोड़ी दूर बनावानो तीन थी कईना भी लोगों या किसी आसपासना मोहल्ला वालान भी परेशानी नहीं थाई सके। कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म हारू नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कईना भी कड़कनाथ मुर्गी पालन केंद्र थी प्रशिक्षण प्राप्त करी सकें। अगर आपू इना बारा मा बिल्कुल ही नी जानकारी राखी सकें तो स्वच्छ सुजान ने भी आपू मुर्गी फार्म शेड मा राखी सकें। कहीं भी बीमारी ग्रस्त सुजा ने मुर्गियों ने अलग राखी सकी। कड़कनाथ मुर्गी फार्म शेड मा ऊंचाई पर बनाओ जाए ताकि पानी नो जमाव इनमा इनी समस्या नहीं आ सके। बारिश या अन्य कारण कड़कनाथ मुर्गी फार्म मा प्रकाश अने पानी नी उचित व्यवस्था राखवानी अने समय समय पर कड़कनाथ मुर्गी नी कार्रवाई करतु रहेवानु। वैक्सीनेशन इने हारू कईना भी प्रकार डॉक्टर या कृषि विज्ञान केंद्र थी जानकारी लेवानी अने केरे अने केतरा समय बाद इनान वैक्सीन लगाड़वानो से अने आपड़ो फार्म बड़ो थाया बाद मा इनी आवश्यकता ने अनुसार कर्मचारी थी भी आपनु संपर्क राखी सकी। तो किसान साथियों में हमने तमन कड़कनाथ मुर्गी ना बारा में जानकारी हमला भी। तो किसान साथियों हाँ आर जे कमता डामोर ने इजाताल जो अने हमला वाला हगला किसान भाइयों ने कमता डामोर की तरफ थी नमस्कार।
1: तो किसान भाइयों यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुई वात हामली बोकड़ा पालवानी अने कूकड़ा पालवानी। जेवी रीते आपड़ा झाबवा जिला नो जो भौगोलिक क्षेत्रफल से इनी जगह में पशुपालन घणी आसानी देखू पड़े से केम कि इना क्षेत्र में सर्वानी असल जगह से अने जलवायु पण ताजी मळे से। तो किसान भाइयों आजना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपुन जो बोकड़ा पालवानी वात्यो वताड़ियो डॉक्टर श्री एकेल डामोर पशु विशेषज्ञ अने अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन अने डेरी विभाग झाबवा देखी हाथे हाथ आपुई कूकड़ा पालवानी वात्यो हामळियो कृषि विज्ञान केन्द्र झाबवाना सहयोग देगी बधी वात्यो वताड़ियो मारा सहयोगी भाई कमता डामोरे। किसान भाइयों हमु रोज तमारी हारू एवा असल थी असल खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम लावी से अने आशा पण करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बधी वात्यो हामळे अने आपणी खेतीवाड़ी मा आगाड़ी बढ़े अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। आ सारू बस एतरी वात केम कि हाव समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमोनो। हूँ आरजे राकेश लूं से तमारी देखी इजाजत पण तमु जाजो मती कहता हामलता रहेजो झाबवानी आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर तमारा ज रेडियो हतवार आरजे राकेश नी हाते। हूँ से आरजे राकेश
2: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
1: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश अने रोजनी जेम तमारी वस में आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से अने किसान भाइयों हूँ रोज तमारी वस में खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तीना समाधान नी वात्यो लीने रोज इनाज समय पर हाजिर थातो रू से। મારા કિસાન ભાઈઓ આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાત્યો સાંભળવાના છે જૈવિક ખેતી અને પ્રાકૃતિક ખેતીના બારામાં। કિસાન ભાઈઓ આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાં આપણા ગાંવ ગાંવમાં અને હરેક ખેતરમાં જૈવિક અને પ્રાકૃતિક ખેતી આપણા પૂર્વજ અને ડહા ડહા કિસાન કરતેલા। સમયનો બદલાવ થયો અને હાવ ધીરા ધીરા આધુનિક તરીકાના કારણ દેખી બધા કિસાન ભાઈ રાસાયણિક ખેતીની તરફ વળી ગયા છે। એનો મેઇન કારણ છે અધિક ઉપજ। પણ કિસાન ભાઈઓ રાસાયણિક ખેતી કરવા દેખી આપણા જો કિસાન ભાઈઓને જો નુકસાન થઈ રહ્યો છે તો હાવ ધીરો ધીરો હમો આવવા માંડી ગયો છે। રાસાયણિક ખેતી કરવાથી આપણી જમીન તો ખરાબ થઈ રહી ધીરે ધીરે પણ મનખુમાં બી અનેક પ્રકારના અને અલગ અલગ રોગ દેખાવા લાગી ગયા છે। કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારી આપણા ગામડાના લોક ઓળખતેલા નહીં તે આપણા લોકોને હાવ થવા માંડી ગયો છે। કિસાન ભાઈઓ એનું કારણ યો છે અધિકતર રાસાયણિક ઉર્વરકોના આપણી ખેતીમાં અંધાધૂંધ પ્રયોગ આપું વગર હોશે સમજે એતરું ખાતર નાખી રહ્યા અધિક ઉપજના લાલચમાં પણ જો આપણું નુકસાન થઈ રહ્યો તેઓ ની દેખી રહ્યા। તો કિસાન ભાઈઓ આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપું આજ એ બધી વાતો સાંભળવાના છે કે જૈવિક ખેતી હાને કે પ્રાકૃતિક ખેતી હાને કે અને જૈવિક અને રાસાયણિક ખેતીમાં શું અંતર ये बड़ी बात आज आपड़ी हाथे वताड़वा हारू हमारा स्टूडियो में मौजूद थया से कृषि विस्तार अधिकारी श्री अनसिंह जी भूरिया विकासखंड झाबवा अने जिला झाबवा देखी अने इनु हाथे बड़ी बात करी रहा से मारा सहयोगी भाई कमता डामोर जी। तो सालो किसान भाइयों हावार नी करी अने शुरुआत करी आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में जैविक खेती नी बात।
0: जैविक खेती की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है श्री अनसिंह जी वसुनिया एईओ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड झाबवा जिला झाबवा मध्य प्रदेश। सर नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: सर जी आप हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
3: जैविक खेती यानी कि जीवों पर आधारित खेती है।
0: जी जी।
3: इसे प्राकृतिक खेती, सजीव खेती, देशी खेती, रसायन मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये सारे शब्द एक दूसरे के आसपास घूमते हैं।
0: जी जी।
3: जैविक खेती को देशी खेती का आधुनिक तरीका भी बोल सकते हैं।
0: जी।
3: जिसमें प्रकृति एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए खेती की जाती है।
0: जी।
3: इस खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं।
0: जी जी।
3: फसलों को प्रकृति में मौजूद मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है।
0: जी।
3: देश में आजादी के समय खेत में पैदावार कम होने से अनाज विदेशों से लाया जाता था, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ अनाज की कमी होने लगी।
0: जी।
3: वर्ष 1967 से 68 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें आधुनिक तकनीक, हाइब्रिड बीज, खाद उर्वरकों के उपयोग से धरती मानव सोना उगलने लगी।
0: जी जी। सर उस समय में क्या है कि जैसे अपने यहाँ पर जैसे हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति के टाइम पे यहाँ पे देश में काफी अनाज की किल्लत, परेशानी आ गई थी। तो सर उस समय पे जैविक जैसे रासायनिक खादों का किस प्रकार से दोहन किया गया, मतलब जिसके कारण आज जमीन जो हमारी खराब हो रही।
3: जी, जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसी समय से फला फूला रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं जहरीले केमिकलों का कारोबार।
0: जी जी।
3: अधिक अनाज एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों
0: व उत्पादन,
3: हाँ ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया जाने लगा।
0: जी।
3: जिसके चलते जमीन बंजर होने लगी।
0: जी।
3: मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आने लगी। मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक उपयोगी जीवाणु नष्ट होते गए।
0: जी जी।
3: देश के किसानों ने एकदम खुला इन्विटेशन दे दिया कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों को।
0: जी।
3: मानव एवं पशु के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़
0: रहा है सर।
3: जी
0: जी।
3: मानव एवं पशु स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को बचाए रखने एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए जैविक खेती जरूरी है।
0: जी जी सर।
3: जैविक खेती टिकाऊ खेती का एक प्रमुख कारण है, जिसका उद्देश्य रसायनों का उपयोग न करना यानी कि जहर मुक्त खेती करना है।
0: जी जी।
3: मिट्टी और प्रकृति में वो सारे तत्व मौजूद है जो कि पेड़ पौधों को आवश्यक है।
0: जी सर। जी ये बताइए कि जैसे मिट्टी में जो अनाज उत्पादन करने के लिए जो मतलब मिट्टी में जो 15 या 16-17 जो तत्व पाए जाते हैं, तो उनपे क्या रासायनिक के कारण क्या प्रभाव पड़ा?
3: जी
0: जी सर।
3: अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जमीन बंजर होने लगी।
0: जी जी।
3: धीरे धीरे पोषक तत्वों में कमी आने लगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं मिट्टी की संरचना काफी बिगड़ गई।
0: जी जी।
3: मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी होती गई।
0: जी जी।
3: एवं फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ने लगी।
0: जी।
3: और धीरे धीरे अनाज की उत्पादकता में भी कमी आती गई।
0: जी जी सर। तो जिनके कारण आज हमको ये प्राकृतिक खेती वापस करना पड़ रही है।
3: जी
0: जी।
3: अभी वर्तमान में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती बहुत ही आवश्यक है।
0: जी जी। सर जी बताइए कि जैविक खेती करने के लिए कौन कौन से घटकों या कौन कौन की चीजों की किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है, जिनके कारण वो जैविक खेती कर पाता है?
3: जैविक खेती के लिए आवश्यक घटक हैं मुख्य रूप से गोबर और गोमूत्र।
0: जी जी।
3: जिसमें गोबर की खाद, गोमूत्र, गोबर गैस की स्लरी का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है।
0: जी जी।
3: गोबर खाद के अलावा गोबर व गोमूत्र के उपयोग से तरल जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत जैसे घटक घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ साथ उपज में भी वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार गोमूत्र व वनस्पतियों की पत्तियों से भी कीटनाशक
0: बनाया जाता है,
3: कीटनाशक भी तैयार किया जा सकता है, जैसे कि निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, सप्तपर्णी और दशपर्णी अर्क के प्रयोग से हानिकारक कीटों से फसलों को दूर रखा जा सकता है।
0: जी जी।
3: और इसी प्रकार छाछ व तांबे की मदद से जैविक फफूंदनाशक भी बनाया जा सकता है। कुछ पौधों की पत्तियों व फल फूलों से पौध बढ़वार की टॉनिक भी बनाई जा सकती है।
0: जी जी।
3: इसी प्रकार जैव उर्वरक जिसमें कुछ जीवाणु कल्चर होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन व मिट्टी में फिक्स पड़े पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर आता, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, नील हरित शैवाल और एजेला आदि।
0: जी।
3: इस प्रकार से किसान अनेक तरीके अपना कर किसान बिना रसायन के या रसायनों का कम उपयोग करके जैविक खेती कर सकता है।
0: जी जी जी। सर जी ये बताइए कि जैविक खेती के क्या क्या फायदे हैं?
3: जी, जैविक खेती से बहुत सारे फायदे हैं। जैविक खेती से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
0: जी जी।
3: जैविक खेती से मृदा संरचना में सुधार होता है।
0: जी।
3: मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
0: जी।
3: जैविक खेती पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद है।
0: जी।
3: इससे जल, वायु व भूमि प्रदूषण नहीं होता है। जैविक खेती से फसलों में कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जैविक खेती मनुष्य एवं पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है।
0: जी जी सर।
3: और जैविक खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है।
0: जी जी।
3: इसमें सामान्य खेती की तुलना में बाजार मूल्य भी अधिक प्राप्त
0: अधिक मिलता है।
3: जी
0: जी। तो किसान साथियों, हमारे सर जी ने जैविक खेती के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी। सर जी, जैविक खेती में जो किसान भाई अपने घर पर है ही रह के मतलब जो बहुत ही जल्दी जो खाद तैयार कर सकते हैं, ऐसे कोई खाद है वो कौन कौन से हैं?
3: जी, जैविक खेती में अपन घर पर ही कुछ खाद ये तैयार कर सकते हैं अपन, जैसे जीवामृत और घन जीवामृत जैसे खाद है जो कम समय में ही तैयार किए जा सकते हैं।
0: जी जी जी। सर ये बताइए कि जीवामृत बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें और कितनी मात्रा में उसका लिया जाना रहता है, सर बताइए थोड़ा विस्तार से बताइए।
3: जी, जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले किसान भाई को 200 लीटर के प्लास्टिक ड्रम होना चाहिए।
0: जी जी।
3: जिसमें 180 लीटर पानी डाल लें।
0: जी जी।
3: फिर 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर लें।
0: जी जी।
3: अब इसमें 5 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र मिला लें। फिर इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम गुड़।
0: जी।
3: 1 से 1.5 किलोग्राम बेसन मिला लेते हैं।
0: जी।
3: फिर इसमें पीपल या कोई भी पेड़ के नीचे की मिट्टी मुट्ठी भर ले ली जाती है और उसको जो 180 लीटर वाला जो ड्रम वाले पानी में मिक्स कर देते हैं।
0: जी जी।
3: है ना, इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है और कोई भी लकड़ी का डंडा कोई भी हो उसको घड़ी की सुई की दिशा में,
0: मतलब एक ही दिशा में,
3: जी एक ही दिशा में अच्छे से मिला लेना चाहिए।
0: सर इसको दिन में कितनी बार मतलब घोल लगाते हैं जो एक ही
3: दिशा? जी, इसको किसी छांव में रखना चाहिए और ऊपर इसमें क्या है कि कोई भी बोरी है, टाट है, उससे ढक देते हैं और रोज सुबह शाम वो लकड़ी के डंडे से 2 से 3 बार घुमाते रहना चाहिए सुबह और शाम के टाइम पे।
0: जी जी।
3: और इसी प्रकार ये 5 से 7 दिनों में आपका जीवामृत तैयार हो जाएगा।
0: जी जी।
3: और इसे तैयार होने के 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग कर लेना चाहिए।
0: जी जी। तो सर जी ये बताइए कि एक 200 लीटर के ड्रम में हम जीवामृत बनाते हैं तो वो किसान भाई कितनी जमीन के लिए इसका उपयोग में हो जाता है?
3: ये 200 लीटर जीवामृत अपन तैयार करते हैं।
0: जी जी।
3: ये करीब एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है।
0: जी जी।
3: और इसे अलग अलग तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं। एक ये सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं।
0: जी जी।
3: एक एकड़ में 200 लीटर मतलब ये अपन सिंचाई की जो नाली रहती है।
0: जी जी।
3: उसमें कोई भी ये ड्रम है, डिब्बा जो भी है उसमें डाल के उसमें नल की टोटी या इस तरीके से लगा देते हैं और सिंचाई जल के साथ में अपन उस हिसाब से अपन चलने देते हैं जो लगभग 1 एकड़ में हो जाए इस तरीके से।
0: जी जी।
3: तो इसे हर सिंचाई में उपयोग करना चाहिए, हर 20-21 दिन में गेहूं, जैसे गेहूं है।
0: जी जी।
3: 20-21 दिन में लगभग में इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
0: जी।
3: तो हर सिंचाई में इस तरीके से आप ये दे सकते हैं
0: जी, मतलब ड्रिप पानी के माध्यम से।
3: जी पानी के माध्यम से ये क्या उसके जड़ क्षेत्र में चला जाता है
0: जी,
3: और जैसे कि इसमें मतलब जीवाणुओं की संख्या उसमें खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है
0: जी जी,
3: और उसमें जो भी सारे सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व जो भी है उसमें पौधे में मतलब उपयोग क्षमता उसकी बढ़ जाती है।

0: मेरे हिसाब से छोटे क्षेत्र से शुरुआत करनी चाहिए किसान भाई को।
1: सर जी, सिंचाई के अलावा जीवामृत को और जो घन जीवामृत है उनकी दूसरे तरीके से जमीन में किस प्रकार से सिंचाई के अलावा इसको दिया जाता है?
0: इसका स्प्रे भी किया जा सकता है। जीवामृत को किसी सूती कपड़े से अच्छे छान लेना चाहिए
1: जी
0: और इसका प्रयोग 15 लीटर वाले स्प्रेयर पंप में करीब 2 से 2.5 लीटर जीवामृत लेकर उसका छिड़काव डायरेक्ट फसलों पर कर सकते हैं।
1: जी जी तो सर जी, इससे फसलों से जो जीवामृत से क्या फायदा करेगा जो फसलों में, इसमें जीवाणुओं को मारेगा या खाद को बढ़ावा देगा?
0: जीवामृत में क्या है कि इसमें एक तरह के जीवाणु रहते हैं,
1: जी
0: तो ये मिट्टी में जाकर जीवाणु की संख्या में वृद्धि करेगा।
1: जी जो जैविक जीवाणु है।
0: हाँ, जैविक वाले जो लाभदायक जीवाणु हैं
1: जी जी
0: वो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करेगा और लाभदायक जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी करेगा
1: जी जी
0: और इसमें मुख्य कीट जो है अपने केचुआ आदि जो मुख्य कीट है,
1: हाँ
0: हाँ, उसकी संख्या भी धीरे धीरे इसमें,
1: बढ़ती जाएगी।
0: हाँ, उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी।
1: जी जी सर जी, रासायनिक ज्यादा छिड़काव के कारण हमारे केचुए भी जमीन के अंदर खत्म हो जा रहे हैं, तो जैविक खेती में जो दवाइयां बनाएंगे उससे उसका कोई नुकसान होगा?
0: जैविक खेती में केंचुओं में बढ़ोतरी होती है।
1: जी
0: केंचुआ क्या है, केंचुआ एक तरह से किसान का मित्र भी है।
1: जी जी
0: केंचुआ क्या, अभी के लगातार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते धीरे धीरे केंचुए की संख्या नगण्य के बराबर हो
1: जी
0: गई,
1: खत्म
0: बहुत,
1: होने लगा।
0: हाँ, बहुत कम हो गई है।
1: जी
0: हाँ, तो जैसे अपन जैविक खेती शुरुआत करेंगे
1: जी
0: तो जमीन में धीरे धीरे केंचुए और लाभदायक
1: बढ़ते
0: जीवाणुओं की
1: जाएंगे।
0: संख्या बढ़ती जाएगी। केंचुआ अपना किसान किसान भाई के लिए एक मित्र है, इसलिए भी वो है क्योंकि केंचुआ क्या है कि जमीन में जिस रास्ते से गुजरता है उसे, मतलब, हाँ, मिट्टी खाता है और
1: जी
0: उसकी संरचना में सुधार करता है
1: जी
0: और उससे जो भी बहुत सारे इसमें लाभदायक जो चीजें रहती है, सूक्ष्म पोषक तत्व, हाँ,
1: जी
0: जो पौधों को आवश्यकता है उनकी
1: जी जी
0: संख्या में बढ़ोतरी करता है।
1: एक तो मिट्टी को मतलब वो खोखला कर देता है, दूसरी बात है कि उनके द्वारा जो भोजन मिट्टी का जो लेता है
0: हाँ,
1: उसमें भी उसके जैविक के रूप में वो खाद का निर्माण करता है। सर, इसके अलावा जो घन जीवामृत बनाते हैं तो किसान भाइयों को कौन कौन सी सामग्री और किस तरह से उसको बनाया जाता है?
0: घन जीवामृत तैयार करने के लिए देसी गाय का गोबर लेते हैं। इसे हल्की धूप या छांव में सुखा लिया जाता है। 7 से 10 दिन में गोबर सूख जाने के बाद इसमें से 100 किलोग्राम गोबर को छांव में एक जगह फैला लेते हैं।
1: जी जी सर।
0: अब इसके ऊपर पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 से 2 मुट्ठी ले ली जाती है
1: जी
0: और उसको छिड़क देते हैं उसके ऊपर।
1: जी
0: फिर इसके ऊपर 1 किलोग्राम बेसन छिड़क दें।
1: जी
0: इसके बाद 1 किलोग्राम गुड़ को 4 से 5 लीटर गोमूत्र में घोलकर गोबर के ऊपर छिड़क दिया जाता है और फिर इन चीजों को गोबर में अच्छी तरह से मिला लें।
1: जी
0: 4 से 5 दिन तक इसे यूं ही रहने दें और 4 से 5 दिन में घन जीवामृत तैयार हो जाएगा।
1: जी
0: इसके बाद इसे कूटकर और बारीक कर लें और एक जगह छांव में इकट्ठा कर लें। इसके बाद इसका उपयोग अपन 1 क्विंटल घन जीवामृत को 1 एकड़ के हिसाब से जो
1: जी
0: तो फसल है उसमें 1 या 2 बार अपन
1: छिड़काव कर
0: डालकर
1: सकते
0: उपयोग कर
1: हैं।
0: सकते हैं।
1: जी सर जी, ये बताइए कि जीवामृत जो है जिनका छिड़काव करते समय कोई सावधानी रखना, जिस प्रकार हम रासायनिक खेती करते हैं जैसे रासायनिक में बहुत से नुकसान हो जाते हैं जैसे बच्चों से दूर रखना, और जो जैविक जो जीवामृत है घन जीवामृत है इनके लिए क्या क्या सावधानियां रखना सर?
0: इसमें रासायनिक कीटनाशक और वगैरह इनमें जो जितनी सावधानियां रहती है
1: हाँ
0: उसमें इतना खतरा नहीं रहता
1: जी
0: है।
1: जी
0: हाँ, इसे ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं रहती
1: जी और उनमें क्या होता है जैसे रासायनिक में बहुत सारे जैसे खाली डिब्बे कहीं फेंक देते हैं या बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ऐसे कई प्रकार की उसमें सावधानी रखना है किसान भाइयों। और जीवामृत और घन जीवामृत जो कि प्राकृतिक रूप से उनको अपने जैसे नीम है ऐसे कई प्रकार के मिर्ची है ऐसे अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है जिस कारण उसमें छाछ का भी उपयोग होता है, गुड़ का होता है, इस कारण किसान भाइयों को ना ही किसी प्रकार का कोई डर रहता है और ना ही इस्तेमाल करते समय उसे पट्टी भी बिना पट्टी बांधे भी इसका छिड़काव कर सकते हैं और सिंचाई के साथ में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं ताकि जैविक खेती करने के लिए किसान भाइयों को ज्यादा खर्चीला महंगा महंगी चीजों की आवश्यकता भी नहीं होती। सर जी बताइए कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फसलों में

0: कीट होते हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट है और चौचरी जैसे सुंडियां हैं, ऐसे कई प्रकार के, इनके लिए जैविक नियंत्रण के लिए किन किन चीजों का कौन सी चीज अपन बना सकते हैं और कितनी मात्रा में लगती है?
1: कीटनाशक या इनके कीटनाशकों के कंट्रोल के लिए जैविक रूप से नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, सप्पर्णी और अग्निअस्त्र जैसे इन चीजों को अपन घर पर तैयार किए जा सकते हैं। उस हिसाब से अपन जैसे कि नीमास्त्र बनाते हैं।
0: जी जी,
1: नीमास्त्र इसमें जैसे कि रस चूसने वाला कीट है, छोटी सुंडियों उनके नियंत्रण के लिए
0: उपयोग
1: में लाया जाता है।
0: जी जी,
1: और इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं।
0: जी,
1: इसके लिए जरूरी चीजें हैं, नीम के पत्ते व फल को उनको उनको ले लिया जाता है 5 किलोग्राम।
0: जी जी,
1: 5 लीटर गोमूत्र, गाय का गोबर 1 किलोग्राम और पानी 100 लीटर।
0: जी जी,
1: हाँ, इन सभी वस्तुओं को एक ड्रम में डालकर 48 घंटे तक रख लिया जाता है।
0: जी जी,
1: दिन में 3 बार लकड़ी के डंडे से घुमा लेते हैं।
0: जी जी,
1: और तैयार घोल को कपड़े से छानकर इसका छिड़काव कर लिया जाता है।
0: जी जी,
1: जैविक रूप से भी कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं। इसमें नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, सप्तपर्णी और दशपर्णी अर्क के रूप में अपन बना सकते हैं।
0: जी जी,
1: जिससे हानिकारक कीटों को फसलों से दूर रखा जा सकता है। और इस प्रकार से अपन जैसे कि नीमास्त्र है, नीमास्त्र में क्या है कि रस चूसने वाला कीट है, छोटी सुंडियों का, इनका नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं।
0: जी जी,
1: और इसके अपन तैयार करने की विधि देखे तो इसको सबसे पहले प्लास्टिक के ड्रम में 5 किलो कूटी हुई नीम की पत्तियां ले लेते हैं।
0: हाँ,
1: और 5 किलो नीम के फल पीसकर कूट कर डाल दें।
0: जी,
1: इसके बाद 5 लीटर गोमूत्र,
0: हाँ,
1: और 1 किलो गाय का गोबर डालें।
0: जी जी,
1: इन सभी सामग्री को डंडे से हिलाकर जालीदार कपड़े से ढक दें।
0: जी जी,
1: यह 48 घंटे में तैयार हो जाता है।
0: जी जी जी सर जी, नीमास्त्र के बारे में आपने जो विधि बताई, और किसान साथियों ये जो नीमास्त्र है जो आपने आसपास में ही सभी कोई बिना खरीदी लाए हुए वस्तुएं हैं और इसे इस प्रकार से हमारे सर जी ने जो बताया, तो सर जी आप रेडियो टंट्या भील में आए, इसके लिए आपको किसान भाइयों और हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार, धन्यवाद।
2: હું છે આરજે રાકેશ
3: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
2: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર। તો સાલો કિસાન ભાઈઓ, હવે એક નાનો બ્રેક અને બ્રેકમાં આપુ સાંભળવાના છે આપણા ઝાબવા જિલ્લામાં આદિવાસી ભીલ સમુદાયમાં લાડલાડિયા પૈણે અને દિવાળી દહરામાં જો ઘોર અને ગરબા રમે, તીનમાં જો ગાવે ત્યુ ઘણો મજાનું અને અસલ ગીત હામલીને પાછા ભેળા થા હું કાર્યક્રમમાં જાજોમતી કહેતા હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ।

0: बढ़ावे से तीन थी मिट्टी हमेशा उपजाऊ बने ली रहे से जीवामृत बनावानी विधि। तो किसान साथियों खेतरी में खेतर में आपकी कृषि भूमि में या कृषि में जीवामृत नो प्रयोग करवाना जो सुविधा ना दृष्टिकोण थी इन्होंने तीन प्रकार था बनावी ने उपयोग करी सके। जीवामृत नी तरल अवस्था, बीजू जीवामृत नी अर्ध ठोस अवस्था अने तीसरू जो से सूखा जीवामृत घन जीवामृत। तो किसान साथियों वडला पीपला ना झाड़का ने समय पर ऑक्सीजन आलवा वाला से ज्यादा ऑक्सीजन आलवा वाला पेड़ों ने नीचे नी जो मिट्टी जीवाणु अने सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाए से या सूक्ष्म जीव भूमि महारू घना ही जरूरी से अने घना ही लाभदायक से। तो किसान साथियों सबतु पहलो एक प्लास्टिक नो मोटो ढोलकू ले लेवानो तीनमा तीनाने सीहला मेली देवानू अने तीनी बादमा 10 किलो देसी गायनु ताजू गोबर 10 लीटर पुराणु गायनु मूतर 1 किलोग्राम कईना भी दाल नो आटो या 1 किलो वडला या पीपळाना नीसेनी मिट्टी लेवानी अने 1 किलो पुराणु हाडेलो गोळ अने 2000 लीटर अने 200 लीटर पानी में असली तरह थी लीने लाकड़ा की सहायता थी मेलवानु असली तरह थी मेलवानी बाद में इना ने ढोलका ना मोह ने सीतरा थी ढाकी अने घोल ने सीहला में राखी देवानो तीन थी तीहुनी पर हुदी धूप नी पड़वी जोई। अगले दिन भी इना घोल ने लाकड़ा ना डाखला डंडा थी तीनी सहाय थे जेवी रीते आपणी घड़ीनी जो होई घूमे तीनी दिशामां ही हमेशा घुमाड़तू रहेवानुं। लगभग 5-100 दनों तक हर रोज इना काम ने रोज करतू रहेवानुं अने तीनथी इना ने हड़वाथी अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड अने मिथेन जेवी हानिकारक गैसोनो निर्माण थाय छे। लगभग 6-7 दिनों बाद में झेर घोल में बुड़बुटियाँ आवा लगे अने कम थाई जाए थी अने तीना हामज लेवानु की जीवामृत तैयार थाई चुक्यो से। जीवामृत बनावीने तैयार थावान पर तीहुना ताप पर निर्भर करे से अने सर्दी में थोड़ो ज़्यादा समय लगे से अने गर्मी में 2 दिन पहलो बनीन तैयार थाई जैसे। तो किसान साथियों 200 लीटर जीवामृत एक एकड़ भूमि हारू अने तीनी सिंचाई नी हाथे करवा हारू पर्याप्त रहेशे। एक वैज्ञानिक शोध में न्यू पायुगी से की तीन थी जीवामृत तैयार करवा थी 14 दिन नी बाद में सबथु ज्यादा 7400 करोड़ जीवाणु बैक्टीरिया पाया गया से। तीन थी तीनी बाद में तीहुनी संख्या घटती अने शुरू थाती जाए से। गोल अने बेषण बेहुई जीवाणु ने बढ़ावामां महत्वपूर्ण भूमिका निभाड़ी से। गोबर गौमूत्र मिट्टी ना घोल थी जीवाणु की संख्या केवल 300,000 पाई गई से अने तीन थी बेसण मिलायो गयो से अने तीहुनी संख्या बढ़ी ने 25 करोड़ थाई गई से। जेर इना तीनों बेसण तीनों ही मिलाया गया बेसण अनी जगह पर गोल मिलाई गयो इनी संख्या 220 करोड़ थाई गई। पुन जेर गोल अने बेसण बेहू ने मिलाई गयु अने जीवामृतना आगला घटक गोबर गौमूत्र गोल अने बेसण अने मिट्टी मिलावी गई तो इहुनो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आयो अने जीवाणु की संख्या बढ़ी ने 7400 करोड़ थाई गई अने या अमृत जेर सिंचाई नी हाथे खेतर में नाख्यो गयो तो भूमि में जीवाणु की संख्या अविश्वसनीय रूप थी बढ़ी जाय से अने भूमि में भौतिक रसायन अने जैविक गुणों में बढ़ोतरी थाय से। तो किसान साथियों जीवामृत नो उपयोग जीवामृत ने महीना में 1 या 2 वारी उपयोग ना अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ ना हिसाब थी सिंचाई ना पानी ने हाथे उपयोग करवानो तीन थी खेती में चमत्कार था है अने फळों नी पेड़ों नी जो आसपास नी जो बफोरना टाइम पर बारे वागे सीहला पड़े से अने तीना सीहला ने चिन्हित करीने सुबह या शाम ना हमेशा पेड़ बेथी पांच लीटर ने दर थी जीवामृत में महीना में एक या बे वारी नाखू से अने इन तो इहनो उपयोग करवा थी समय पर दिन में पेड़ में हमेशा नमीनो रेवू घणु जरूरी से। तो किसान साथियों अर्धठोस जीवामृत ना बारा में तमने अने कई प्रकार ना तमन जीवामृत ना बारा में मैं तमन खेतीवाड़ी नी असल जानकारी हामळावी। तो किसान साथियों एवी खेतीवाड़ी नी असल जानकारी हामळवा हर तमो हामळता रहेजो रेडियो टंट्या भील 90.8 FM छाबवानी आवाज।
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
1: તમે સાંભળી રહ્યા છો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર।
0: કિસાન ભાઈઓ તમે સાંભળી રહ્યા છો ઝાબવા જિલ્લાનો પહેલો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ। किसान साथियों हूँ से आरजे कमता डामोर अने तमु हामली रहसे रेडियो पर कार्यक्रम खेतीवाड़ी। तो किसान साथियों हरीपत्तीनी खातर अने एक उपयोगी जैविक खाद ना बारा में आज हूँ किसान भाइयों तमु जानकारी हामळावा जाय रह्यो छे। तो किसान साथियों खेतीवाड़ी में आपण कई प्रकार ना खरपतवार भी रहेशे अने हारा पायडा वाला कई एवा पौधा उगे से अने तीन थी किसान भाई खातर बनावीने आपणी खेती में उपयोग करी शके। तो किसान साथियों तिनेहारू हरीपत्ती नो खातर नो उपयोग करवाथी हूँ लाभ थाय से अने हरीपत्ती ना खातर हारू उपयोगी जो प्रजातियों से झाड़कानियों अने हरीपत्ती खातर की कम तैयार करवानो अने खातर ना उपयोग नो जो सही तरीको एवी कई प्रकार नी आगली जानकारी हमलावानी तमन हूँ जानकारी बताड़ी रह्यो छे। तो किसान साथियों हरीपत्ती ना खातर ना विभिन्न पेड़ों हर्ब अने झाड़ियों थी हरा पायडा अने डाळखानी सटाई भेळी करीने तीनी परिभाषित करी जे कि गिवसे की तीन माती हुने जैविक खातरना रूप मा कई एवो इस्तेमाल तीन थी करे जाय सके से। वन वृक्षना पायडा अने खातरना प्रमुख एक एवो स्रोत से, जबकि खेतरनी मेड़ बंजर भूमि आदि मा उगवा वाला हर्ब अने झाड़का तीना हारू एक मुख्य स्रोत से। हरीपत्तीना खातरनो उपयोग करवो विशेष रूप थी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा उपयोगी रहेशे। हरीपत्तीनी खातर केम जरूरी से? तो किसान साथियों पौधानी बढ़ोतरी हारू अने पोषक तत्वोना स्रोतना रूप में रासायनिक उर्वरकोनो उपयोग करवानो अने मिट्टीना उपचार हारू एक असल तरीको ने मळे। रासायनिक उर्वरकोनो उपयोग दुनिया भरमां कर्यो जाय रह्यो छे, विशेष रूप थी तीसरी दुनियाना देहों में विशाल वृक्ष जनसंख्या अतिरिक्त खाद आवश्यकता ने पूरो करवा हारू विभिन्न रासायनिक उर्वरकोनो इनो अंधाधुंध उपयोग थी कई पर्यावरणीय अने स्वास्थ्य खतरों ने हाथे हाथे सबथी कीमती प्राकृतिक संसाधनों ने स्थायी नुकसान थाय रह्यो छे। अगर इनो भयानक रसायनो उपयोग अनियंत्रित थाई जाय से त्यो मिट्टी एक निश्चित अवधि नी बाद मा फसल उत्पादन हारू उपलब्धता नी रहे से। इने हारू आवाली पीढ़ियों हारू एक स्वच्छ मिट्टी ने बनाई राखवा हारू कृषि प्रणाली ने रसायनो थी अने जैविक खातर मा बदलवानो समय से। तो किसान साथियों जैविक खातर ना रूप मा हरा पायडा नु खातर घणु ही असल मिट्टी ने स्वास्थ्य बनाई राखवा हारू तीनी हाथे तीहुनी अनावश्यक पोषक तत्वों ने भी आपूर्ति करवामा सक्षम से। उदाहरण हारियों देखी जाए किसान भाइयों तो एक प्रयोग में GLMA आवेदन ना कारण धान नी हाल नी उपज में काफी बढ़ोतरी थाई से अने तीना प्रयोग थी पीना परिणाम स्वरूप यो निष्कर्ष निकाले गयो से कि हगला हरा पायडाना खातरना प्रयोग थी हाळना नत्रजन मांगना मोटा भाग ने तिनथी पूर्ति करी जाय सके से, त्या यूरिया थी पूरी थाय से। त
3: किसान साथियों, हरी पत्ती ना खाद नो उपयोग करवाथी किसान भाई ने लाभ। हरी पत्ती ना खातर मा पेड़ अने मृदा ना भारी मात्रा मा नत्रजन आपूर्ति करे से। 400 पेड़ों ने 2 घन मीटर नी दूरी पर बांधी करीने लगभग 120 किलो नत्रजन नी आपूर्ति करी जाई सके से। हरा पैड़ा ने खातर ने पौधा हारू संतुलित पोषण सुनिश्चित करावे से। मिट्टी ना उर्वरकता में भी काफी हद तक सुधार थाय से। GLM पेड़ 12 मासी से अने M 1 वरे मा 2-3 पायड़ा 1 वरे मा 2-3 वारी पायड़ा नी आपूर्ति करे से। इना हारू तिहोने घड़ी घड़ी उगवा वाला उगाड़वानी जरूरत नहीं पड़े से। GLM धीमी गति तो पोषक तत्वों ने मिट्टी में छोड़े से अने इहुन ना आवेदन ने बाद में लंबा समय तक पौधा ने पोषक स्रोत थी तिना रूप में काम करे से। GLM ना आवेदन ना कारण मिट्टी नी संरचना में काफी हद तक सुधार थाय से। GLM खातर पदार्थों ना रूप में काम करीने केंचुआ ना विकास में काफी हद तक प्रोत्साहित करे से। GLM ना आवेदन थी पानी वायु नी भी गुणवत्ता हारू कोई खतरो नी रहे से। GLM मिट्टी मा विभिन्न लाभकारी सूक्ष्म जीवों ना विकास ने प्रोत्साहित करे से अने इना प्रकार थी मिट्टी नी जैव विविधता मा भी आधार करे से। लवणता प्रभावित मिट्टी ना सुधार हारू हरी पत्ती नु खातर घणु उपयोगी से। तो किसान साथियों, GLM पौधा नी लाकड़ा ने दाखला ने उपयोग ईंधन ना रूप में लियो जाय से। GLM हस्ती आसानी थी उपलब्ध अने उपयोग करवामां भी घणो आसान से रहेशे। हरी पत्ती नी खातर हारू उपयोगी पौधानी प्रजातियो। तो किसान साथियों, हरी पत्ती नो उत्पादन हारू कई पेड़ अने पौधा नो उपयोग करियो जाय से। तीन माता पेड़ जेवी रीते पुंगम, ग्लिरिस शिडिया, मवोड़ा, इरुक अने सुबबुल, वहाई करंजी, जंगली इंडिगो, जंगली ढेचा, नीमड़ो, कोलोट्रोपिस आदि अने जलकुंभी, कोलोट्रोपिस, ट्रायथम, केसिया, इपोमिया, पार्थेनियम आदि खरपतवारों नो व्यापक रूप तो उपयोग में इनान लियो जाई सके से। तो किसान साथियों, हरी पत्ती ना खातर तैयार करवानो तरीको। हरी पत्ती नी खातर बनावानो एक आसान अने हस्तो उपाय से। विभिन्न कई प्रकार ना खातर वाला मेड़ अने पौधा जीवित बाड़ या बंजर भूमि पर उगाड़े जाई सके से। जबकि त्या असली तरह थी विकसित थाई जाए से त्या तिहुना पायड़ा ने बस कापी नाखी जाए से अने बंडल मां फसल ना खेतर मां लायो जाए से। फसल ओरवाथी पहलू हरी पत्ती ना खातर ने मिट्टी मां असली तरह थू मेलवी नाखवानु। हरी पत्ती ना खातर ना उपयोग नो तरीको। तो किसान साथियों, मिट्टी हारू हरी पत्ती नु खातर नो आवेदन मिट्टी नी नमी पर निर्भर करे से। त्या खातर मां मिट्टी मिलवा हारू पर्याप्त नमी नी आवश्यकता रहे से। किसान ने जो GLM नो उपयोग करे से अने त्या आपणी तकनीक थी नमी नी मात्रा ने भी मापे से। मिट्टी नी नमी नी स्थिति निर्धारित करवा हारू 5 सेंटीमीटर गहराई तक खुदाई करे से अने ता मिट्टी नो नमूनो लेता लेवो पड़े से अने त्यो आपड़ा हाथों नो उपयोग करीने तीनी मिट्टी ना नमूना ना ढेला बनावे से। त्या आपड़ा हाथों ना वश मां ढेलू दबावे अने अगर ढेलू तुरंत दमलाई जाए तो तीना GLM ना प्रयोग नहारू नमी नी मात्रा ने भी अपर्याप्त माने से। त्या मिट्टी मां GLM ने हगला प्रयोग करे से। तेर तीन मां नमी नी मात्रा पर्याप्त लागे से। त्या एवा प्रकार पर GLM नो प्रयोग करवाथी पहलू मिट्टी ना कार्बनिक पदार्थ स्तर नो निर्धारण करे से। तो किसान साथियों, मैं हमने तमने हरी पत्ती ना खातर नो एक उपयोग अने जैविक खातर ना बारा मा તેના જાણકારી સાંભળાવી અને એવી કઈ પ્રકારની જેવી રીતે હરિપત્તીના ખાતરનો ઉપયોગનો તરીકો, હરિપત્તીના ખાતરને કેમ તૈયાર કરવાનું અને હરિપત્તીના ખાતર હારું ઉપયોગી પ્રજાતિઓ ઝાડકાનીઓ અને હરિપત્તીના ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી કિસાનભાઈને શું લાભ થાય છે, એવી મેં તમને કઈ પ્રકારની કિસાનભાઈઓને આજ જાણકારી સાંભળાવી.
4: તો કિસાનભાઈઓ, યો હતો આજનો કાર્યક્રમ ખેતીવાડી. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણી વાત સાંભળી પ્રાકૃતિક ખેતી અને જૈવિક ખેતીની વાતો. બધી વાતો વતાડવા હારું આજ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ થયેલા હતા કૃષિ વિસ્તાર અધિકારી શ્રી અનસિંહજી વસુનિયાજી. તેનું હાથે વાતે કરી મારા સહયોગી ભાઈ કમતા ડામોર અને પ્રાકૃતિક ખેતીની વાતો કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ઝાબવાના સહયોગ દેખી હમી આજ તમારી વશમાં પ્રસ્તુત કરી. કિસાન ભાઈઓ, હમો રોજ તમારી હારું એવા અસલથી અસલ ખેતીવાડીના કાર્યક્રમ લાવી છે અને આશા પણ કરી છે કે અમારા ઝાબવા જિલ્લાના કિસાન ભાઈ એ બધી વાતો સાંભળે અને આપણી ખેતીવાડીમાં સુધાર કરે અને અસલ મોટો મુનાફો કમાય અને આપણા ક્ષેત્રમાં ખેતીવાડીમાં નામ પણ કમાય. કિસાન ભાઈઓ, આ સારું વચ્ચે ત્રિવાત, કેમ કે હાવ સમય થઈ ગયો છે બીજા કાર્યક્રમોનો. હું આરજે રાકેશ લું છે તમારી દેખી ઇજાજત, પણ તમુ જાજો મતી કહેતા હામલતા રેજો ઝાબવાની આવાજ પર સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ તમારા જ રેડિયો હતવાર આરજે રાકેશની હાથે.

0: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। लीजिए दोस्तों, आज के कलाकार में एक नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं, और आज जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर हमारे साथ हैं, उनका नाम है पुलक मुखर्जी। बाकी पुलक जी खुद अपने बारे में हमें बताएंगे। तो पुलक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए।
1: शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं पुलक मुखर्जी, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ विगत 22 सालों से, और मेरी स्कूलिंग जो है बनारस में, बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ, जो कि एक संगीत का घराना, जाना माना घराना माना जाता है, और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। मैं कॉलेज BHU से वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, और उसके बाद फिर मैं कई सारे शहरों पे मेरा पोस्टिंग भी हुआ है। इलाहाबाद से मैं स्टार्ट किया अपना जर्नी, फिर बनारस, फिर अभी तो फिलहाल लखनऊ में हूँ विगत फिलहाल। तो यही है मेरी अभी तक की जर्नी, और अभी मेरी नौकरी के जरिए मैं काफी सारे शहरों में घूमता भी रहता हूँ, मेरे काम ही ऐसा है। क्योंकि गाना मेरा पैशन है, एक जुनून है, शुरू से मैं गाने को अपना एक जुनून मानता हूँ, आया हूँ, तो मैं ऐसे ही कई सारे जगह पे मैं गाना वाना भी गाता था। इवन स्कूलिंग से मैंने स्टार्ट किया गाना, कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं फिर मैंने कॉलेज में भी कई सारे कॉम्पिटिशन्स में गाए, उसमें वहां पर भी मैंने गाना गाया। तो धीरे धीरे धीरे धीरे नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको भी साथ साथ लेते हुए चला, अभी तक का यही जर्नी है सर मेरा।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना कि पुलक जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से हैं वो। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को पुलक जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत सुंदर गायकी पुलक भाई, बहुत सुंदर गायकी और बहुत ही सुंदर शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके बचपन में चलते हैं। आपके बचपन में जब आप छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे आप, क्या सपना था आपका?
1: सर मेरा शुरू से यही सपना था कि एक अच्छा गायक बनूं, क्योंकि मैं बचपन से ही अच्छा गाता था और मेरे घर पे घर परिवार में मेरी मम्मी खासकर जो है वो भी गाती थी। वो रविंद्र संगीत, चूंकि हमारे हम लोग बंगाली हैं तो हम लोग की बंगाली घराने में रविंद्र संगीत का काफी प्रचलन था और उन्हीं से सीख सीख के मैं रविंद्र संगीत गाता था। हमारे वहाँ पे बनारस में एक छोटी सी स्कूल थी गीताली करके, तो वहां पे भी मैं थोड़ा बहुत गाता था, वहां पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सीखा। लेकिन चूंकि पढ़ाई की काफी प्रेशर था और इसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक कल्चर होता है हमारे घर में भी, ऐसी कल्चर रही थी तो वही हम लोग उसको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन सपना तो गायक बनने का था, लेकिन धीरे धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता गया और हम लोग पढ़ाई लिखाई खेल कूद और तमाम दुनिया के चीजों को लेके हम लोग उलझ जाते हैं, तो वो चीज जो सपना रहता है वो सपना कभी कभी सपना ही रह जाता है। इसीलिए हम गायक बनने का सपना जो था वो सपना ही है अभी। लेकिन फिलहाल फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने जो पैशन है, मेरा जो जुनून है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कई जगह मैं गाता वाता भी हूँ, तो यही है अभी फिलहाल।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना पुलक जी बचपन से ही गायक बनना चाहते थे और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम पुलक जी को सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पुलक जी एक प्रॉपर गायक हैं, एक टैलेंट हैं। लीजिए आगे बढ़ते हैं और मैं पेश करता हूं पुलक जी का ही गाया हुआ ये प्यारा प्यारा सा गीत।

0: बहुत सुंदर पुलक जी। चलिए मुझे ये बताइए, क्योंकि आप गायक हैं, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आपके आदर्श गायक कौन हैं और गायिका कौन है और भला क्यों?
1: चूंकि घर पे रविंद्र संगीत का प्रचलन था, तो मेरे आदर्श गायक रविंद्र संगीत में कुछ हेमंत मुखर्जी भी थे, कुछ किशोर कुमार, लेकिन धीरे धीरे जब मैं किशोर कुमार जी सर के जब मैंने गाना सुनता रहा, तो उनके कई सारे प्रभाव, उनके कई सारे जो एक्टिविटी, जो गले का थ्रो है, जो उनका जो एक मैंने एक्टिविटीज हैं गाने के दौरान, जो एक्टिविटीज हैं, और वो जो जिस हिसाब से वो गाने को मैंने जीवित कर देते हैं, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रभाव किया। तो खुद को धीरे धीरे धीरे धीरे मैं फिर जो है उनके उनके स्टाइल को अपनाता रहा, लेकिन उनकी उनका एक मिमिक नहीं करता था, मैं अपने स्टाइल से ही गाता हूँ फिलहाल अभी भी, लेकिन उनको उनकी जो एक प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। और गायिकाओं में तो खैर जिसके गले में माँ सरस्वती बैठी हुई है, लता जी, वो तो इस दुनिया में नहीं, कोई भी ये भी जिस दुनिया में नहीं है। तो गायक में आदर्शों में मैं किशोर कुमार जी को मानता हूँ अभी भी, और लता जी गायिका में है ही, क्योंकि उनकी जैसा मिठास गले में बहुत ही कम सिंगरों में है, बहुत ही, वो तो दुनिया मानती है लता जी के बारे में, उसको मैं उनके बारे में क्या मैं बोलूं, मेरा बोलना बहुत बड़ा बात हो गया, मैं उस कैटेगरी में ही नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में किसी भी गायक के बारे में या गायिका के बारे में कुछ बताऊं। तो मैं इन दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, लता जी को भी और किशोर कुमार को भी, हालांकि बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, रफी साहब भी हैं, मन्ना डे सर भी हैं, हेमंत सर, हेमंत दादा भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग गायक हैं, लेकिन जो जिनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा वो किशोर कुमार जी को।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि पुलक जी को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ही उनके फेवरेट हैं, उनके आदर्श गायक और गायिकाएं हैं। चलिए लीजिए, पेश खिदमत है ये एक और प्यारा सा गीत पुलक मुखर्जी जी का।

0: बहुत सुंदर पुलक जी, जैसे आपने बताया कि आप बंगाली कम्युनिटी से आते हैं और बंगाल में या बंगाली कम्युनिटी में रविंद्र संगीत का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने भी बचपन बंगालीज के बीच में गुजारा है, रविंद्र संगीत सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, तो उसमें जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो अमेजिंग हैं, क्योंकि आप भी गाते हैं। मुझे ये बताइए, गाना गाने से पहले क्या आप अपने गले को तैयार करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कुछ करते हैं आप?
1: अमूमन गले का जो एक, हम लोग पहले जब मैं गाना गाता था वहां पे रविंद्र संगीत गाने के लिए, तो हमारे जो मेरी मम्मी थी और मेरे जो और भी टीचर्स थी वहां पे, वो कहते थे कि गले में गरारा करके जाओ तो गले की सुर अच्छा निकलेगा, और कुछ वो लॉन्ग वगैरह मुंह में रखने के लिए बोलते। वो तो प्रिपरेशन था, मैंने एक प्राइमरी प्रिपरेशन था, लेकिन जब जब जब मैं और आगे बढ़ता गया और कई जगह अनुष्ठान में मैं काम मैंने अपना प्रदर्शन किया, अपना प्रेजेंटेशन किया, तो जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लैक कॉफी थोड़ा सा पी के मैं अपना प्रिपरेशन करता हूँ जनरली, ताकि गले का जो पाइप है, विंड पाइप है, वो थोड़ा सा जो है ब्रॉड हो जाता है और खुल के चीजें सामने आती हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है किसी और के लिए कुछ और हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से इस तरह का प्रिपरेशन करता रहता हूँ।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए पुलक जी गायक हैं तो वो अपनी एक टिप हमें दे रहे हैं कि अगर ब्लैक कॉफी थोड़ा सा हम लोग गाने से पहले करें तो थोड़ा सा हमारा जो विंड पाइप्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, थोड़े से खुल जाएंगे, तो हमारे सुर बेहतर लग सकते हैं, और जाहिर सी बात है इसको वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं। लीजिए आगे बढ़ते हुए ये नगमा सुनते हैं पुलक जी की आवाज़ में।

0: अमेजिंग गायकी, बहुत ही सुंदर गायकी पुलक जी। पुलक जी, कोई ऐसा गाना है क्या जिसको गाने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, आपको लगता हो बस मैं यही गाना गाता रहूं?
1: वैसे तो कई सारे गाने हैं गाने में, गाने का मतलब गाना मुझे बहुत पसंद है, कई सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं कि मैं इसको गाता ही रहूं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो कि मेरे दिलो दिमाग में कभी कभी बस गया है, और मैं समझता हूँ कि उसको गाने में मुझे और अच्छा लगता है। और कोई भी अगर मुझे रैंडमली ये कहे कि एक गाना सुनाओ, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिविटी एनर्जी सबके अंदर डालने के लिए एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, किशोर कुमार साहब का, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। एक ऐसा गाना है जो किसी भी इंसान को जो एक नेगेटिविटी में जी रहा है उसको एक पॉजिटिविटी देता है। आप किस कोई भी अगर मतलब सोच रहा है कुछ, इसके दिमाग में कुछ अगर मन बैठा हुआ है बेचारे का, वो एकदम मतलब दंत युद्ध लड़ रहा है अपनी जिंदगी से, तो उनको ये गाना इतना इम्पैक्ट करता है। और वाकई में मैंने अपनी चीजों को देखा है, और मैंने खुद इस चीज को अपने अंदर में मैंने डाल के देखा है, और मुझे इसका रिजल्ट मिला है। वाकई में जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमें पुलक जी के पसंदीदा गाने के बारे में पता चला, जिसको वो बार बार गाना चाहते हैं और उसका मतलब क्या है वो भी उन्होंने हमें बताया। तो लीजिए, आगे बढ़ते हुए ये गीत आपके लिए पुलक जी की तरफ से।

0: पुलक जी, आप गायक हैं तो जाहिर से बात है बहुत सारे गायकों को गायिकाओं को आप पसंद भी करते हैं, आपने अभी अभी बताया। मुझे ये बताइए कि आप किस सिंगर के साथ गाना चाहते हैं, मतलब ऐसा अगर आपको मौका मिले कि आप चूज करें कि जो भी सिंगर्स आज अवेलेबल हैं जो हैं उनमें से किसके साथ आप स्टेज के ऊपर गाना गाना चाहेंगे?
1: सिंगर तो जो जिसके साथ जिसके सामने मैं गाना चाहता था वो तो इस दुनिया में है नहीं, वो किशोर कुमार साहब थे, लेकिन मैं उनके बेटे जो उनके सुपुत्र है अमित कुमार साहब, वो भी बहुत ही उम्दा गायकी, उनका क्या गायकी है और बहुत ही उम्दा गायक हैं वो भी। आज के दिन में भी वो उनकी जो थ्रू ऑफ वॉइस है और जो गले का उनका काम है वो अमेजिंग है। तो कभी अगर मौका मिले कभी जिंदगी में, अगर अभी रिसेंटली लखनऊ में उनका प्रोग्राम भी हुआ था तो मैं देखने गया था उनका प्रोग्राम, ये रविंद्रालय में हुआ था। इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया वो गाते हैं, और कभी मौका मिले, कभी अगर सामना हुआ तो उनके साथ स्टेज प्रोग्राम करने का शौक या दिली ख्वाहिश है, अभी अगर मौका मिला तो उनके साथ गाना चाहेंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अमित कुमार साहब के साथ पुलक जी गाना गाना चाहेंगे और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उनकी ये इच्छा जल्द पूरी हो। चलिए आगे बढ़ते हुए पेश करते हैं पुलक जी की आवाज में ये गीत।

0: पुलक जी, आपको किसने मोटिवेट किया, आपको किसने इंस्टिगेट किया, किसने आपको कहा कि आप गाइए, आप अच्छे गायक बन सकते हैं, कौन है वो?
1: देखिए सर, शुरुआती दौर पे जब मैं गाना गाता था, मेरी मम्मी, मेरी माता जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे बहुत प्रमोट करती थी, बहुत ही मुझे मतलब मुझे प्रोवोक भी करती थी, मुझे बहुत ही इंस्पायर भी करती थी, मोटिवेट भी करती थी, गाइड भी करती थी कि तुम्हारे अंदर, तुम अच्छा गाते हो, तुम्हारे अंदर गले में सुर है, क्योंकि एक बच्चा जब गाता है तो उसकी गाने की सुर की पहचान उसकी मम्मी, उसके जो पेरेंट्स में पेरेंट्स ही कराते हैं। तो मम्मी मुझे ये दर्शाई कि आप जो है आप अच्छा गाते हो, आप ये काम करो तो तुम्हारे गाने गले में और अच्छा लगेगा। तो चूंकि हमारे घर, मेरे घर में एक एक जो है परिवेश था, रविंद्र संगीत का एक परिवेश था, तो हमने वहीं से स्टार्ट किया। तो मम्मी हमको काफी प्रोत्साहित किया इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि बेटा तुम गाओ, इस तरह से गाओगे तुम और अच्छे गा सकते हो। तो मेरा सबसे पहला जो मुझे प्रमोट किया, जो मुझे मोटिवेट किया, जो मुझे इंस्पायर किया, वो मम्मी की ही वाणी थी, जो कि आज भी मेरे कानों में गूंज रही है उनकी वाणी। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है और मैं आपसे बात कर रहा तो मेरे भी गूज़बम्स हो रहे हैं, और मम्मी को मैं याद करता हूँ कि उनकी वाणी जो है अभी भी मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। हमें घर से ही इंस्पिरेशन मिल जाता है, और क्योंकि आपकी माता जी खुद एक सिंगर थी, खुद एक प्रतिभा थी, तो वो पहचानती थी, तो उन्होंने आपको प्रमोट किया, आपको इंस्टिगेट किया, आपको मोटिवेट किया। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये गीत सुनते हैं पुलक जी की आवाज में।

0: पुलक भाई, आई एम 100% श्योर आपने बहुत सारे शोज में पार्टिसिपेट किया होगा, लाइव शोज भी किए होंगे, तो लाइव शोज के दौरान दर्शकों से बातचीत हो ही जाती है, कोई दोबारा फरमाइश करता है या कोई एक गीत बोलने के लिए बोलता है या कुछ, जब आप स्टेज से उतरते हैं तो वो बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या आपको उन लोगों से बातचीत करना पसंद है? मतलब आप शर्माते तो नहीं है? और अगर क्या बातचीत होती है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए, अपने अनुभव के बारे में।
1: जी देखिए, थोड़ा सा मैं चूंकि मैं, मेरा प्रोफेशन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट ही है, मैं लोगों से बातचीत, मेरा पेशा ही है कि मैं लोगों से बातचीत करूं, वेदर इट इज इन डॉक्टर्स, वेदर इट इज इन केमिस्ट, वेदर इट इज इन आवर सबऑर्डिनेट्स एंड आवर बॉसेस, तो हम लोग का काम ही है, मेरा पेशा ही है बातचीत करने, करते रहने, बातचीत सबसे, मैं बातचीत करना हम लोग का ही पेशा ही है, ये हम लोग प्रोफेशन ही है। तो जब मैं अपनी पैशन के साथ प्रोफेशन को जोड़ता हूँ, मैं जब पैशनेटली कोई भी चीज प्रेजेंट करता हूँ स्टेज में, और उसके बाद जब दर्शक उसको प्रोत्साहित करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा, अंदर से बहुत सुकून मिलता है। और वही ऑडियंस, वही स्पेक्टेटर्स जब मुझे देखते हैं और मुझे बताते हैं कि ये ऐसा, ये बात ऐसे करिए, आप ये वाला गाना सुनाइए, तो अंदर से खुशी मिलती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि गाने के बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे तो थोड़ा सा मुझे वो रहता है कि भाई लेट मी कंप्लीट माय सॉन्ग, उसके बाद आप कुछ बात करें, तो ऐसा फील होता है कभी कभी। लेकिन ये होता है कि लाइव शो में दर्शक अगर बातचीत करना करते हैं तो इट फील्स गुड, ठीक है, वो बातचीत करते हैं तो मैं भी उसका रेसिप्रोकेशन अच्छी तरह से देता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। बाकी तो सारे के सारे लोगों को खुश करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये गीत पेश खिदमत है पुलक जी की आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत पुलक जी, जाहिर से बात है आप सेल्स में हैं, तो आप पूरी दुनिया में घूमते हैं और हजारों लोगों से बात करते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे, कुछ थिक होंगे, कुछ थिन होंगे, मतलब किन्हीं से प्रगाढ़ता होगी, कोई हल्के फुल्के होंगे, तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के गुणों के बारे में हमें बताइए कि वो आपके सबसे अच्छे दोस्त भला क्यों हैं और कौन है वो।
1: देखिए, मेरे प्रोफेशन में दोस्त तो कोई है नहीं, प्रोफेशन में एक जो है इंटीमेसी रहती है वो प्रोफेशन तक ही सीमित रहती है। प्रोफेशनली मैं जुड़ा हुआ हूँ कई लोगों के साथ, तो उनके साथ मेरी इंटीमेसी है, लेकिन जो प्रगाढ़ता थी, मेरा एक दोस्त था, मेरा भांजा था, वो मल्टी टैलेंटेड था, हालांकि वो इस दुनिया में अभी है नहीं, पिछले साल 17 सितंबर को उनका देहांत हो गया। वो भी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के रहे होंगे, मेरे उम्र के थे वो, हालांकि मेरे और मेरे भांजे की उम्र में मेरी दीदी काफी बड़ी है हमसे, मतलब हमारी, मैं तो आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, लेकिन हमारे बड़े वाले मामा के जो मेरे लड़की हैं वो दीदी हैं उनकी, मेरे भांजा, तो वो भांजा भी इस दुनिया में नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, तो उनके वो इतना अच्छा गाते भी थे और सबसे बड़ी बात है कि वो बजाते भी बहुत अच्छा थे, चाहे वो तबला हो, चाहे वो बैंड हो, कोई भी मतलब ड्रम हो, बहुत अच्छा वादक भी थे। कभी जब हम लोग मिला मुलाकात, हालांकि वो कलकत्ता में रहते थे, अभी जो है मैं जब हम लोग जब एक साथ बैठते थे तब हम लोग साथ में कई सारे चीजों को लेके, गाना लगाने को लेके डिस्कस भी करते थे और उसकी उस क्वालिटीज को मुझे बहुत बेहद अच्छा लगता था। तो हालांकि वो इस दुनिया में अभी है नहीं, तो जहां भी है वो खुश रहे, जहां भी है वो अच्छा रहे। मेरी आज के प्रोग्राम में मैं उसे उनके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि तुम जहां रहो खुश रहो, और ये क्वालिटी मुझे, उनके सारे क्वालिटीज मुझे अच्छे लगते थे।
0: बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना पुलक जी के सबसे अच्छे मित्र कौन थे, कौन हैं और कौन हमेशा रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला गीत जो हम पेश कर रहे हैं वो पुलक जी के ही इन सबसे प्यारे दोस्त को हम समर्पित करते हैं, डेडिकेट करते हैं। लीजिए सुनिए।

0: पुलक जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे बातें की,
1: थैंक यू सो मच सर,
0: आपसे बातें की, आपके गीत सुने, तो चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि सब स्वस्थ रहिए और मतलब ऑनेस्टली और अपने काम अपना काम करते रहिए। हाँ, लेकिन जो आपका पैशन है, जो आपकी जुनून है, जो आपकी जो ख्वाहिश है, उसमें कहीं हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। लाइफ में पॉजिटिविटी अगर नहीं है तो सारी चीजें बेकार। तो मैं यही सबको मैसेज देना चाहूंगा कि अपने अंदर एक ऊर्जा रखिए, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखिए। हाँ, अभी हो सकता है कि हम लोग पीछे हैं, हो सकता है हम लोग और आगे बढ़ जाए। बहुत अभी तो बहुत सारे ऐसे जीवनियां हमने पढ़ते हैं कि लोग, कुछ लोग लाइव, अब जैसे अब्राहम लिंकन है, 16 बार उन्होंने या 12 बार उन्होंने जो है अपना राष्ट्रपति इलेक्शन हारे और 17वीं बार वो इलेक्शन जीते और अमेरिका के राष्ट्रपति बने 17th टाइम 16 बार हारने के बाद। तो हमारे एक स्वामी विवेकानंद भी करके गए हैं कि अगर आपको 100वीं बार आप हार गए हैं लाइफ में तो 101वीं बार जो है आप फिर से प्रयास करो। तो जिंदगी में हारने की बात तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। और मैं किसी को ये भी बोलूंगा नहीं कि किसी भी कभी किसी भी परिस्थिति में आप नेगेटिविटी या नकारात्मक अपनी नहीं मन में ना लाएं, ऊर्जावान बने रहें। थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत बढ़िया पुलक भाई, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों, तो ये थे पुलक मुखर्जी जी। तो दोस्तों, हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।
1: होले होले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, गीत मन में जगाए।
0: आज के कलाकार का बिल्कुल ही नया एपिसोड। हम हमेशा जैसा करते हैं, हाजिर हैं हमारे मेहमान के साथ, हमारी प्रतिभा के साथ, हमारे टैलेंट के साथ, हमारी गायिका के साथ, जो हैं अंजलि कुलकर्णी मैम। बाकी जैसा हमेशा सिग्नेचर रहता है हमारा, हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बारे में बताएं, वो कहाँ हैं, क्या करती हैं, कौन है वो। अंजलि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद जी। मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगी। पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल माय म्यूजिकल फ्रेंड्स। तो मैं मेरा जन्म महाराष्ट्र जिले के अकोला जो शहर है वहां पे मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा जो थे वो तहसीलदार थे, तो इसके लिए मेरा जो एजुकेशन है वो हमेशा हर 3 साल बाद हम उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, तो एक कहीं पे एक जगह पे नहीं हुई। तो इसलिए जो म्यूजिक का मेरा जो है एक मतलब म्यूजिक मेरे पापा को के थ्रू मुझ में आया है। मतलब वो भी अच्छा गाते थे लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता था ज्यादा ऐसे। और मैं भी एग्जाम जो है मैं प्रवेशिका पूर्ण गांधर्व महाविद्यालय की प्रवेशिका पूर्ण तक ही कर पाई, विशारद नहीं हो पाई। लेकिन मुझे बचपन से ही मतलब ये संगीत की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। पहले भी रेडियो थे तो रेडियो पे सुनती थी, तो ऐसे ही मेरा ये जो प्रवास है वो शुरू हो गया म्यूजिकल। लेकिन वो जो क्लासिकल का जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अभी जो है मैं मतलब जो गायकी है सुगम संगीत उसमें मैं अभी कर रही हूँ।
0: ओके।
2: तो हाँ, तो कॉलेज में जब मेरे लेक्चरर थे जो लेक्चरर थे तो उनको भी वो म्यूजिक, वो तो खेल के ये थे लेक्चरर थे, क्रीड़ा जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स के, लेकिन उनको म्यूजिक अच्छा लगता था और उनको भी पता था जब हम वो जो एग्जाम्स होती है या तो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें मेरा सिलेक्शन हमेशा होता रहता था या कॉलेज में भी मैं गाती रहती थी। तो उन्होंने फिर बोला था कि जब भी आपको ऑफ पीरियड होगा कॉलेज का तो आप आ जाया कीजिए। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हो गई। वहां पे एक बहुत बड़ा मंदिर है दत्त भगवान का, तो वहां पे बहुत सारे ये जो कलाकार है जैसे कि अजीत कड़कड़े जी हुए और ये जो हमारे जो मराठी जो एस्टेब्लिश है वो सारे कलाकार आकर वहां पे हाजिरी देते हैं। तो ऐसे वो मंदिर में मेरा प्रोग्राम हो गया। मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि और वो बहुत अच्छा हो गया। तो वहां से मुझे भक्ति संगीत अच्छा लगने लगा ज्यादा, तो फिर वहां से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई ऐसे। बाद में जब हम अकोला आए, मेरी शादी जब हो गई तो शादी के पहले मैंने रेडियो पे जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम दी थी। तो शादी के बाद में वो जो था वो आ गया तो मैं अकोला आकाशवाणी पे अनाउंसर के तौर पे मैंने काम किया है। तो आरजे मतलब रेडियो अनाउंसर, हाँ, लेकिन वो मराठी में था ना?
0: Okay.
2: तो हाँ, ड्यूटीज थोड़ी हैवी थी, मतलब 4 सुबह के 4 बजे ही निकलना पड़ता था तो 5 बजे की ड्यूटी वहां पे ज्वाइन करनी पड़ती थी। और आपको तो पता है ऑनलाइन तो 1 सेकंड का भी इधर उधर हमको ये नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो। तो वहां पे मैंने ड्यूटी की और बाद में हम 2011 में पुणे में आ गए। तो तब से मैं पुणे में हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल में टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ, हालांकि क्लास टीचर हूँ। तो म्यूजिक जो है वो ऐसे ही, मतलब म्यूजिक टीचर नहीं हूँ लेकिन स्कूल में वगैरह मुझे मेरा जो है जर्नी वगैरह उनको पता है वो लोगों को, तो मुझे पहले अहमियत दी जाती कि भाई आप आओ और ये बच्चों का कुछ भी गाना वगैरह है तो मुझे वो बोलते हैं कि आप बिठाओ करके। तो मतलब दोनों शुरू है मेरा, ये कि टीचिंग इज ऑल्सो माई पैशन और ये तो है ही म्यूजिक का, तो चालू है दोनों भी जो है वो।
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपने जाना कि अंजलि जी की संगीत की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और वो किस मुकाम पर आज खड़ी हैं। तो उनकी शिक्षा आज भी वो पूरी करने की कोशिश कर रही हैं संगीत की, ये बहुत खूबसूरत बात है। चलिए फिर, तो संगीत की शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं अंजलि जी, उसका एक नज़ारा, उसका एक लुत्फ तो हम भी उठाएं। ये गीत सुनते हैं अंजलि जी के ही गाए हुए, अंजलि जी ने जो हमारे लिए प्रिपेयर किए, उसके बाद हम वापस आते हैं अंजलि जी से बातचीत करने के लिए।

बहुत खूब अंजलि जी, जैसे आपने बताया कि आप प्रॉपर क्लासिकल म्यूजिक की भी सीखने की कोशिश कर रही हैं, बीच में आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आप ऑल इंडिया रेडियो पर भी एज

0: लाठी रेडियो चौकी की तरह आपने कुछ काम किया, ये अपने आप में बहुत रिच एक्सपीरियंस है और यही कारण है कि आपका डिक्शन इतना क्लियर है, आपका प्रोनंसिएशन इतना क्लियर है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं संगीत की, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा भी संगीत में ही होती रही। मुझे ये बताइए मैम कि संगीत के कितने ही प्रकार होते हैं। क्लासिकल म्यूजिक में अगर हम बात करें, हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, स्पेशली मुझे नहीं पता है उसमें राग दादरी और तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि अगर हम आसान शब्दों में एक नॉर्मल रूटीन इंसान को समझने के लिए संगीत के कितने तरीके के संगीत होता है, आसान शब्दों में हमें बताइए।
1: जी संगीत के तो प्रकार तो आपको सब लोगों को पता है जो कि म्यूजिक सीखते हैं, है ना। पहला तो है क्लासिकल म्यूजिक।

0: बहुत ज्यादा पता नहीं है राग द्विग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ उसके अनुसार मैं थोड़ा सा ज्ञान लेने का, भी टीचर भी हूँ ना
1: जी जी जी जी
0: तो हाँ, तो उसके अनुसार वो जो है ना वो रागदारी वगैरह, रागदारी यानी कि भैरव वगैरह, हम भले हमको नाम पता नहीं है लेकिन हम जो सुनते हैं तो सुबह सुबह हमको वही अच्छे लगेंगे। सुबह सुबह में वो एकदम से ढोल ताशा या तो जो है वो ड्रम्स वगैरह बजाना वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो मूड के अनुसार ही म्यूजिक अच्छा लगेगा। तो सभी प्रकार का अच्छा लगता है लेकिन वो जो है टाइमिंग के अनुसार।
1: मैं
0: पार्टी
1: समझ,
0: में तो हम बहुत साइलेंट गाने नहीं सुनेंगे
1: ऑफ कोर्स
0: ना
1: ऑफ कोर्स,
0: यस
1: बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, आगे
0: yes.
1: बढ़ते हुए अंजलि जी के ही गाए हुए पहले इन गीतों का आनंद उठाएं, उसके बाद वापस आते हैं अंजलि जी के पास।

0: बहुत सुंदर गायकी, बहुत ही सुंदर चयन अंजलि जी। चलिए आगे बढ़ते हुए, बस कोई ज्यादा नहीं ये पूछना चाहूंगा कि कभी आपने अपने जो संगीत की यात्रा रही है, संगीत के प्रति आपका समर्पण रहा है, उसका उसके नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचा है कभी कि आज आप यहाँ हैं, आप टीचर भी हैं, आप म्यूजिक भी सिखा रही हैं, आप म्यूजिक सिखा रही हैं ना मैम?
1: हाँ नहीं सिखा रही हूँ, मतलब मैं जब प्रोग्राम्स होते हैं तभी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का मैं अभी ज्ञान ले रही हूँ, क्योंकि बगैर इंस्ट्रूमेंट का हम स्कूल में नहीं सिखा सकते, जैसे कि हारमोनियम हो गया या तो कोई और इंस्ट्रूमेंट, तो मैं हारमोनियम अभी सीख रही हूँ, तो उतना ज्यादा मतलब तैयार नहीं हुई, मेरी उंगलियां अभी उतनी सफाई से नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं कर रही हूँ, तो इसी की वजह से वैसे भी मुझे एज ए क्लास टीचर भी मतलब टीचिंग का भी पैशन है मेरा, तो वो भी छोड़ना नहीं चाहती, ऐसे हो रहा है मेरा थोड़ा सा, लेकिन जब परफेक्ट हो जाऊंगी तो मैं उनको सिखा पाऊंगी मतलब, तो अभी मतलब हाँ गाने का चयन करना, उनको सिखाना ओरली यानी कि बगैर इंस्ट्रूमेंट का, तो वो मैं म्यूजिक टीचर को हेल्प करती हूँ, क्योंकि एज ए क्लास टीचर मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलता वैसे।
0: मैं पूछना ये चाह रहा था, मैं पूछना ये चाह रहा था अंजलि जी कि आपने आप अपनी संगीत की यात्रा में जहां तक आ गए हैं वो तो ठीक हो गया, अब आगे आप अपने संगीत को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं आप? मतलब कोई तो लेवल आपने अपने, कोई तो भविष्य सोचा होगा अपने संगीत का कि 5 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं ये कर रही होंगी, अपना म्यूजिक एल्बम बना रही होंगी या प्रोडक्शन प्रोफेशनली गा रही होंगी, कुछ तो विचार किया होगा ना आपने, वो बताइए ना।
1: हाँ सर, वो ड्रीम तो ये है कि मैं एक जो म्यूजिक की एकेडमी निकालू, तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं और भी जो जिनको ये है म्यूजिक का कि भाई हम म्यूजिक में करें, है ना, तो वो बच्चों के लिए अगर कहीं पे उनको दूर जाना पड़ रहा है तो मेरे एरिया में जो बच्चे हैं एटलीस्ट कुछ तो गायक मैं तैयार करूं, तो ऐसा मेरा सपना है, तो कम से कम 5 साल के बाद में तो मेरी खुद की एकेडमी होनी चाहिए, ये मेरा सपना है। मेरे खुद के बारे में तो ठीक है कि अभी मतलब अभी तो मैं आपके ऐसे रेडियो पे बोल रही हूँ तो मैं फेमस तो हो ही रही हूँ अभी।
0: अरे संजीव जी आप ऑलरेडी फेमस हैं, डोंट वरी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए हैं। ओके तो दोस्तों आपने सुना कि संजीवनी जी के पास बिल्कुल साफ बिल्कुल क्लियर सपना है कि वो अपने म्यूजिक को कहां ले जाना चाहती हैं, वो एकेडमी ओपन करना चाहती हैं, ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो चलिए हम लोग अंजलि जी के ही गाए हुए इन गीतों का आनंद उठाएं जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किए।